सुंदर बयान आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया। एडू फिल्म जिंदगी और ख्वाब 1961। महान संगीतकार उस जमाने का डगड़े दत्ताराम वादकर के साथ पर कवि प्रदीप के अल्फाजे और सुमन कल्याणपुर और कोरस के आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, वक्त भी आ गया है आप सभी से विदा लेने को। ये आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूँ कि जिस तौर तरीक से मैं आप श्रोताओं को कोशिश किया सेवा करने में, आप सभी को मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम, ये आशा उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर आने वाले दिनों में जिंदगी ने साथ दिया तो मिलते हैं फिर आप सभी से आवाज के जरिए। तो मुझे आप सभी इजाजत दे, आप सभी को एक शुभ दिन प्रकट हो। नतीलक स्ट्रक्स ओके फिर लाइस्टर प्लेजियर में तो उनसे को लिखा। और जाते जाते तो हमेशा की तरह कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूँ दादा हेमंत कुमार के याद।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है इंटरनेट के लहरों द्वारा आप ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप श्रोताओं को फिर से एक बार स्वागतम। अनतिलक वेरिक्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड सोसो लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवाकर, या तो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो जरूर उसके बारे में कमर्शियल बनवाकर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना। तो हो सकता है कि चमत्कार पे चमत्कार हो जाएगा यार, क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो और मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से यही कहते आ रहा हूँ यारो कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा। आप आजमा कर तो देख, सभी जानकारी बेल फन मांडा टॉट फ्रेडा टाइडेंस कांतोर उर ऑफ द फॉल्ड टेलीफोन नंबर कांतोर 073562247 और स्टूडियो कतार का नंबर 073262277 पर। जो भी रेडियो का काम हो, डेंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, इवेंट फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रेक्लाम बनाते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाएं। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने पर। तो आप भी हम लोगों का मेंबर जल्द से जल्द बने और को भी बनाएं। वादा के मुताबिक एक ही दम बढ़ते हैं और लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम की तरफ। और बीते हुए सप्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म प्यार का सागर तक, जो रिलीज किया गया था 1968 में। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है मलकाए हुस्न, श्री मीना कुमारी जी के साथ, महान संगीतकार रवि शर्मा के साथ, प्रेम धवन के अल्फाजे। तो एक अति सुंदर बयान आप सुनेंगे, लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, द माइटी मुकेश जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान कंपोज बाय मैस्ट्रो रवि और लिखा है प्रेम धवन जी। सदा खुश रहे तू, स्पेशल फॉर द माइटी मुका फैंस।

लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला डमाइटी मुकेश जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। एड फिल्म प्यार का सागर एक आखिरी बयान आप सुनेंगे एड फिल्म प्यार का सागर, और इस बार सुरों का बादशाह किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी साथ दे रही है महान गाने वाली द क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री आशा भोसले जी एवरग्रीन सॉन्ग मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, अ मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय मास्टर रवि।

ti sunder bean sreta ke se me pesh ki agai do film pyar ka sagar mujhe pyar ki zindagi dene wale Ravi Sabar Aisha ji ke awaz me ti sunder bean composed by Ravi. प्रिय प्रिय श्रोताओं, सभी नगमे फिल्म प्यार का सागर का आप सुन चुके. अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो रिलीज किया गया था ऑल्सो इन 1961 फिल्म ससुराल में से आप नगमे सुनेंगे. म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जय किशन के साथ पर हर्षरत जयपुरी जी के अल्फाजे और आप सुनेंगे सुर का बादशाह रफी साहब जी के मधुर आवाज में फ्रॉम द मूवी ससुराल तेरी प्यारी प्यारी सूरत को एवरग्रीन सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम.

ब्यूटीफुल सॉन्ग सुर का बादशाह पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुना तेरी प्यारी प्यारी सूरत को फ्रॉम द मूवी ससुराल निगरानी शंकर जय किशन के साथ पर हसरत जयपुरी के अल्फाजे। अगला बयान फ्रॉम द मूवी ससुराल, क्या मिल गया है और क्या खो गया। एक बार फिर क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी और सुरों का बादशाह रवि साहब जी शंकर जय की शन की साज पर और इस बार शैलेंद्र जी के लिखा हुआ अति सुंदर बयान।

खो गया एंड फिल्म ससुराल ने इंसेस्ट शंकर जय किशन के साज पर सुनाया आप सभी को क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी और सुरों का बादशाह रफी साहब। 31 सुंदर बयान खास करके स्पेशल फॉर द मूका फैंस, लाखों करोड़ के दिल चुराने वाला एक बार फिर प्रोग्राम में जाना तुम्हारे प्यार में, वन ऑफ माय फेवरेट मुकेश जी का हसरत जयपुरी के अल्फाज़ शंकर जय किशन के साथ।

आए महान संगीतकार जोड़ी दिगड़े शंकर जय किशन और लिखा है ये बयान को श्री हसरत जय पुरी जी ने। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, वक्त हो चुका है ना कुछ ज्ञान के बातें हो जाए। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने मनुष्य के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे है यारो, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। यही अशोमील लेकर कि इन बातों से कुछ न कुछ तो जरूर हम लोग सीखेंगे, तो जरा गौर फरमाएं।

ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, एंड फिल्म ससुराल शंकर जय किशन के साथ पर सुनाया आप सभी को लता जी और रफी साहब। अपनी उल्फत पे जमाने का क्या बात है, एक बार फिर वही महान और हसीन संगीत का जोड़ी, लाखों करोड़ के दिल चुराने वाला दमायती मुकेश एक बार फिर और साथ दे रही है इस बार क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी शंकर जय किशन की सांच पर।

सुंदर बयान सुन ले मेरी पायलों के गीत साजना फ्रॉम द मूवी ससुराल निकली एनन सिस्टर शंकर जय किशन के साज पर लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में यदि सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। ये अल बेला ताउर न देखा सुरों का बादशाह रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में फ्रॉम द मूवी ससुराल शंकर जय किशन की साज।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग ये अल बेलात और ना देखा क्या बात है। एड फिल्म ससुराल निकली एन इंसेस्ट पद्म श्री मोहम्मद रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में कंपोज बाय शंकर जय किशन। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फार्म ऑन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत।
1: प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी।
2: चोनी नंबर वन है हमारा नाम और हमारा प्रोग्राम चलाना है, हमारा काम यही है, हमारा मोहब्बत भरी पैगाम। यहां से कुछ पुराने नगमे, कुछ नए गाना से आज हम आप लोग को और सुनाएंगे। हम चलते तुरंत इधर चला मैं उधर चला, फिल्म के नाम है कोई मिल गया। ऋतिक रोशन प्रीति सिन्हा इस फिल्म में काम किया है, इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों क्या किया और क्या किया, आज हम आप लोग को कुछ नया और पुराने गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे दोस्तों। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा एक गीत है जो नैतिल के लता जी और उदित नारायण को गाया हुआ गीत है। इस फिल्म का नाम है वीर जरा, शाहरुख खान और प्रीति सिंधा का ये गीत आप लोग सुना जाए।

देश है मेरा और ऐसा देश है तेरा। जितने लोग दुनिया पे है हमारे प्यारे सुनने वालों, अपना देश सबके प्यारा होता है। चाहे आप भारत में हो या सूरीनाम में हो या पाकिस्तान में हो या जहां भी हो, अपना देश सबका प्यारा है। चाहे वो देश आपका जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा अपना ही देश है। और चलते हैं हम और आगे को, सातो जन्म में तेरा ही रहेगे। फिल्म के नाम है दिल वाला। कुमार शानू और अलका याग्निक इस गीत को गाते हैं।

सुनने वालों, सातों जन्म तक हम तेरे रहेंगे, ये क्या मुमकिन है? सात जन्म तक किसके साथ रहे? एक जन्म में भैया कहीं कहीं उल्टा सीधा हो जा है, सात जन्म में भला क्या होगा? सोचो तो, हम चलते हैं एक गीत की ओर। औ है खलनायक, खलनायक की ओर, और पलकी में होगे सवार, पलकी में होगे सवार। आओ सुना जाए।

की में होके और सवार चलिए। कल का यानी फिल्म का नाम है खलनायक, जिस फिल्म में माधुरी दीक्षित संजय दत्त ने काम किया है और गीत को गाया है अलका याग्निक। और हमारे प्यारे सुनने वालों, हमारे दोस्तों, यहां से प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हम चलाते हैं। अगर जो आप किसी के ऊपर दीवाना हो गया है, अगर जो किसी के ऊपर आप दीवाना या दीवाना हो गया है, दिल दे चुका है, तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। आओ देखो क्या है।

और ऐसी दीवाननी और तेरा नाम हमने लिख दिया अलका याग्निक और विनोद राठौड़ ऋषि कपूर देविया भारती का ये फिल्म है ऐसा दीवानी फिल्म का नाम है दीवाना। और हमारे प्यारे सुनने वालों आज हम आज कुमार शानू के गीत भी आप लोग को सुनाएंगे और वो है ये चांद कोई दीवाना है, ये चांद कोई दीवाना है, ये भी कुमार शानू और अलका ने इस गीत को गाया है।

चांद कोई दीवाना है और ये चांद कोई दीवाना है। छुपा रुस्तम फिल्म का नाम है और इस गीत को हमने अपने प्यारे लोगों के लिए चला दिया है। मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को फिर कुछ मनोरंजन को आप प्राप्त करेंगे। और हम चलते हैं, कोई पागल प्रेमी होता है भैया, कोई श्रेक होता है और कोई पागल होता है। कविता कृष्णमूर्ति का और सबीर कुमार का यह गीत है जिस फिल्म में गोविंदा ने काम किया है और देविया भारती ने। और इस गीत को बोल है तू पागल प्रेमी और आवारा।

तू पागल प्रेमी आवारा। दोस्तों और ये गीत क्या होगा दोस्तों, ये कुछ प्यार भरी गीत है और ये गीत है झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल। झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल की ओर हम जाते हैं।

तेरी कमाल और इस गीत को अलका याग्निक ने और उदित नारायण ने और यानी कि गाया है और फिल्म के नाम है राजा मधुरी ऋषि संजय दत्त का ये फिल्म है दोस्तों। हम है जॉनी नंबर वन और जॉनी नंबर वन जो है तो वो जरूर कुछ शायर के गीत आप लोग को सुनाएंगे तो आओ सुना जाए। मैं शायर नहीं तो और क्या हूँ, फिल्म के नाम है बॉबी का ये सॉन्ग है।

लेकिन हम कुछ आपको शायर के गीत को सुनाते हैं। और शायर के बाद हम क्या सुनाएंगे, हम चलते हैं, ये दुआ है मेरा रब से दुआ है दोस्तों, और जब रब से दुआ करेंगे तो आपको जरूर रब आपका दुआ जो है वो कबूल जरूर करेगी। तो फिल्म के नाम है सपना साजन की, अलका की और कुमार शानू का ये सॉन्ग है।

पसंद आए हमारे दोस्तों। तो बात क्या है, कैसे हैं, आपको हम जरूर सुनाएंगे। तो हमारे दोस्तों आज प्यार के मूड में फिर आ गए हैं और प्यार के मूड में आए हैं, तो प्यार तो करना चाहिए। तो हम चलते हैं बाला सुब्रमण्यम की ओर। ये भी बहुत लवली गीत गाया है दोस्तों, आओ एक और सुना जाए। और वो है बाला सुब्रमण्यम के आवाज में।

0: और चांद से पर्दा कीजिए, कोई चुरा न ले और चेहरे के नूर हमारे। ये तो एक और हो जाए बाला सुब्रमण्यम का ओल्ड सॉन्ग
1: बहुत प्यार,
0: और मैं भी तुमको बहुत प्यार करते हैं हम,
1: बहुत

और बहुत प्यार तो करते हैं और सदा करते ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। बहुत प्यार करेंगे और करते ही रहेंगे जब लेक सांसों में दम रहेगा। दोस्तों तो हम अगला गीत की ओर जाते हैं, अभी सांस लेने की फुर्सत तो नहीं है। अलका याग्निक सोनू निगम का ये सॉन्ग है।

और कहते हैं अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, और इसलिए कि तुम मेरी बाहों में हो तो आप कितनी महान हैं कि सांस लेने की भी हमें फुर्सत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी यादों में नहीं मेरी बाहों में हो। दोस्तों हम चलते हैं नाइटिंगेल और लता मंगेशकर और परमा श्री मोहम्मद रफी के एक मस्त भरी प्यार भरी गीत आतिश वेलन हील अवली ची फन 1957 और फिल्म के नाम बा भाभी, और ये गीत हम चलाते हैं आप लोग सुनो।

छुपा कर मेरी आंखों को, तो पूछे कौन है और बता दीजिए नाना जी लता जी और परमा श्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ सॉन्ग है। और हम चलते हैं कभी कभी जब प्यार हो जाता है तो लोग खोजते हैं, क्या खोजते हैं, लोग खोजते हैं कि हम कहाँ अपना प्यार को ढूंढू और प्यार में लोग क्या क्या देखते हैं। और ये गीत है, रब को भी लोग देख देते हैं, प्यार भी हमारे

और दोस्तों हम चलते हैं एक ओल्ड इन गोल्ड का पुराना गीत है, वो है फिल्म का नाम है मेरे ख्याल से, ये है ये कुछ और फिल्म का नाम है, तुम अकेले तो कभी बाग में मत जाया कर आओ प्यार करे, मूवी का नाम है आओ प्यार करे, ये रजत खन्ना का ये एक फिल्म है और ये गीत आओ सुना जाए मिलकर।

और तू अकेले कभी भाग में जया ना करो दोस्तों, तो बड़ी या लूट से भैया क्या क्या होता है।

मित्रों, सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

मित्रों, आप अपनी व्यक्तिगत कहानी की राह पर जो भी कदम उठाते हैं वो आपको और आपके आसपास की दुनिया को बदल देता है मित्रों, बिल्कुल बदल देता है। बेस्ट आंसर एल्क स्टॉप दी जेत ऑफ वेखनारिय परसोंलक लखेंद फरांदत यो एंड वीरल्ड ओम यहीन। रात बदलती है पर सपने नहीं, रास्ते बदलते हैं पर किस्मत नहीं। उम्मीद हमेशा बनाए रखें मित्रों, क्योंकि किस्मत बदल सकती है पर वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलता है। द नख्त फरांदर्त मार द्रोमन नित बेस्ट मैंसन द्रोमन नित द्रोमन फरांदर नित पादन फरांदरन मार है लोत नित हौद आल तैत हो वन खलक कन फरांदरन मार द तैत फरांदर्त सीकर द तैत फरांदर्त सीकर। बेस्ट मैंसन स्वीकार करना सबसे खूबसूरत शब्दों में से एक है। यह शांति सुकून और टेंशन से आज़ादी लाता है मित्रों, स्वीकार करना एक्सेप्टेयर करना। तो एक्सेप्टासी इज इन फ्रॉम द मोस्ट वर्डन बेस्ट मैसन हैड ब्रिंग फ्रीड रिस्ट एंड बफ्रेडिंग फ्रॉम स्पनिंग मेट सिख मी बेस्ट मैसन हाउ दिट हुड फास्ट वन दिट कान ये इन ये लीवन गebruiken beste mensen.

भाई बहनों, आपके आसपास अच्छे लोगों का होना सबसे बड़ा मूल्य नहीं है। सबसे बड़ा मूल्य नहीं है कि आप उनसे क्या पाते हैं, बल्कि ये है कि उनके साथ रहकर आप कितने बेहतर इंसान बनते हैं। मित्रों, ये है पलांगर है, ये है मूल्यवाद। किसी के साथ रहकर आप कितने बेहतर इंसान बन सकते हैं और बनते हैं। मित्रों, द ह्रुस्त वार्द फन खुद मैंसन ओम यहीन स्नित वच फंज क्रेख मर द बेत्र प्रसून दी वर्त दूर बेजत जैन दत इज बलांगरेक बेस्ट मैंसन दत मुझो खुद ऑन थाउ द मैथ वेल्क मैंसन यो ओम खात एंड वारोम दू यू दत दत सैन बलांगरेक देंगे बेस्ट मैंसन।

साथियों, अपने सपनों को एक दृष्टि में बदलें, फिर एक लक्ष्य, फिर एक योजना और अंत में वास्तविकता। आखिरकार एक लक्ष्य एक समय सीमा के साथ एक सपने से अधिक कुछ नहीं है। मित्रों, सपने से कुछ अधिक नहीं है। आप देखते हैं अपने आसपास में लोगों को, मार्क फन ये ड्रोम एंड फीसी डन एंड डूल डन एंड प्लान एंड एंडलक द रियलिटेट बेस्ट मैंसन द रियलिटेट एंड डूल इज एमर्स नीड्स मेयर डन एंड ड्रोम मेट एंड डेट लाइन बेस्ट मैंसन नीड्स इज meer dan een droom, dat moet u weten, want dit ziet u elke dag bij mensen die heen gaan. Niets gaat mee, beste mensen.

साथियों, समय के पास हमें ये दिखाने का एक अद्भुत तरीका है कि कौन और क्या वास्तव में मायने रखता है। मित्रों, एक अद्भुत तरीका है। द तैत हेफ्तन वोंदरबार लक मनीर ओम ओंस्त लातन जीन वी एन वत एर एह टू दूत बेस्त मैंसन। एक सार्थक जीवन धन लोकप्रियता उच्च स्तर की शिक्षा या पूर्णता के बारे में नहीं है। ये प्रामाणिक होने, विनम्र होने, स्वयं होने का साहस करने और दूसरों को झूठ को देखने में सक्षम होने के बारे में है। मित्रों, ये झूठ पकड़ने के बारे में है। अनजिन फॉर लेफन द्राइनित ओम रैगदोम पॉपुलरिटेट अन होख ऑपलेनिंग ऑफ परफेक्सी हेट खाद एरोम ऑथेंटिक जैन नीदरग जैन ये जेल्फ दुर्फन जैन बेस्ट मैंसन एंड लेगन्स फन अंदरन तो किन दूर ग्रोंदन दूसरों की झूठ पकड़ने के लिए। मित्रों, ये है ये तरीका।

मित्रों, परमात्मा इस मौका पर आपकी जिंदगी खुशियों से, आपके दिल को प्यार से, आपकी रूह को रूहानियत से और आपके दिमाग को समझदारी से भर दे। मैं आपके लिए बहुत खुशहाल जिंदगी की दुआ करता हूँ। यही मेरी प्रार्थना है भगवान से आपके लिए। मित्रों, मुख खोत ये लेफन ओफ स्पूलन मैथ खुल अब देश खलेख ने यह हार्थ मैथ लिफ द ये जिल मैथ स्पिरिचुअलिटेट एंड ये खेस मैथ वैस है बेस्ट मैंसन एक वेंश अन हील फ्रोलक लेफन दत इस मैन बेद अन खोत ओफर यू लिफ मैंसन।

दोस्तों, यदि आपके कार्य ऐसी विरासत बनाते हैं जो दूसरों को ज़्यादा सपने देखने, ज़्यादा सीखने, ज़्यादा करने और ज़्यादा बनने के लिए प्रेरित करती है, तो आप एक उत्कृष्ट नेता है या एक सही इंसान हो जो दूसरों को प्रेरित करता है। मित्रों, ऐसे लोगों का कर्म भी अच्छा हुआ है। अलश्य दादन अन्नालातंस आप करियर इन दी आंद्रन इंस्पिरेर ओम मेर्त द्रोमन मेर्त लेरन मेर्त दून एंड मेर्त वर्दन दन बेन ये अन उत्स्टेकंद लेडर फोरहांगर अन इंद्रक वेकंद मेंस मेत goede vooruitzichten en kwaliteiten, beste mensen. Ga zo door met je goede karma.

भाई बहनों, जिसका हृदय सभी जीवित प्राणियों के लिए करुणा से पिघलता है, उसे ज्ञान, मोक्ष, बिखरे हुए केस या शरीर पर भस्म लगाने की रस्म की और क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है। मित्रों, ये सब जरूरी नहीं है, ये दिखावा होता है, दिखावा होता है। आज के ज़माने में बहुत दिखावा होता है। मित्रों, देखिए आप अपने आसपास में, इमंत विंस हार्ट स्मेल फन मीड दोहन फॉर लीफ द वेसन्स बेस्ट मैंसन वट हेफ्ट है दान नोह नोदह अन कैनस बफ्राइडिंग वारख हार of het ritueel van het insmeren van het lichaam met as. Dit is toch allemaal niet nodig. Niet nodig. Voor de show misschien wel. Voor de show. Wees eerst een mens met het hart op de goede plaats, beste mensen. Wees eerst dat en dan verder.

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोठी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सुनने वालों सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं संजय जो आपके साथ जुड़ गए हैं कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करूंगा और कुछ सुंदर सुंदर भजनों के साथ।

जो बीमार है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को, तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर, तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह की गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे तो ये, अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं तो ये जरूर स्पष्ट है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

सुनोलो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा दोहा हम सबके लिए लिख गए हैं। और तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूँ और एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

स्वस्ती माहौल के हवास में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलेग खास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य यह है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुनने वालों, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है, पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं जो हमारे स्टूडियो यानी फाउन रेडियो का सभी कोलेखास की ओर से।

स्वस्ति मिश्रा के आवाज में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी को लेकर खास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोशिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सीतू, बीबी साहिबा रहीमक्स जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए, और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाहुन का सभी कोलेखास की ओर से रखा गया, और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है, और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे है, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज में। सुन वालों, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए है कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। ये सुंदर सा मैसेज श्रीमती सुनील जी जो मोहन गार्डन से भेजे है। बहुत खुशी की कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जय किशोरी और सोनू निगम के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं। हार्दिक से स्वागत किया जाता है और कहना यह चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों हैं, जैसे कि डेन हाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवाधाम मंदिर जो डेन हाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को, और इसी प्रकार से सुतमेर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हर मंगलवार को लगाया जाता है 6 बजे से 8 बजे तक, दमेरन शहर उत्तराखंड में गणेश मंदिर जो भी हर मंगलवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, इसी तरह से अलमेर में विष्णु मंदिर जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है जहाँ पर हम सब जाकर के सत्संग आदि कर सकते हैं और कथन वहाँ हर अलग मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है संदेश को रखा जाता है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर और शिव मंदिर अरनहेम में भी हर रविवार को जो सुबह में रोटरडम में और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, और अरनहेम में जो कि 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। हम एक और भजन की ओर बढ़ेंगे, राधा रानी का चरण जो कि चित्रलेखा जी के आवाज में रखने वाले हैं।

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे हैं, और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ, और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे। सुनने वालों, जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

जय किशोरी जी की आवाज़ में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। मेरे श्याम तेरा नाम ही काफ़ी है मेरी हर मुस्कान के लिए। यहाँ तक जो सुबह का भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, मैं आपका सेवक संजय आशा यही रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जरूर अच्छा लगे होंगे। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, रूह कुछ बदल दिया जाएगा। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुनाह है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी, ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यशे में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं। तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

स्टूडियो में तो थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर संगीत जो निकाला गया एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम 6 दर्शन स्तपन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे।

वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोज

0: पुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

वापस आऊंगा। कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

अग्रीड सॉन्ग हल्लो, जिसमें काम किए रामचरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राशमिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया। ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से और रहे, और दूसरा जो अटूट विश्वास।

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

इमरान हाशमी ने फिल्म में काम किए। दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, 2400 घंटा आपके साथ, जो हम सब जुड़े रहते हैं, हमारे सभी कोलेखा साथी अपने अपने समय पे और यहाँ उपस्थित हो करके कार्यक्रम को रखते हैं। किसी ने मेरे पास ये संदेश को भेजा है कि हद से ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो आप खुद समझदार हो, समझ जाना क्या संदेश देना चाहते हैं। जो व्यक्ति ने हमें हमारे पास ये संदेश को भेजा है, एमफी नाम है उनका, हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

कलाना जाने चाँद सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन की सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी आदाब से श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। तो हमारे प्यारे प्यारे जनता, हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, आपको हम लेकर चलते हैं सूरीनाम की ओर और हम जानते हैं मैक आंद्रियो की ओर, जो मनोरथ के बोली से मिनिस्टर फान यूसीसी एंड पॉलिसी के बोले हैं, बोले बहुत बड़का फौद करी से बोले मिनिस्टर यूसीसी के और बोले है हनीस मनोरथ के बोले उज्जोन बोल ले रहा बिगिनिए में बड़का बात बोल ले रहा बोले नो टच मी और बोले बोल ले रहा मुंह से नो टच मी और बोले है गा नो टच मी। जो आउट मिनिस्टर रहा आरबीआई के ऑफिस भी डायरेक्टर भी रहा बोले ओकर कारण बोले बहुत क्रिटिक पावे है और बोले एक बरिश में बोले भला कौन चीज दिखाई पाई बोले ओके कम से कम दुई बरिश चाहेगा क्रिमिनली टाइट के बारे में मां बोले ओमदा तू वोट तो निकाल दे से नो टच मी चोरवन के तो बोले ओकर कारण हम जनता ओके एक सुरतु के चिढ़ावे है हनीश मनोरथ के चिढ़ावे है कि तू नो तेजमी मोरो बकी देखो कितना जबर क्रिमिनाली तय दसवा में होवे है। तो ये बार बोले है स्टीफन मैक आंद्रियो आउट मिनिस्टर आरबीआई के बोले है बोले इतना क्रिटिक है ओकर ऊपर सुवेल बेना और पार्लियामेंट के आदमी भी ओकर पर क्रिटिक करे है बोले क्रिमिनल बोले ना अनपाक करे है बोले सेल्फ पॉलिसी में इतना क्रिमिनल है स्कैंडल एंड कॉर्प्स पॉलिसी में और बोले है अन अन अन मैक आंद्रियो मिनिस्टर रहे तो मुझे क्राइकन ओम से इंतवेरकन बोले ओके चाहे इनवेरक होए के भैया एक बरिश हुई कि तुझे ये इनवेरक करे एंड वो वही तो आलमाल दा दिवनेर यूरिस्टेस और बोले तखलाई कर तेल बोले मनाद रख कर कि आंद्रियो बोले है कम्युनिकेशन बोले बहुत बलांगा रही कर रोल हुए है और बोले मिनिस्टर हनीश मनोरथ बोले है बोले जब से भीतर गईल है मेरे बपाल ऐसा को करे रहा कि क्रिमिनल बोले हमें ना टच करिए और बोले मैं आनू लांगा कानी करो बोले रहा तो बोले है इस फन मीनिंग दैट मनीर फन कमिजेर द मिनिस्टर नॉक सीज अख्तर फलक और बोले दिस एक देंगे दैट ये पास तुम्हारे यार में कोई दिखाई पियो बोले एकर कारण बोले ओके क्रिएरियन बपाल स्फेर दिस मेंस मुतन ओक वेटन व्हाट एंड हुड बपाल दिंगन कसेक्ट मुत वर्डन। तो ये बात है हनीश मनोरथ के सब बोले भैया अब देखो भैल है का अधीन हीकल ट्विंकल सूरीनाम में भी जइयो भैया सब दुकान में जइयो सब दुकान में जइयो तो आप लोग पाई पइयो पैसा पाई सकियो चाहे जो दुकान में जइए जइए एरो आप लोग यानी कि मिल सके हैं।

यहाँ पे बतावे है अधीन बोले है, बोले चाहे जोन दुकान में जइयो चिनुआ बोले पैसा वेसल करे है और सब पैसा तुरावे है, बोले उ चीज न चाही बोले चित्रा चीज बोले संतराल बारे भैया आदमी लोन जोन दुकानदारन है बहु मारक ओके एरो डॉलर काम है अपन सौदा इम्पोर्ट करे के भाई जइयो कीने न महंगा में पइयो ऐसे उ सब अपने कीन के तुरे है तुरावे है तो हम लोग के देना फोर्स इतर जो अश्विन अधीन है बोले अफकुर करे चीजों के बारे में बोले डॉलर और कोर्स बोले चाहेगा हंतेर होए के बोले उसे अपने बपाल करे कितना उसे बेची कोच करेगा और बोले मैन खार खोन फेर्दर एंड फीन दैट द विंकल्स एंड सोर्ट फ्रॉम कम यू सेन दैट मुड स्टॉपन के तो तू स्टॉप कर पाइए भैया कब तू स्टॉप करिए ये तो देश में ओवरलोड एरो और डॉलर भरल ले भैया कि कोई ना पूछे वाला है तब कोई ना बेची भैया तो आदमी जाएगा अपन बैंकॉक में बेचेगा बाकी सुरीनाम देश में जब देखो तो एरो तो कॉर्थ है तो डॉलर तो कॉर्थ है आदमी कीन कीन अपन धरे भैया जो अपन सौदा पानी चलावे जैसे अपन उस अपन दुकान और सब चलाई सके है तो यहाँ बतावे है मेन खार खून फेरदर और बतावे हैगा एनडी पेयर बोले है ही बोले इकोनॉमी से साके है बोले चाहे एकर बारे में बोले खूब मोई से कंट्रोल करे के अधीर ए सेल्फ फोर्स स्टैंडर्ड इरफान ओम नेतास पुलिसिया कैंटन ओक इकोनॉमी से कंट्रोल दिनस्टन फन बॉडी कैम्स्ट फोर्स सीन बोले जैसे स्कोटू के लगावल है बॉडी कैम बोले जो आदमी जा है बोले हैगा एक रूमी साके के जो कंट्रोल दीस जा है दुकान में बोले ओके भी चाहे बॉडी कैम्स लगावे के जो ने तू देख सके को दुकानदार वासे चूकू डाले इसे का क्योंकर सौदवा ना देखे कि महंगा में बेचे है नहीं चिनुआ कोला पिया दे और जे कंट्रोल करी बोली बड़ा ठंडा कोला हम कुछ ना देखिला तब बोले चाहे बॉडी स्कैम लगावे के जो ने आदमी बोले कि तू चूकू ना ले ले भैया बॉडी स्कैमवा ऊपरा है पाका सकवा हम कोई डार दी कोई जान पइयो बॉडी स्कैमवा बूते भी है रे भैया अधी वत प्राचीनी मान जब आदमी मांगी चोरी करे तो सब कर सके है मैं खुद ये देंक इस नाम लग तो हमेशा फैल लगता हो द अने क्वा करप्शी माँ हम लोग के देश में करप्शी भैया करप्शी इतना ज़्यादा है जैसे जमीन में से कसाबा तो लगा डेले एक पेड़ तो ढेर के कसाबा निकले लगे जमीन में और ओकर शोर जैसे बांस यहाँ से हुआ घुसे भैया जो उच्चीन होवे के नाम ना लेवे है उच्चीन होवे के नाम ले अब तो सरनाम में बहुत बकैंत है कि हुआ करप्शी जो है कॉरस पॉलिसी श्री नाम में इसको तू और ज़्यादा लेवे भैया बहुत ज़्यादा लेवे तो निकले अंतिक करप्शन वेद फ्रॉड के बारे में बाकी तो नहीं तो है पे कहीं एन परसों किसी के को जबरदस्त ओके बूटू आइल है और मांगे काल्पनिक वेद निकारे तो लो भैया तो तू भैया एगो बताई है इतना ढेर काल्पनिक वेद निकारियो लेकिन खाती वेल वर्क वन सेल्फ दी मेंस फाइनली डिजाइन ख्रोत पुफ नाम लग दी पुलिसी अगेंट अब देखो कैसे रात के सिपाही एगो बड़का क्रिमिनल के भगा दे से भाई बड़का दृश्य क्रिमिनल कोलंबिया के भगा दे से अब पकड़ाई के दुगो बन है जब देखो तो सिपाही इन द पिक्चर आवे है दैट इज अ ब्लीडिंग फ्रॉम ओंस लंच सुरीनाम में से दैट इज अ ज्वार ज्वार ज्वार ब्लीडिंग ऐसे बातचीत हुए है आप लोग जानो है कितना मछली मरल्ला कितना मछली मरल्ला आप लोग जानो हैं मसाल फेस तरफ तरमक्का रिफीर में अब एक मिला ही यहाँ पे बोले हैगा ऊ सोचे है ऊ सोचे है बोले ऊ सोचे हुएगा बोले वही फोकस मिनिस्टर पैट्रिक ब्रुनिंग्स बोले जो तेल और खास ओली के बारे में बोले ओके फरमुदलक है कि खेमिस और साक इन एन इंटरव्यू में बताए से खेमिस है और बोले हैगा फरमुदलक फॉर और साक टरवेल द डिफिनिटिव एनालिसिस रिजल्ट फॉर अ फिश मॉन्स्टर ऑफ 10 अगस्तस तक मुत वर्डन खजीन.
ye baant he, hamari janta. Volgens minister Bruning stond al meteen na de waarneming de veiligheid van de bewoners langs de riviercentraal. Ortolun Janu Ketra Kwiksko to Kekarma se kamarama se chori ho je bhaiya. De kamarama se je chori ho je, container ma se chori ho je, ghar ke piche se chori ho je, to skoutwe ke haat na hai bhai na bole lu chori kari se. Maar de jab tu de aanu biswas na hai, utna nir kwiklaas ho je hai. Aur word gezegd, misschien is de kwik naam gedumpt in de Samaka rivier waar er zoveel vissen namelijk dood is. Ja, betalen wij hebben direct geadviseerd om geen water uit de rivier te gebruiken en geen vis te consumeren totdat duidelijk is wat er precies aan de hand is. De Ibar bole he, ik er maar mee. Gezondheidszorg bole PHO ke Pan Americans Gezondheidsorganisatie Bureau van Gezondheid ke bole BOG ke bole hega o machri na chahi khai ke bole 15 tarikh juli mein go monster gail hai France Guyana aur bole hua pe saman on the sukri machriya kaise maral hai aur bole vervolgens bole o jayega gespecialiseerde instituut mein Frankrijk mein aur hua pe saman पिंसो के अंदर सुकरिया बताई गई है अबे एकर अंदर सुख हुए भैया फ्रांस को याना में उकर बाद में जाएगा फ्रांकरेक में भी अंदर सुख होएगा कि मछरियन कैसे कैसे मरल है प्यारे प्यारे जनता अब देखो यहां का बोले फेस्ट तो जाने हैं कौन ची है तो फेस्ट फेस्ट भैया वो हैगा फेस्ट सेक्रेटर स्वामी गिरधारी का बोले है फॉर आदमी दी फॉल्कंस फेस्ट सेक्रेटर गिरधारी एक बरिस अयार खलीदन सामलीफन ऑन स्टोन पेन अंतरीन रखेरिंग सिमोन के बोले इन मिडल्स ओम खसलाकन इन आदम नोड बोले अब सांस ना ले पावे है बोले ई बोले रहा स्वामी गिरधारी बोले रहा फेस के और हैगा फरीनिंग फन इकोनॉमिक्स अन एक रूम फन सुरीनाम और बोले एक बड़ी सुई के बोले अब जनता बोले सांस ना ले पावे है हुएल फिन दैट इट नॉट द फ्रूक इज ओम डेफिनेटिव ओर्डील द फेलन स्प्रेकंदे फन गेफोर्ड द बलेट फॉलोस इट बुक डीलन तो गिरधारी एक बारे में बोले है जेनिफर सिमोन के और न तिलक जेनिफर सिमोन ए न खना है रिसलान थे का फीसे प्रेसिडेंट और जितना एक और पार्टीयन है जो ओकर संगे सब मिल के काम करे है इधर ही मुझसे देत लेस्टरो वा जुली से ता अलमाल इन द रखेरी नीट अलिन जेनिफर सिमोन से ता दार सही इस द द लास्ट पर्सन मा इधर ही फरांतवर्लक ओम ons land namelijk beter te krijgen. Bole Simons bole ra bole mo kenki assisteem aislem batia abe batari hanis monorad bole ra no touch me i bole mo kenki assisteem santo kika bole ra bole wo seteng ta is op woord ik ke go gebruik kere ma waar na karpawe dosto was volgens hem juist de grootste belofte samenleven ke bole he ik noem betaalwe hega bolle afgereken met oude bestuurspraktijken. Iban bolle Girdhari presentiële commissie bolle hega ki biete hue saal me bolle is op ingestel bhaila o bolle hega kritiek of vanuit de samenleving Girdhari abbe bolle yaad kare he ki president tijdens haar eerste de persconferentie me bole Girdhari bole hame khumoi se bole hame yaad hai bole hame yaad hai is de persconferentie me Girdhari bole hai bole Simons bole raha bole hega bole elke commissie wordt gezien als een uitholing van de ministeries stelde hij bole ook het opheffen van deskundigen gaat volgens Girdhari terwijl was beloofd dat met alle Surinamers bole hega
met alle Surinamers. Bolle gaan ze het land namelijk goed besturen. Hij wees daarbij de hoogste staatsschuld en de toegenomen begrotingstekort. Janta. Tambolik het daar ik baanke, feske baan mee. Vrienden van de economen. Ik er waren mee eisje bolle he. Ka bolle he ga. Oké, een adem noodbolische Surinamers ke. जनता और हम आगे जाइला एगो फरमोर्ड चिनुआ भैया फरमोर्ड शिनेस के बारे में है तो बोलिए सरनाम के बात है जोनी ना ना ना ना इस सरनाम के बात ना ही और कुछ बात है एगो फरमोर्ड चिनुआ भैया रेज़ द श्रीलंका बेनन में सुरीनाम से पासपोर्ट था एगो चिनुआ मराई गए है और सरनाम के पासपोर्ट लेके उस श्रीलंका भर में घूमत रहा यहां बतावे भैया शिनेच स्टार बेरखर दी श्रीलंका वर्ड ऑन फूड ओके जबर ऑन फूड कर ले रहा बोले हैगा इन हेड लैंड बेनन हुकूमत और है सरनाम के पासपोर्ट से Het slachtoffer geïdentificeerd als H.O. Zong. Obole Ustad Tarik April met Cambodja met Aila. Sri Lanka ke nieuws ik er waren mee. Bole he. Bole Colombo. Batawe he. Colombo ke nieuws ik er waren mee. Batawe he. Bolle Hega, Song reizen samen met een groep personen naar Sri Lanka. Het is bekend hoe hij aan het Surinaamse paspoort kwam. Maar hebben jij hem bieden hoe je die noem betaalde? $2,000 bario te paai jaiyo. Likala nieuws me bhai hem na hasila. Maar dat heb ik gezegd. Ki verblijf vergunning mangye. $2,000 verblijf vergunning paai jaiyo in Suriname. Zo makkelijk gaat het bhaiya. En dat gaat met corruptie te hoa bhaiya. कौन तो बॉडी स्कैम लगाइयो भैया अधीन उन्दर तफरा सब चीज चले है उन्दर सुकर उन देखते उन खबरों के खरोट खेल बदराखन ऑफ द बैंक रीग एंड इमेट है स्लाख्तोफन इन फरमान वर गब्राख द पुलिसी फरमूद दैट एन कॉन्फ्लिक्ट ओवर द खेल मोगलिक हीव गलेड टॉट सेन ऑनफूरिंग द ई ओ ऑनफूरिंग भले के बहुत ढेर पैसा बैंक में रहा और कहां से आयल है ओके सेवन ऑनफूर कर ले इसे भैया बोले हैगा ये नाम एक नाम रहा सॉन्ग ना गाना वालों का नाम रहा सो ब्लेक एंड द सॉन्ग एन बलांगरिक रोल फुलफिल बिनन एन गोऑर्गेनाइजेर्ड साइबर क्रिमिनलिटेट ग्रुप criminele groep, sorry mensen. Zijn chauffeur, een kok en vriendin zijn door de Colombo. Zijn politie in bewaring genomen en worden verhoord voor het onderzoek. Zijn 5 speciale politieteams ingezet. Toe, je baat rond, doe je bij je. Vers

दोस्तों इसी गीत से एक दो समाचार हम आप लोग को और सुनाएंगे। तो हमारा समाचार आज के खत्म आने को हुआ है। तो देखा जाए भैया, हम मस्कर द ओवर फारसलान टू बाई सुपर मार्केट क्रीफल एंड में सांदल भैया सूरीनाम की ओर हम जाएला। मास्कर पहिर के गईले ओफर फालस स्क्योटिंग कूद के एगो पेरसेल के स्क्योटिंग कूद के जाए के दुकान में घुटन ले मेट वापस फिर वापने वो इन सस्तक यार के बाउनर्स के और दत मोमेंट ओके ओफर फाल करी से ओकर प्रसिये में भैया वो काम करत रहा है वेर दो ओफर फालर ओफर मिस्टर और बोले नार द स्लाब कामर खबरा वर्स एंड हंदन एंड फूटन नेचुरल क्लीनिंग सर्जरी का बांधी से भैया 21 jarige KH die zich in de woning bevond werd eveneens ook onder schot gehouden. Ook pakkelijke baan is er bij jou liggen, ambulancebioken liggen bij, terwijl de slachtoffer gekneveld waren doorzochten de daders zowel de woning als de supermarkt. Daarbij haalden ze alles overhoop. Criminelen gingen er vandoor met onbekende geldbedrag, dollars, Amerikaanse dollars, Surinaamse dollars liggen. Er was een bagga. Na de overval lieten de daders slachtoffer gekneveld achter en vluchten. En zei een geriestande auto te noteren. Ja, no to bole noteren. Hama papa, ja, man, hoor het ke bole la bole crimineel saka bail he. Nakali ehi bahu deed he. Ja, we de kobron fiesel eke gail he. Ga digo crimineel sau hajar SRD. Lachman straat me bhaiya ego slijter he me gusal he. और 100,000 लेके चल गए है जगन्नाथ लक्ष्मण स्त्रात में जो पहले कोपर नाम स्त्रात रहा 4:30 सवेरे के बाद थे और जैसे मेरे गए सौंदा के मिडक के तो देखे वो दुकान फुकान सब तुरल है। तो ये बात है हमारी जनता 6 स्टूडेंट सुरीनाम वाला वो सब सिदेर करता क्यूबा में दतरा के डिप्लोमा पाई गई है दोस्तों। से सुरीनाम से स्टूडेंट बहाल आर्टन डिप्लोमा ऑफ क्यूबा में से तो बहुत बहुत बधाई है आप सबके। तो यहाँ सबके नाम निकल न्यू आस्टन सेन अलान दिल रोहुली टर्नहोरफ साफिला विलम शर्मा कास्टेल काजल खुनखुन एंड अभिगाइल हिंजन द ग्रुप बस्तान uit 4 vrouwen en 2 mannen volgende gedurende 7 jaar de medische opleiding hebben gevolgd in Cuba. Wat hij तो हमारे सुरीनाम के लोग समाचार सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार और प्यार भरे राम। जॉनी नंबर 1 है हमारा नाम।

बस दोस्तों, आज हम आप लोग को कुछ गजल सुनाएंगे। कितनी दिन हो गया हमने कुछ गजल गीत आप लोग को नहीं सुनाए हैं, और आज हम आप लोग को कुछ गजल सॉन्ग भी सुनाएंगे। दोस्तों आओ मिलकर पहले ये गीत को सुना जाए। इन आंखों के मस्ती क्या है, दिल चीज क्या है दोस्तों, और ये दिल चीज क्या है, आंखों की मस्ती क्या है, आओ मिलकर सुना जाए। आ जा रे ओ मेरी।

तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आप लोग को हम यानी कि आंशी कुछ गजल सॉन्ग भी सुनाएंगे कि कहते हैं खुशियों को खुशियां तो कब से रूठ गई है, खुशियां तो कब से रूठ गई है, काश गमों को भी किसी के नजर लग जाए, किसी को नजर लग जाए, बिल्कुल तुम सा और तुम्हारा, बिल्कुल तुम सा और तुम्हारा लगता हूँ, कभी कभी मैं खुद प्यार लगता हूँ। और हम चलते हैं अगला गजल की ओर। ये और बात है, गजल का गीत अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास का ये सॉन्ग है।

ये और बात है, और इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल मनहर उदास का। ये गाया हुआ गजल सॉन्ग है, ये और बात है, ये और बात है। कौ कहते हैं, मुझे देखकर उसने फेर लिया चेहरा, मुझे देखकर उसने फेर लिया चेहरा, तसल्ली हुई चलो पहचानते तो है, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएंगे जरूर, अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएंगे जरूर, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको, कौन मुझको चाहेंगे। हम चलते हैं अगला गजल की ओर। ये गजल है ना, गीत है ना, कोई मूवी अलग अलग का, किशोर जी का ये गाया हुआ सॉन्ग है।

और किसी किसी बेबसी ने और मारा। दोस्तों हम और आगे को बढ़ते हैं कि कहते हैं, तुझे तू मिल गई होंगी नई साथी, लेकिन तुझे तो मिल गई होगी नई साथी, लेकिन मुझे हर मोड़ पर तेरी कमी महसूस होती है। मुझे हर मोड़ पर तेरी कमी महसूस होती है। मैं अपनी राह में दीवार बनकर बैठा हूँ, मैं अपनी राह में दीवार बनकर बैठा हूँ। अगर वो आया तो किस रास्ते से आएंगे? तो हम चलते हैं तो गजल सॉन्ग।

0: और वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। और कहते हैं बहुत मान था जिन पर बड़ी बेमान निकला वो। उसने आंसू भी मेरे देखते थे उसने फिर भी कहा मुझसे जाना है। तो प्यार भरी शायर भी आप लोग को हम सुनाते हैं दोस्तों गजल के साथ। तुम्हारी साथ ये मौसम फरिश्ते तेरे तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है। तुम्हारी बात ये मौसम बहुत सतुखा है सूख गया है। तो हम चलते हैं जगदीप सिंह का ये सॉन्ग है।
1: आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

और जगदीप सिंह, आशा भोसले और करोड़ों का दिल चुराने वाली नैतिकी लता जी का ये गया हुआ सॉन्ग था दोस्तों। तेज हवा ने मुझसे पूछा रथ पे क्या लिखते रहते हो। काश कोई हमसे भी पूछे रात गई तक क्यों जगते हो। तो दोस्तों ये सब प्यार भरी शायरी आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते हैं वक्त बदलने से कहाँ दिल बदलते हैं, वक्त बदलने से कहाँ दिल बदलते हैं, आपसे मोहब्बत थी आपसे और मोहब्बत है। तो ये सब गीतों का सॉन्ग आज गजल आप लोग को हम और सुनाते हैं। आओ मिलकर एक और गजल सुना जाए।

0: होठों से झूलो तुम और मेरा गीत अमरी कर दो। मैं दरिया से भी डरता हूँ, मैं दरिया से भी डरता हूँ, तुम दरिया से भी गहरे हो। कौन सी बात है तुम में ऐसी, इतना अच्छे क्यों तुम लगते हो। तो दोस्तों आज कुछ प्यार भरी यानी कि गजल सॉन्ग्स आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते हैं शायर खुशी का दौर, शायर खुशी का दौर भी आएगा एक दिन, गम भी तो मिल गया, गम भी तो मिल गए थे तमन्ना क्या बेगैर। तो एक और सॉन्ग सुना जाए।
1: जहर खाके मरना था इतना नहीं किया, हमने तुम्हारे प्यार में क्या क्या नहीं किया, तुमने वफाएं बेच के खुशियां खरीद लीं,

और कैसी समाऊं तेरी यादें और दिल में क्या क्या होता है, जो गजल आप लोग को सुनाते हैं कि शायद खुशी का दौर भी आएगा एक दिन, गम भी तो मिल जाएंगी, तमन्ना क्या बगैर अपनी शहर के सब लोग से मेरे खातिर क्यों उछालते हो, कहने को रह गया हो तो दिल में फिर भी कितना दूर, कह दो ये भी। और हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर, और वो गजल का सॉन्ग है।

और मैं भी परेशान हूं। दोस्तों आप लोग के लिए आज हम कुछ गजल के गीत सुनाए हैं। हमें ये आशा उम्मीद है कि आप लोग को हमारा गजल सॉन्ग्स अच्छा लगा होगा।

तो आंच हम आप लोग को कुछ एक घंटा बॉलीवुड सॉन्ग सुनाएंगा। और जाने अगर ये आप नाचना चाहते हो तो झूमिए और नाचिए। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं।

मेरे लिए और रीमिक सॉन्ग और आज हम आपकी सुनाएंगे और रीमिक सॉन्ग के बाद हम चलते हैं कुछ ओल्ड एंड गोल्ड रीमिक्स भी हम आप लोग के लिए और लाइए गुनगुनाइए झूमिए ये फूल है

ऐसा है दीवाना और दीवानी दीवानी में क्या क्या हो जाता है यारों। और उसके बाद हम चलती है सैटरडे नाइट की और रेमिक्स बॉलीवुड डीजे सॉन्ग।

एंड तो आज ओनली रे मेक सॉन्ग हम आप लोग को लेकर चलते हैं 1990 के एंड 2022 का।

0: गोपाल, क्या हुआ गोपाल?
1: अशोक माला का तार है, मुझे जल्दी बुलाया, वो बीमार है।
0: घबराओ मत गोपाल, हम आज ही मजदूरी के लिए।
2: इतनी जल्दी क्या है अशोक बाबू, अभी तो आपको अपनी आंखों का इलाज कराना है। गोपाल बाबू कहीं भेज दीजिए।
0: तुम ऐसा करो गोपाल, तुम चले जाओ, अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे फौरन बुला लेना।

और दोस्तों आंवली लवर्स के लिए हम कुछ नया गीत आज हम चलाते हैं। हम चलते हैं एक और गीत की ओर और वो है फिर भी प्यार करने वालों के लिए कि बिली बिली की ओर हम जाते हैं।

बहुत प्यार करते हैं और हम भी आपको सनम, और उसके बाद में और इश्क का गीत हम चलाते हैं।

और ऐसा ही लगता है जब किसी से प्यार हो जाता है तो हमारे यारो ऐसा ही होता है।

जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों के सेवा में सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फोन हिंदुस्तानी रेडियो है वीवीवी प्लेटफॉर्म चैनल पर वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखूं तो 3 मिनट व्यतीत हो चला है 12:03 और ये लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है दनहा शहर से। जो बीमार लाचार है तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनके घर में कोई शादी विवाह कोई भी उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयां पेश किया जा रहा है। आज दौंदरदाखे यानी बृहस्पतिवार 30 जुलाई देर तक गिली को और आप तत्पर है। जो लोग चुनकी मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जिस देश में भी होंगे, सुबह होगी शाम होगा या रात होगी, आप सबका हृदय से स्वागत है। आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। जैसे मैंने कहा, आज दौंदरदाख देर तक यूली है, हम तत्पर हैं इस वक्त और रहेंगे अब से लेकर 3 बजे तक, और 3 बजे के बाद हमारे सभी सहयोगी मिलकर आपके सेवा में रहेंगे। मौसम भी बहुत प्यारा है, बहुत जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत गर्मी इस वक्त नहीं है, 22-23 ग्रादे होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। बहरहाल एक बहुत प्यारा दिन है। तो अगर ये प्यारा दिन है तो लीजिए हम आपको एक अच्छी गाय गीत सुनाते हैं, और तो हम पेश कर रहे हैं माइती मुकेश जी को। माइती मुकेश जी का ये गीत हम निकाल रहे हैं फिल्म मधुमती में से। लता जी और माइती मुकेश की आवाज़ है, सलील चौधरी के साज है, और चलो ये गीत सुनते हैं। इस तरह से आ रहा है।

दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भैया, लता जी और मैं थी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए फिल्म मधुमती में से निकाल कर ये गीत हम पेश किए हैं। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आप सबका हृदय से स्वागत है। तो अगर जहाँ आप चुन हैं तो लीजिए हम आपको महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में ये गीत सुनाते हैं, क्या ख्याल है, फिल्म गुमराह में से निकाल कर।

महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में आप आए तो ख्यालें दिले ना शाद आया। रवि के साज पर ये प्यारा गीत हम आपको सुनाएं, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो अगर आप हैं और मैं भी यहाँ बैठा हूँ तो लीजिए रवि साहब की आवाज़ में हम आपको ये गीत सुनाते हैं, क्या ख्याल सुनिए।

रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म असली नकली में से निकाल कर ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दिल में एक बात है, जी हाँ, कहूँ या ना कहूँ, लेकिन मैं नहीं कहूँगा, गाना में आपको सुनाया जाएगा, इस तरह से आ रहा है।

एक बात दिल में आई है कहूँ या ना कहूँ, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए अपनी आवाज़ में ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। प्लेयर में हमने गीत रखे हैं, हमेशा यही होता है कि हम सब स्त्रियों के बारे में कुछ ना कुछ तो कहते रहते हैं। जी हाँ, हम मर्दों का फितरत यही है, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके बारे में स्त्रियों क्या कहती हैं? आप सोचते होंगे क्या कहती होगी, तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं कि लता जी इसके बारे में क्या कहती है।

लता जी ने आपको सच सुनाए, न जाने क्या हुआ जो तूने मुझे छू लिया। म्यूजिक डायरेक्टर का तो नाम नहीं लिखा, लेकिन सुनने में जैसे आता है तो ये खयाम का म्यूजिक होगा। बहरहाल फिर बाद में देख लेंगे। बहरहाल लता जी आपको सुनाए, न जाने क्या हुआ जो तूने मुझे छू लिया। तो जो छूने की बात हुई तो उसका परिणाम हम आपको सुनाते हैं।

तुझ में कितनी बदमाशी है मुझे पता चल गया। जी हाँ, यही गायिका कह रही है गायक से। सुन लो रे श्रोताओं, और चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। ये गीत इस तरह से आ रहा है, प्रीत लगाने के

0: अलका याग्निक और कुमार सानू आपको सुनाए हैं, आएगी हर पल तुझे मेरी याद। तो अगर प्यार हो जाता है, याद भी आ जाता है, तो क्या होता है? जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं बता रहा हूँ कि कमाल होता है। जी हाँ, बहुत कमाल होता है।
1: और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।

जाने मन तुम कमाल करते हो। लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं ओवर फन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। चलो देखते हैं, एक गीत और सुना दूँ आपको इस तरह से, और वो ये है।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: आप जो हैं फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर. चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं. यह शानदार गीत इस तरह से आ रहा है. आप जो हैं फाहन हिंदुस्तानी रेडियो.

मौसम है आकी आशिकाना लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ये गीत। चलिए शाम के कार्यक्रम हैं तो आप भी हैं और मैं भी हूँ, क्या ख्याल अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ।

आई लव यू, ये शानदार गीत आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। तो अगर जो आई लव यू की बात हुई तो चलिए हम आपको सुनाते हैं मैथ मुकेश जी क्या कह रहा है इस तरह से।

गा दीवाने झूम के मैथ मुकेश की आवाज़ में आपको सुनाया गया ये गीत। तो चलिए ये बदली हुई गीत हम रखते हैं। हाँ,

ये कश्मीर है, ये शानदार गीत आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है।

सदियों पुरानी अपनी कहानी और रवि साहब और आयशा जी आपको सुनाए रवि के साथ पर फिल्म शहनाई में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए। चलिए अगला नंबर हम प्लेयर में ये गीत रखे हैं, इस तरह से सुनते हैं।

दिल से दिल की डोर बांधे ये शानदार गीत चला ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत मैं पेश करने वाला हूँ और वो है सेलॉन फ्लिसिंगर के रहने वाले हैं श्रीमती आनी सरजू मिसिर जी और ज्योति सरजू मिसिर जी, इन दोनों के लिए शुभकामना के साथ। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं, तो आनी जी और ज्योति जी सुनिए ये शानदार गीत ओफर हिंदुस्तानी रेडियो। इस तरह से आ रहा है आपकी मांगी हुई गीत।

रफ़ी साहब का ये गीत है चांद की अंगड़ाई, और ये गीत हमने पेश की देखते हैं आनी सरजू मिश्र जी के लिए और ज्योति सरजू मिश्र जी के लिए। शुभकामना, एक शुभ दिन पेश करते हुए शुभकामना के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा, और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि इतनी दूर दराज से फिर भी आप कार्यक्रम सुन रहे हैं इंटरनेट द्वारा, और आपने तार की बहुत बहुत धन्यवाद। आनी जी और ज्योतिष जी, आप दोनों को एक बार फिर शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और वो ये है इस तरह से।

मैं आशिक हूँ बहारों का, मैं मुकेश, मुकेश जी आपको सुनाए ये शानदार गीत, जबकि आप भी हैं, आप सुन रहे हैं। और मैं दनाख में स्टूडियो में बैठकर चला रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए ये गीत। लता जी और सुबीर सेन, सुबीर सेन के गाना बहुत कम चलता है। अपने हुए पराये में से निकलती फिर सस्त लता जी और सुबीर सेन जी।

लता जी और सुबीर सेन, सुबीर सेन मिलकर ये दोनों ये दुएत आपको सुनाए हैं। फिल्म अपने हुए पराए में से निकाल कर हमने चलाए हैं निगती फिर शस्त्र का ये गीत है शंकर जय किशन के साज पर। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं कि प्यार में क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ तक कि डफली वाला भी बन जाते हैं लोग।

फिल्म भीगी रात में से निकाले हैं निकिती फैफन सस्तिक के ये गीत है रोशन के साज पर रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में हमने पेश किए। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं, जी हाँ, और वो है मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। क्या ख्याल है

मुझसे भी खफा रहना, माइक टू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं। चलिए ये गीत तो सुनाए बिना हम आपको नहीं जाएंगे।

महेंद्र कपूर जी और लता जी मिल के आपको सुनाए ये प्यारा गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म घर बसा के देखो में से हमने निकाल कर ये चलाए हैं।

कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत हम आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से शाम के कार्यक्रम में आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो

जानी पहचानी गीत हम आपको सुनाएं रवि साहब की आवाज़ में फिल्म अभिलाषा में से निकाल कर। करीबन 20 मिनट व्यतीत हो चला है, 2 बजकर मैं रहूँगा करीबन 3 बजे तक। तो लीजिए ये गीत हम आपको सुना रहे हैं। जाने से पहले माइ टू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

शंकर जय किशन के साज पर माइती मुकेश द हार्टथ्रॉब ऑफ मिलियंस आपको सुनाए, ये टाइटल सॉन्ग इस तरह से हमने पेश की।

0: फिल्म कुर्बानी कुर्बानी में से निकाले हैं। और ये गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है,
1: सबसे बड़ा नादान वही है

सजना। जी हाँ, अलका याग्निक और सुदेश भोसले हैं। फिल्म बागमान में से आपको सुनाएं ये गीत। शाम के कार्यक्रम है, आप भी हैं, मैं भी हूँ, तो कह लीजिए।

प्रेम रतन धन पायो, पलक मुछल और साथी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। जहाँ तक मेरा ख्याल एक आखिरी गीत आपको सुनाऊंगा, उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, वो ये है

तो देखते हैं, यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने पेश की। इस उम्मीद के साथ आप सबको अच्छा लगा होगा, और जो जो लोगों ने तार किए हैं और जो जो लोगों ने ऐप किए हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष करके ख़ास करके देखते हैं सेलॉन फ्लिसिंग के रहने वाले श्रीमान श्रीमती आनी सरजू मिसिर और ज्योति सरजू मिसिर जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से। आप दोनों को एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है। ये कार्यक्रम मैंने पेश की आज दौंद्रदाह, और हम आपसे मिल रहे हैं अगले सप्ताह दौंद्रदाह को, क्योंकि गीत गज़ल के कार्यक्रम में आने वाला जौंदाह को रविवार को हम नहीं रहेंगे, भैया यूसुफ भी नहीं रहेगा। हम आपसे मिल रहे हैं अगले सप्ताह, आज के अठाए, जी हाँ आज के अठाए दौंद्रदाह को हम आपसे मिल रहे हैं। मेरे बाद आप सुनेंगे विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद हमारे सहयोगी बारी बारी आपके सेवा में रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आप सबको एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है। नमस्कार।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: हम हैं जॉनी नंबर वन और जॉनी नंबर वन जो है तो वो जरूर कुछ शायर के गीत आप लोग को सुनाएंगे तो आओ सुना जाए. मैं शायर नहीं तो और क्या हूँ. फिल्म के नाम है बॉबी का ये सॉन्ग है.

हूं, लेकिन हम कुछ आपको शायर के गीत को सुनाते हैं। और शायर के बाद हम क्या सुनाएंगे, हम चलते हैं, ये दुआ है मेरा रब से दुआ है दोस्तों, और जब रब से दुआ करेंगे तो आपको जरूर रब आपका दुआ जो है वो कबूल जरूर करेगी। तो फिल्म के नाम है सपना साजन की, अलका की और कुमार शानू का ये सॉन्ग है।

दोस्ती पसंद आए हमारे दोस्तों, तो बात क्या है, कैसे है, आपको हम जरूर सुनाएंगे। तो हमारे दोस्तों आज प्यार के मूड में फिर आ गए हैं और प्यार के मूड में आए हैं, तो प्यार तो करना चाहिए। तो हम चलते हैं बाला सुब्रमण्यम की ओर। ये भी बहुत लवली गीत गाया है दोस्तों, आओ एक और सुना जाए, और वो है बाला सुब्रमण्यम के आवाज में।

बाबुल सुप्रमण्यन के बाद तो हम चलते हैं और एक गीत के ओर, वो भी आज प्यार के मूड में है। कुमार शानू के ये गीत है, आओ प्यार करे, आप भी प्यार करो ना।

0: और चांद से पर्दा कीजिए, कोई चुरा न ले और चेहरे के नूर हमारे। ये तो एक और हो जाए बाला सुपरमनियम का ओल्ड सॉन्ग
1: बहुत प्यार
0: और मैं भी
1: तुमको
0: बहुत प्यार करते हैं हम
1: बहुत

और बहुत प्यार तो करते हैं और सदा करते ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। बहुत प्यार करेंगे और करते ही रहेंगे जब लेक सांसों में दम रहेगा। दोस्तों तो हम अगला गीत की ओर जाते हैं, अभी सांस लेने की फुर्सत तो नहीं है। अलका याग्निक सोनू निगम का ये सॉन्ग है।

और कहते हैं अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, और इसलिए कि तुम मेरी बाहों में हो तो आप कितनी महान हैं कि सांस लेने की भी हमें फुर्सत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी यादों में नहीं मेरी बाहों में हो। दोस्तों हम चलते हैं नाइटिंगेल और लता मंगेशकर और परमा श्री मोहम्मद रफी के एक मस्त भरी प्यार भरी गीत आतिशबाजी हिल आवली ची फन 1957 और फिल्म के नाम बा भाभी, और ये गीत हम चलाते हैं आप लोग सुनो।

छुपा कर मेरी आंखों को, तो पूछे कौन है और बता दीजिए नाना जी लता जी और प्रणाम श्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ सॉन्ग है। और हम चलते हैं कभी कभी जब प्यार हो जाता है तो लोग खोजते हैं, क्या खोजते हैं, लोग खोजते हैं कि हम कहां अपना प्यार को ढूंढू और प्यार में लोग क्या क्या देखते हैं। और ये गीत है, रब को भी लोग देख देते हैं प्यार में हमारे।

और दोस्तों हम चलते हैं एक ओल्ड इन गोल्ड का पुराना गीत है, वो है फिल्म का नाम है मेरे ख्याल से, ये है ये कुछ और फिल्म का नाम है, तुम अकेले तो कभी बाग में मत जाया कर आओ प्यार करे, मूवी का नाम है आओ प्यार करे, ये रजत खन्ना का ये एक फिल्म है और ये गीत आओ सुना जाए मिलकर।

Porca Maria, care la palop, lollipop, लागे है तू दोस्तों और आज भी हम आप लोग को एक दो शेर भी आप लोग को सुनाएंगे और कहते हैं जुदा भी हो के वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, जुदा भी होकर वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, ये और बात है कि देखने उसे जमाने हुआ, जमाने हुआ। और कहते हैं दोस्तों इश्क को सर का दर्द कहने वाला सुन, मोहब्बत का दर्द को, मोहब्बत को सर का दर्द कहने वाला सुन, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है और अपने सर हम लेकर और क्या करेंगे, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है, हमारी निगाहों से बचकर वो भला कहाँ जाएंगे। हमारे दोस्तों हमने उनके मोहल्ले में ही घर ले लिया है। तो हम चलते हैं कुछ बॉलीवुड रीमेक सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाएंगे और ये जो तेरी पायल की छन छन है, आशिकों के चाहत दिल के धड़कन है, आओ सुना जाए।

और ये जो तेरी पाई अलग के छनछन है आशिकों की चाहत के दिल की, और वो तो धड़कन है, और कहते हैं चिरागों में, चिरागों में दोस्तों, चिरागों में इतना नूर ना होता, अगर चिरागों में इतना नूर ना होता तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो कुछ एक दो कॉमेडियन शेरी भी आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते हैं बसाऊं मैं दम रखता हूँ, बजाओं में हम बजाओं में मैं दम रखता हूँ, दिल में छम रखता हूँ, और पता था कि आप पता था कि SMS आएगी तेरा, इसलिए अरे बैठ के तेरा इंतजार करता हूँ, पता है कि आपके ऐप जरूर आएगा, इसलिए बैठ के इंतजार हम करता हूँ कि जानू मेरी जान आओ मिलकर सुना जाए एक रिमिक्स सॉन्ग, और किशोर जी के सॉन्ग है, फिल्म का नाम है शान, जिसमें अमिताभ बच्चन परवीन बामी ने काम किया है, आओ सुना जाए जानू मेरी जान।

और जानू मेरी जान और मैं तेरा कुर्बान, कुछ रिमिक्स आज हम आप लोग को सुनाएंगे। कहते हैं कि प्यार की राहों में चलना आसान नहीं दोस्तों, कहते हैं कि प्यार की राहों में चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा भैया, ही बतिया है। और कहते हैं चमका ना करो जुगनू की तरह रात को ले जाऊंगा मुट्ठी में किसी रोज छुपा करे कि झलक दिखला जाए। आओ हमारा झलक आप लोग रेडियो के माध्यम से देखिए।

0: थपा गुड़ थपा गुड़ थपा गुड़ थपा गुड़ थपा।
1: और झलक दिखला जा हमारे दोस्तों, और जब अगर झलक दिखलाएंगे तो और क्या क्या उसमें देखने को मिलेगा। अब चलते हैं कि आई फिर से गुजरा लम्हा याद, आज फिर से गुजरा लम्हा याद दिलाई उसने, आज फिर से गुजरा लम्हा याद दिलाए उसने, अपना जिगर छेद कर फिर से रुलाया उसने, अपना जिगर छेद कर फिर से रुलाया उसने, हंसे तो थे उसके सामने, देख कर भी ना जाने क्यों फिर से नजरों को चुराया उसने। तो कुछ प्यार की और कुछ शायरी हो जाए दोस्तों, के कहते हैं चेहरे पे मरने वाले हजार मिल जाएंगे, कुछ लोग हर जरूरत पूरी कर जाएंगे, ख्वाहिशें उसके जो दिल से समझते हमें, हम तो जिंदगी भी उसके नाम कर जाएंगे। और जाते हैं किशोर दादा के एक सॉन्ग, फिल्म के नाम है लवारिस।

अपने को जैसे तैसे में क्या होता है दोस्तों, अपने को जैसे तैसे और थोड़ी देत एंदात है कि कहते हैं ना पूछ किसी से ये उल्फत का, ना पूछ किसी से ये उल्फत का कि बड़ी लंबी कहानी है, मैं गैरों से नहीं हारा, मेरे किसी अपने की मेहरबानी है। हमारा दोस्तों चेहरे पर मरने वाले हजार मिल जाएंगे, चेहरे पर मरने वाले हजार मिल जाएंगे, कुछ लोग हर जरूरत पूरी कर जाएंगे, ख्वाहिश है उसकी जो दिल से समझे हमें, हम तो जिंदगी भी उसके नाम कर जाएंगे, तेरे चुनरिया।

गुरु दोस्तों, तेरी चुनरिया और तेरी चुनरिया में क्या हुआ? तेरी चुनरिया में एक दिल दिल को जख्म दे गई, एक दिल दिल को जख्म दे गया, जिंदगी भर जीने का कसम दे गया। लाखों फूलों में से गुना था एक फूल जो कांटों से भी गहरी चुबा दे गया। और कहते हैं गुलाम की महक भी फीकी लगती है, गुलाम की महक भी फिक्का लगता है, अच्छा नहीं लगता है। कौन सी खुशबू मुझ में बसा गई हो तुम? जिंदगी है क्या तेरी चाहत को सिवा? ये कैसा ख्वाब आंखों को दिखा गई हो तुम? और बचपन बदन पे और सितारे कौन लपेटा है? वो परमाश्री मोहम्मद रफी लपेटा है शामी कपूर से। आओ रिमिक्स सॉन्ग फन रेडियो फॉर होम डॉट जॉनी नंबर 1।

और बदन भी सितारे लपेटे हुए और न जाने क्या क्या। और इसके बाद है दोस्तों हम चलते हैं रेक यानी कि हम चलते हैं अगला सॉन्ग के अभी और दोस्तों हम रिमिक्स सॉन्ग के ओर बढ़ते हैं और बढ़ते हैं कि कहते हैं पहले जिंदगी छीन लेंगे मुझसे, पहले जिंदगी छीन लेंगे मुझसे, अब मेरे मौत का भी वो फायदा उठाता है। पहले जिंदगी छीन लिए मुझसे, अब मेरी मौत का भी वो फायदा उठाता है। मेरी कब्र पे फूल, मेरे कब्र पे फूल चढ़ाने के बहाने वो किसी और से मिलने आता है। दैट इज वेयर हार्ट बेस्टर स्टार्ट्स, दैट इज हील हार्ट। दिल मेरा बहुत नाजुक है, जरा इसे संभाल कर रखना, तुमसे जुदा ना हो हम, बस इतनी दुआ करना। और कहते हैं और क्या कहते हैं, एक सॉन्ग की ओर हम बढ़ा जाए कि ये कहते हैं कहो ना प्यार है।

प्यार है, कहो ना प्यार है, ओनली रिमेक सॉन्ग कहते हैं, प्यार में बेवफाई मिले तो गम ना करना, प्यार में बेवफाई मिले तो गम ना करना, अपनी आंखें किसी के लिए कम नहीं करना, अपने आंखें किसी के लिए कम नहीं करना, वो चाहे लाख नफरत करे तुमसे पर तुम अपना प्यार कभी उसके लिए कम नहीं करना. दिस इज अ टिप फॉर माय बेस्ट लिसनर्स. एक नोग रिमिक्स ड्राए मेंसे, एक नोग रिमिक्स ड्राए. तो आप लोग को हम सुनाते हैं रिमिक्स सॉन्ग, वो है डम डम डम मारो डम दोस्तों.

और दोस्तों डम डम डम डम और क्या था, डम डम ढिगा ढिगा डम मारो दम था। हाँ कहते हैं प्यार करते हो मुझसे तो इशहार कर दो, प्यार करते हो मुझसे तो इशहार कर दो, अपनी मोहब्बत का जिगर आज सारे आम कर दो, और नहीं करते अगर प्यार तो इनकार कर दो, ये लो मेरा मासूम दिल इसके टुटके हजार कर दो, ये लो मेरे मासूम दिल इसको टोर कर हजार कर दो, और मेरा प्यार की पहचान तो ही तू ही तो है, मेरा मेरी मेरा प्यार की पहचान तू ही तो है, मेरे जीने का अमान तू ही तो है, कैसे कैसे बजाएं करे कैसे बजान करे अलार्म इस दिल को, मेरा आशिक मेरी जान तू, मेरी आशिक मेरी जान तू ही तो, तू ही तो है। तो आपको कुछ शायरी हम आप लोग को यहाँ से सुनाए हैं और एक ओल्ड गोल्ड सॉन्ग की ओर हम जाते हैं। दोस्तों ये एक ओल्ड सॉन्ग है, फिल्म का नाम है दो उस्ताद, आओ मिलकर सुना जाए।

जॉनी भाई, आज जबकि हो गया है एक मलित पास 5 बजने में और बृहस्पतिवार के दिवस है और ये अभी कार्यक्रम जो हम लोग का होने वाला है ज्योति का प्रकाश, तो उस पर भी हम ध्यान देते हैं। दोस्तों सुनने वालों, अभी ज्योति का प्रकाश जो कार्यक्रम हम लोग प्रस्तुत करने वाला है पहला स्टूडियो से और दूसरा स्टूडियो में तो होने वाला है हंगामा ही हंगामा, यानी कि करो कखरूप जो फाहोन का अपना और कार्यक्रम करेंगे। तो देखते हैं जॉनी भाई, क्षमा चाहता हूँ पर पहले हम थोड़ा से ज्योति का प्रकाश के झलक और अपने सुनने वालों को और दे देते हैं, सुना देते हैं, क्योंकि आज 30 जुलाई हो गया है 2026, 30 हज़ार 2026, और जो लोग फकांसी के ओर के तैयारी कर रहे हैं आपको शुभ यात्रा। हम तो कार्यक्रम बनाते रहेंगे और कहीं भी आप हो दुनिया पे हर एक प्रांत में ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो 24 घंटा आपके साथ है। हम कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश के ओर बढ़ेंगे।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा हूँ, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमन करता हूँ। सुन वालों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, हम कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर आपके साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं भारत देहरादून से हमारे मास्टर जी, जिनके जरिए ये कार्यक्रम बनाया गया शुरुआत में और आज तलक भी चलाया जाता है कितने सालों से। तो दोस्तों सुनने वालों, मास्टर जी आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है और वेलकम किया जाता कि आप समय निकाल करके देहरादून से और हम लोग के साथ कनेक्ट हो गए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, फोन हिंदुस्तानी रेडियो के प्रोग्राम में हम लोग बहुत समय से कार्यक्रम कर रहे हैं और जो हमको सुनते हैं फोन हिंदुस्तानी रेडियो के श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। जैसे कि आज से सावन यानी कल से जो 29 तारीख थी गुरु पूर्णिमा, वो रात को बुध वो गुरु पूर्णिमा का जो फुल मून होता है और उसके अगले दिन सोमवार वो अगले दिन से सावन शुरुआत मानी जाती है, मतलब उसी दिन से मानी जाती है लेकिन अगले दिन भी उसमें जुड़ जाता है। तो हम लोग आज सावन के बारे में बात करेंगे, श्रावण मंथ,
0: श्रावण मास। तो मास्टर जी ये वो समय है जहां पर लोग कावड़ लेकर के और चलना शुरू कर देंगे ना?
1: जी जी जी जी जी,
0: ऐसा
1: तो आज से शुरू हो गया है,
0: आज से निकल गया।
1: हाँ
0: तो मास्टर जी क्यों ना वही गीत के और पहले चलाते हैं जो हम लोग हर सप्ताह कार्यक्रम में रखते हैं।
1: हाँ क्यों ना वही गीत एक बार चला दिया जाए और फिर हम कार्यक्रम जारी रखेंगे, तब तक लोग थोड़ा सा गीत का आनंद भी लेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तेरा राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे।
2: जो रमता सकल जहां।

0: डरे रे काहे को डरे। दोस्तों सुनने वालों, यहाँ जो कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश चल रहा है, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे मास्टर जी भारत से, तो श्रावण का महीना पावन करे शोर, ये गीत तो सभी जानते हैं, फिर भी अभी हम सब ये श्रावण महीना का कार्यक्रम जो होने वाले है, इस अंतर्गत में और भी संदेश सुनने वाले हो, तो मास्टर जी क्या सुनाने वाले हो आप देहरादून से हम लोग को? यहाँ जो लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है दनहाक शहर से, दुनिया के हर एक देशों में इंटरनेट द्वारा सुना जा सकते हैं, क्या संदेश रखने वाले हो आप?
1: जो साउंड हिंदुस्तानी रेडियो के श्रोता हैं, वो जब हमारा ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम सुनते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, इसमें कुछ नया सीखने को मिलता है। इसी प्रकार आज का जो कार्यक्रम है वो भी यही है कि सावन की विशेषता क्या है। सावन की विशेषता में यही है, श्रावण मंथ जो होता है हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास से प्रारंभ होने वाला वर्ष का पांचवा महीना, यानी आज पांचवा महीना है जैसे हमारा उसका होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ऐसे ही इसका भी होता है चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन। तो हिंदू पंचांग के अनुसार है पांचवा महीना है
0: ऐसा।
1: हाँ जी, भारत में इसमें वर्षा ऋतु होती है, इसमें भारत में दो महीना खूब बरसात चलती है और प्रायः बहुत अधिक गर्मी होती है। आप तो जानते हैं कि भारत में गर्मी कितना होता है।
0: जी जी जी,
1: तो बरसात होती है तो गर्मी भी होती है।
0: बिल्कुल,
1: तो बरसात नहीं होगी तो गर्मी कैसे होगी?
0: सही बात।
1: और बरसात गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो भारत में भरपूर मात्रा में ले लो, तो उसी का आनंद है बरसात का और गर्मी का दोनों का। इस महीने में सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है ये महीना। सावन महीने के दौरान सोमवार का दिन शुभ होता है और ऐसा माना जाता है यदि भक्त समर्पण के साथ भगवान शिव की पूजा करे तो भगवान शिव उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। श्रावण महीना शिव जी को विशेष प्रिय है। भोलेनाथ ने स्वयं कहा है

0: శ్రవణోమతః శ్రావణఖ్యాపూర్ణమాస్యం తదూపీ శ్రావణస్మృతం యస్య శ్రావణమాత్తీర్ణం సిద్ధిదా శ్రావణో స్మృతః. యాని मासों के श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है, महीनों में जो श्रावण है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा जाता है। इस मास में श्रावण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण भी इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रावण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। इस महीना में आप लोग अगर कोई कम समय में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो उसको श्रावण के महीने में करना चाहिए और बहुत कम समय में सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो इसमें पर्व त्योहार और व्रत भी होते हैं। श्रावण कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा है, पार्थव शिव पूजा प्रारंभ होती है। श्रावण कृष्ण पक्ष में पंचमी यानी पांचवा दिन मौना पंचमी है और एकादशी ग्यारहवा दिन में कामदा एकादशी व्रत होता है और त्रयोदशी प्रदोष व्रत है। अमावस्या में हरियाली अमावस्या हरेला पर्व भी मनाया जाएगा और इसमें पूजा विधि है किस प्रकार करना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि भोलेनाथ की पूजा और व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। जिन लोगों का विवाह हुआ है वो अगर पति पत्नी दोनों मिलके पूजा करें भगवान शिव की तो उनका जीवन एकदम सुखमय हो जाएगा। और वही अविवाहित लड़कियां को मन चाहे वर की प्राप्ति होती है और अगर लड़की है कोई अविवाहित उसको इस महीने व्रत करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, उसको अपना मन माना यानी मन चाहे उसको वर मिल जाएगा।
1: मास्टर जी तो ये कहने के तात्पर्य ये है कि अविवाहित माने तो
0: अविवाहित का माने जिनका शादी नहीं हुआ।
1: ऐसा
0: हाँ, एक होता विवाहित एक होता अविवाहित।
1: ओके जी।
0: तो जो अविवाहित है लड़कियां लड़कियों के लिए खास करके वो भोलेनाथ का अगर पूजा करती है तो उनके लिए मन चाह ऐसे कह रहे हैं भगवान शंकर के, उनको मन चाह वर मिल जाता है यानी पति मिल जाता है मन चाह।
1: ऐसा
0: शिव पार्वती प्रतिमा की फूल दक्षिणा पूजा के बर्तन दही पंचरस इत्र गंध रोली बिल्व पत्र का मतलब आप समझते हैं।
1: बिल्व पत्र वो यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं पान के पत्ता तुलसी का पत्ता, पर बेल वो पत्र का बारे में थोड़ा से बता दो मास्टर जी।
0: हाँ, बेल का पत्ता एक होता है, तीन उसमें एक पत्ते में तीन पत्ते लगे होते हैं
1: जी
0: और तीनों पत्ता भगवान शिव को चढ़ते हैं पत्ते और उसका फल भी बड़ा अच्छा होता है। उसका फल साल भर बाद पकता है पेड़ पे, अभी लग गया तो अभी वो जून में अगले जून में पकेगा। तो भगवान शंकर को बेल का पत्र बहुत पसंद है।
1: ऐसा
0: जी। तो ये सब चीजें बिल्व पत्र हो गया, धतूरा हो गया, भांग हो गया, बेर हो गए, पंच फल पांच प्रकार के फल पंचमेवा पांच प्रकार के मेवा मदार पुष्पम कच्चा दूध कपूर दही दूध रुई मलाया गिरी चंदन शुद्ध देसी घी मौली जनेऊ पंच मिठाई पांच प्रकार की मिठाई शहद गंगा जल शिवुआ मां पार्वती का श्रृंगार सामग्री से पूजन करना चाहिए। और इसमें कावड़ जो है आज से कावड़ भी शुरू हो गया है। तो कावड़ का मतलब है जो गंगा जल दूर दूर से लोग आते हैं और ये गंगा जल भर के पैदल जाते हैं और फिर 15 दिन बाद उसको चढ़ाएंगे वहां कहां मंदिर में शिवलिंग पे। तो ऐसी मान्यता है कि जो ये काम करता है 2 बार कर लेगा तो उसकी मनोइच्छा पूर्ण हो जाती है। तो ये महीना जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, जो सावन का महीना है इस प्रकार के बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती है, क्यों ना हम एक नगमा की तरफ बढ़े जो कि सावन का महीना का ही है।
1: तो चला देते हैं मास्टर जी एक गीत।
0: हाँ जरूर।

0: सा गीत गीतारा बारी के आवाज में हम सब सुने दोस्तों, श्रवण मास के अंतर्गत जो संदेश हमारे मास्टर जी देहरादून से हम सब के साथ जुड़े हुए हैं और हम सब के और भी संदेश सुनाने वाले हैं। मास्टर जी, और क्या संदेश श्रावण मास के अंतर्गत आप रखने वाले हैं?
1: श्रावण मास के अंतर्गत जो है, जो इसमें एकादशी आती है, एकादशी आप जाने एकादशी क्या चीज रहे?
0: मास्टर जी, एकादशी एक और दस ऐसा है ना
1: जी,
0: तो पर आप उस पर थोड़ा से उस पर दृष्टि डाल दीजिए, क्योंकि हमारे सुनने वालों के लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा।
1: हाँ, जो एकादशी आती है इस महीने में, भगवान कृष्ण ने एकादशी को भी व्रत किया था।
0: अच्छा,
1: हाँ, एकादशी का जो व्रत विधान बताया है वह इस प्रकार से है, एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर, यानी स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा विधि पूर्वक करना चाहिए, निर्जल व्रत रखकर पुराण का श्रवण अथवा पाठ करना चाहिए, रात्रि में निर्जल व्रत रखे और भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें, रात्रि में प्रतिपहर विष्णु और शिव की पूजा करें, प्रत्येक पहर में भगवान को अलग अलग भेंट प्रस्तुत करें, जैसे प्रथम पहर में नारियल, द्वितीय पहर में बेल, तृतीय पहर में सीताफल और चौथे पहर में नारंगी और सुपारी निवेदित करें। तो जो भगवान शंकर का ये जो मंत्र है, इसको शिव मंत्र बोलते ज्यादा करके लोग, तो उसमें अगर ये व्रत किया जाए तो बहुत उपयोगी माना जाता है। द्वादश के दिन यानी अगले दिन 12वें दिन में भगवान की पूजा करें, फिर ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा सहित विदा करें, इसके पश्चात स्वयं भोजन करें।
0: ऐसा?
1: हाँ, ब्राह्मण को हर समय दक्षिणा देना चाहिए। कभी भी कोई अगर ब्राह्मण को भोजन भी करवाना है तो वो भोजन की भी दक्षिणा देनी चाहिए ब्राह्मण को, कि आप खाए हैं हमारे यहाँ भोजन करने के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भोजन करके जल देके दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। ब्राह्मण को हर समय खुश रखना चाहिए। ब्राह्मणे मुखमासी, यानी ब्राह्मण जो है ब्रह्मा का मुख है, भगवान का जो है मुख ब्राह्मण है,
0: ब्रह्मणो मुखमासी।
1: हाँ,
0: अच्छा,
1: तो ब्राह्मण को हर समय प्रसन्न रखना चाहिए। ब्रह्मराज और मुखमासी बोलते हैं ना
0: जी,
1: तो यही है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस प्रकार एकादशी का व्रत करने से मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, व्यक्ति जीवन में सुख होकर श्री हरि के लोक में स्थान प्राप्त करता है। जो मनुष्य है अगर इसमें उपासना करे, सावन के महीने में एकादशी का व्रत करे, तो वो सुख पाता है। और वो कहां जाता है? भगवान विष्णु के सीधा डायरेक्ट वैकुंठ लोक जाता है।
0: ऐसा
1: जी। अब संजय जी, आपका कोई प्रश्न है सावन के महीने में तो आप पूछ सकते हैं।
0: बस ये है कि जो संदेश, अब ये मैं कहना चाहूंगा कि शांता जी भी उपस्थित हो गए स्टूडियो में और भाई जॉनी जी भी उपस्थित हो गए स्टूडियो में, ये श्रावण मास के अंतर्गत में जो आप संदेश रखे, पर मास्टर जी देखिए कितने लोग हैं जो श्रावण मास में होलांत में भी ये और व्रत करते हैं, तो सबसे सूक्ष्म स्वरूप से किस प्रकार से लोग पूरा मास और जा करके और कार्य कर सकते हैं?
1: तो इसकी सरल विधि यही है कि सावन के महीने में जो सोमवार आता है, चार सोमवार आएंगे इसमें। हाँ, तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें व्रत करना चाहिए।
0: व्रत
1: विधि विधान व्रत करना चाहिए और उसमें पूजा पाठ करना चाहिए। ब्रह्म जब शाम को अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत खोलते हैं तो ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, भोजन पहले ब्राह्मण को कराना चाहिए, फिर स्वयं करना चाहिए। व्रत का मतलब ये है कि उस दिन अन्न नहीं खाना है, जल और फल ले सकते हैं। अगर निर्जला हो तो बहुत अच्छा, अगर कुछ लोग क्या करते हैं कि जल फल भी नहीं लेते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन जो नहीं रह सकते, ज्यादा भूखा, किसी को दवा खाना है, किसी को कुछ करना है, तो वो पानी ले सकते हैं, कारने मिल्क ले सकते हैं, और ये अपना लिक्विड जूस ले सकते हैं। इस प्रकार से व्रत अन्न अन्न न खाएं, बस ये मेन उद्देश्य है कि इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए।
0: अच्छा मास्टर जी,
1: चावल नमक ये सब ना खाएं,
0: चावल नमक ना खाएं। हम एक मास्टर जी क्यों ना हम एक गीत के और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये श्रावण मास अंतर्गत तो संदेश और आगे बढ़ाया जाए।
1: जरूर जरूर।

0: सुंदर सा गीत जो श्रावण का अंतर्गत में और हम चलाए आपके लिए रखे सुनने वालों उपेंद्र सिंह जी के आवाज़ में और मास्टर जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। तो मास्टर जी अब ये श्रावण मास में ये बताइए मास्टर जी कि ये मास में क्या हम अपने पितरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए?
1: श्रावण के महीने में खास करके पितरों के उद्धार के लिए ही बहुत अच्छा माना जाता है। जो पितर होते हैं उनके लिए स्पेशली यही महीना है।
0: और पितरों माने तो मास्टर जी ये भी थोड़ा से समझा देना क्योंकि शायद कुछ लोग हैं जो शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे कि पितरों बोले तो क्या, तो पितरों है जो अब इस दुनिया में नहीं है ना मास्टर जी?
1: हाँ, पितरों का मतलब है कि जो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वज मतलब दादा हो गया, नाना हो गया, दादी हो गई, वो इस दुनिया में इस समय नहीं हैं, लेकिन वो हमारे पूर्वज थे तो इसलिए उनको विशेष स्थान दिया गया है। और अगर पितर प्रसन्न हो गए तो सारा काम बहुत अच्छा हो जाता है।
0: कहते हैं कि पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, इस पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए ना?
1: बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण जो है इस महीने में अगर आपने सावन के महीने में पितरों के लिए कर लिया, क्योंकि पितरों के लिए सरल काम नहीं, बहुत बहुत सारी मेहनत लगती और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, तब पितरों का पूजा होता है। 21 ब्राह्मण बैठते हैं, 11 ब्राह्मण बैठते हैं,
0: ऐसा
1: फिर पितरों का उद्धार होता है। और उसके लिए पितरों के लिए कहाँ पे करते हैं, या तो तर्पण देते हैं, तर्पण या तो फिर तर्पण घर पे ही दे सकते हैं। और दूसरा जो है पितरों के लिए हम लोग क्या करते हैं कि तीर्थ स्थान पे जाते हैं, तीर्थ स्थान पे जाते हैं, वहां पिंड भरते हैं पितरों के लिए, और वो पिंड भरते हैं और सीधा डायरेक्ट वो पितर हमारे प्रसन्न हो जाते हैं उन पिंड भरने से,
0: ऐसा।
1: तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि जब पितर प्रसन्न हो गए, पिंडदान हो गया, और फिर वो पितरों तक पहुंच जाता है, यानी जहां भी वो है वो वहां प्रसन्न हो जाते हैं। जब वो पितर खुश होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती है। तो पितृ ऋण जो है जरूर उतारना चाहिए, ये विशेष करके यही महीना में उसका पूजा पाठ होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो क्यों ना जिन लोगों को हॉलैंड देश में वो कराना है तो आप पंडित लोगों से, आप लोगों से संपर्क करके अपने पितरों के उद्धार के लिए ये जरूर करना चाहिए। और ये महीना बहुत ही विशेष है, जैसे विधि विधान से करना है तो उनको तो वो बड़ा लंबा आना पड़ेगा भारत, तो तीन जगह उसके लिए, पहली जगह है उसके लिए विष्णुपाद यानी गया जी में,
0: गया एकदम बिहार के साइड ना मास्टर जी?
1: जी जी जी, बिहार में वहां होती है पैरों की पूजा, उसको बोलते हैं विष्णुपाद। भगवान राम ने भी राजा दशरथ जो उनके पिता थे उनका पिंड भरे थे वहां उस जगह पे,
0: ऐसा।
1: हाँ, और फिर दूसरा होता है छाती का, वो होता है काशी में, और तीसरा होता है वो होता है सिर का, वो होता है बद्रीनाथ में। तो जिस प्रकार जो लोग शुरुआत करनी चाहिए वहां से, फिर यहां, फिर बद्रीनाथ लास्ट, उसको बोलते ब्रह्म कपाली। तो फिर पूर्ण रूप से पितरों का कार्य हो जाता है जब ब्रह्म कपाली में कर लेते, इसके बाद पितरों का तर्पण नहीं देना कभी नहीं, क्योंकि वो एकदम मोक्ष हो गया।
0: ऐसा लोग अपने पितरों के लिए कर सकते हैं यानी कि?
1: जी जी जी, ऐसा कर सकते हैं। और जो लोग ये नहीं कर सकते हैं वो लोग क्या करना है कि उनको अपने घर पे ब्राह्मण को बुला के तर्पण करना है, दूध, तिल, जौ और घी पंचमेव पंच जो मैंने अभी विधि विधान बताया उसके अनुसार वो सब अपने घर में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो काफी लंबा हो जाता ना, तो जो लोग इतना नहीं कर सकते वो वहीं से कर सकते हैं अपने घर से पितरों के लिए।
0: सूक्ष्म रूप
1: मेरा बहुत विशेष है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस प्रकार से करें, और क्यों ना हमें सुंदर का जो सावन का महीना है पलम नाची मोर, मोर भी इस महीने में नाचते हैं।
0: बिल्कुल, तो हम वो गीत चला देते हैं मास्टर जी।
1: हाँ, जब मोरों को भी पसंद है तो क्यों नहीं चलाया जाए।
0: बिल्कुल
1: जरूर।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर।
1: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
0: पवन करे शोर।
1: हाँ,

चेयर आर झूमे जैसे जैसे कौन नाच रहा है। और मास्टर जी ने जो अभी संदेश को रखे कि श्रावण मास, ये मास जो है कि लोग अपने घर पे, और जो कहा जाता है कि एक बन हेल मांत श्रावण फेख तारीस, इन बातों पे ध्यान देते हैं। और इस मास में जो कि ख़ास करके मास्टर जी ने अभी संदेश को रखे कि सोमवार व्रत किस प्रकार से करना चाहिए और अपने पितरों के लिए क्या कर सकते हो आप, सभी पे मास्टर जी ने खूब ढेर सारे संदेश को रखे हैं। हम कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं।

जा रहा है श्रावण मास के अंतर्गत। और दोस्तों सुनने वालों, आज संदेश को रखा गया इस अंतर्गत में हम एक और लखबीर सिंह के आवाज़ में एक कावर अंतर्गत सुंदर सा गीत को सुनेंगे।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा हूँ, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हार्दिक से नमस्कार करता हूँ। फाहन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से नमन करते हुए हम सब फिर एक बार उपस्थित हो गए हैं कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर। और ज्योति का प्रकाश में आज का संदेश में अनुराधा जी कुछ ज्ञान की बातें रखने वाले हैं, और राजेंद्र जी जो भारत देश से भी जुड़ने वाले हैं और कुछ अच्छा संदेश, खास करके जो 60 साल के होने वाले हैं, शांता जो 60 साल के होने वाला है
1: जी।
0: संदेश उसी के बारे में है।
1: ओ, अच्छा।
0: तो अभी तो जब हम होंगे 60 साल के, वो गाना भी चलाना पड़ेगा क्योंकि उसमें काफी संदेश है। दोस्तों सुनने वालों, देखते हैं शांता जी आप अपना एंट्री लेते हैं।
1: कौन वाला है? हेलो। अच्छा, जरूर से सुनाए जी। मेरे प्यारे सुनने वालों, स्टूडियो में मैं भी उपस्थित हूँ, मैं यानी कि शांता जी भी उपस्थित है, तो स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार।
0: शांता जी प्यार भरी नमस्कार। पर शांता जी आपका आवाज़ मेरे ख्याल से ओके ही नहीं था। बे नहीं, ये वाला मेरे ख्याल से।
1: और अब, हाँ
0: अब तो आवाज़ ठीक
1: है। सिग्नल अब दिखा रहे हैं कि आवाज़ ठीक से जा रहा है। तो एक बार फिर यहाँ से स्वीकार कीजिए सिविका शांता की प्यार भरी नमस्कार।
0: कहते हैं कि माइक्रोफोन ऑन करना।
1: एक बार फिर यहाँ से आपको हम बहुत प्यार के साथ ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में आपको स्वागत कहती हूँ, और स्वीकार कीजिए यहाँ से सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार।

0: सुने लो, जुड़े हुए हैं भाई राधे जी। भाई राधे जी, आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है और आपको और जो समय निकाल के हम लोग के साथ जुड़ गए हैं, नमन करता हूं।
1: सभी सुनने वालों के मेरा साधुवाद, नमस्कार, प्रणाम हो। और अभी जो हम प्रोग्राम में आपके साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे, तो हम जरूर उम्मीद आशा करते हैं कि हम सब मिलकर के एक अनहेल फाइन आउटस्टैंडिंग हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं ये प्रोग्राम पंडित जी के साथ, शांता जी के साथ और अनेक अनेक खास्ता जो है उनके साथ हम लोग मिलजुल के ये प्रोग्राम सजाएंगे।
0: जरूर। और दोस्तों, अभी आपने भी सुन भी चुके हैं कि भाई राधे जी जो कि हम लोग का संदेश देने वाला कि जो विवाह संस्कार होता है ना शांता जी, विवाह संस्कार सभी बच्चों, सभी माताओं पिताओं यही इच्छा रखते हैं कि हमारे लड़के जो जाकर के सीता के तरह, राम के तरह और उनका विवाह हुए। और कहने के बात ये है भाई राधे जी कि अभी ये बात मैं थोड़ा हिसाब से कहना चाहता हूँ कि नसीब वाले के घर से बारात निकलते हैं और नसीब वाले के घर पर बारात आता है, इस पे आप क्या कहने वाले हैं?
1: सही बात है भैया, कर्म अनुसार सभी हो रहा है। और फिर भी जब पैसा है तो बाराती है, और जब पैसा ना है तो ससुर दामाद भी कोई के ना कह लग सकत है ना। तो सभी मोह माया के खेल है। और जहां तक लक्ष्मी और नारायण है के आशीर्वाद है तो विवाह संस्कार मंडप में होई, और जब उकर आशीर्वाद ना भैया तो चंद दिन के मेहमान हैं ना, ये दुल्हा दुल्हन एक साथ और तो दिखे उजा है हंसु एक वजा है सरमक्का, तो घर घर गृहस्थी ना चलेगा,
0: ये ठीक नहीं ये होता।
1: ये सब चीज भी मिले है देखे के ना, वात हेल यामर इस मार दत इस वेल दरियाली तेज फंद दख।
0: और अभी ये बात भी हो रहा था भाई कि हम लोगों ने अब विष्णु का रंग जो है जिस प्रकार से मौर बनवा, क्योंकि अभी तक मौर बनाया जाता है ना,
1: सही बात है, जो
0: मौर बनाया जाता है और जोड़ा जामा बनाया जाता है और यानी कि लक्ष्मी के रूप का और साड़ी आदि पहनाया जाता है, इस जो रंग है इस पे आप क्या संदेश डालना चाहते हैं? जो जैसे कि विष्णु जी के हम लोग जब से जानीला कि पीला होते थे ना,
1: सही बात है,
0: पीताम्बर कहा जाता है, और लक्ष्मी के और रूप जो क्या कहते हैं रंग लाल, तो उस पे हम लोग को परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हाँ अब दुकनिया में ई आला आयल है, दिट इज न्यू इन द मौद, पर देखा जाए कि अभी तलक तो वो रंग का और कितने कितने परिवार में है जो उस पे बहुत ध्यान देता है।
1: सही बात भाई, देखो दुकनियन में बहुत आज रंग बिरंग के मिलत है, बात सही है, तो तुके दूसर फेशे पे है तो ओके किन के पहन लियो ना, लेकिन विवाह मंडप में प्रवेश करे खातिर तो है चाहे लाल,
0: चाहे लाल और
1: दुल्हन के वस्त्र
0: दुल्हा पीला
1: जो है वो लाल, वो शक्ति का स्वरूप है ना,
0: शक्ति का स्वरूप है
1: जी।
0: अब देखिए कि हम लोग जो कहीं जाएला सत्संग में तो हम लोग का टीका भी पीला कभी रहे, कभी लाल रहे है और कभी ख्राइस रहे, इसमें भी संदेश है ना।
1: सही बात है, और जैसे उपरेहित है कौन कौन मार्ग से आप है तो लाल टीका लगाएंगे, चंदन के लिए टीका लगाएंगे, गोपी चंदन लगाएंगे,
0: इस प्रकार से यानी कि सब चीज में कुछ ना कुछ संदेश है। और कहने के तात्पर्य यह है कि शादी विवाह जैसे कि राम और सीता के तरह होते आए हैं हम लोग लेकर के, जो भारत में हमारे पुरखों ने और 150 साल पहले लेकर गए थे और अभी तलक कितने कितने परिवार में होते आए। कभी अब देखा जाए कि गत दिनों हम एक जनेऊ संस्कार में थे तो किसी आकर के और कहने लगे कि भाई अरे अभी तक जनेऊ संस्कार हुए हैं, उसको वो इस बात को आश्चर्य हो रहा था। पर कितने होता है, कितने परिवारों में ऐसा संस्कारों का कार्य आगे यानी कि होते रहते हैं। और ऐसे ही हम लोग यही आशा रखते हैं कि हम लोग के कार्यक्रम, हम लोग जो अपना संस्कारों का कार्य है इसी प्रकार से करते आगे बढ़ते चले जाए। हम लोग करेंगे तो हमारे बच्चों भी करेंगे, और हमारे बच्चों भी करेंगे तो उसके बच्चों भी करेंगे, और देखा जाए कि 4-5 पीढ़ी और देखत देखत पार हो गया ना सूरीनाम जो लेकर गए थे।
1: सही बात है भाई। देखो ये जनेऊ संस्कार जो आप कहे ना कि उसमें मारक देवत है हम लोग लड़कन के कि तू अब बच्चा ना बाटे, छोटा लड़का अब ये खात न्यू नीवर्तित अंदर होर अंदर फरंतोड़क है दिन वंच वोर्त एंखलक फोर बरेत अप या तो संन्यास लियो या तो तू गृहस्थ बनियो ना अन एक देख कैनस over het hoe en wat het leven is. Je spirituele kennis, je materiële kennis.
0: Klopt, bole jeneu sanskar ke jo hum log kabhi bole upnayan sanskar ya vedant sanskar hai, want je krijgt de mogelijkheid, de toegang tot de vedas.
1: Ja,
0: om verder te ontwikkelen.
1: सही बात
0: और है। इन बातों पे सभी को जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब कुछ कार्यक्रम को सुनने वाले कुछ आजी है, कुछ दादी है, कुछ नानी है, तो इन बातों पे अपने बच्चों के साथ बात करो। और जब संस्कार करेंगे तो हाँ ये इस बात को डर नहीं रहेगा कि अरे हमारे ना रहने पे हमारा संस्कार नहीं हो पाएगा। और ज़्यादातर लोग डर के मारा कहते कि हाँ हमारा संस्कार ना हो पाए कोई बात ना है इस पे। जब आप करेंगे, आप अपने बच्चों के साथ इसके बारे में बात करेंगे, आप अपने क्लाइन केंद्र के बारे इसके बारे में बात करेंगे, तो आपका और ये अटल है कि आपका और कोई भी कार्य और आगे होते रहेंगे। भाई एक हम गीत चलाना चाहता हूँ जो आपके चुना हुआ है।
1: धन्यवाद।
0: तो हम रख देते हैं प्लेयर पे,
1: हम मिलजुल के सुने
0: और मिलजुल के सुनते हैं।

पैसा के गठरी शीश धरी और मिरंदा कंतोरो पहुँचाई। ले लो पापा पैसा धर लो, यही तो मेरा कमाई। पैसा लेकर पापा मिरंदा नकली कागज दीन थमाई क्या।

बेटा ऐसा खेल रचाए, गवर्नमेंट जब कागज देखा सबको दिया चिताए। कंतोरों में पैसा नहीं है कि अब रोवत घर के जाए। हाय दैया हम ऐसन जनती, लड़कन दे तो पढ़ाई क्या, करना

एक अवसर जो फिर से आए सबको देता मैं चेताए। भूल चूक के माफ तू करना रंजी देखो भजन बनाए। हाय दैया हम ऐसा जनती लड़कन देत पढ़ाई क्या करना।

0: ये सुंदर सा गीत हम सब सुने एक सूरीनाम का कलाकार भाई राधे जी, और क्या ये कलाकार का नाम पता और संदेश इसके बारे में आप रखना चाहते हो?
1: भाई हम यहाँ ना सुन ले कौन संगीत आप वहां पर पेश किए हैं, तो हम इसके बारे में कुछ ना बता सकते थे।
0: हम आपको बस हाँ कनाल पे हम आपके स्कागल किए पर आप नहीं सुन पाए। अच्छा, ये सुंदर सा संदेश देखो, सूरीनाम के हमारे कलाकारों जो है अभी तक कुछ कलाकारों है जो यानी कि हम लोग के परंपरा पुराने बातें के लिख करके सुंदर रूप से अपना कला को और प्रदर्शन करते हैं। शांता जी, इस पे आपका क्या ख्याल है? ऐसा सुंदर सुंदर संगीतों, क्योंकि नित आलस सब पे अब पहले जैसे एलपी ही बनता है, सिंगल बनता है, वो नहीं हो पाता है ना, प्लाता साग बस्ताते ना है। आप ये सुंदर सुंदर गीतों कहाँ से निकाल करके लाते हो?
1: कुछ कुछ हमारे प्राइवेट कलेक्शन में है, कारण के संगीत से हम उखीला, संगीत से सुतीला, संगीत धल्ले हमरे खत एक बहुत बड़ा पूजा है, उसमें भी शब्द ब्रह्मा है। संगीत के कारण हम लोग बहुत ज्ञान हासिल कर सकेला, और इसे तो भी भाटा करेला और कुछ बांती के गाना भी है, वो सब मनोरंजन के वास्ते है, लेकिन भजन और स्तुति ये सब वगैरह वगैरह संगीत के माध्यम से भी मिल रहा है हम लोग के, तो हम इसे बहुत लगाव रखते हैं और फरसामलिंग हमारे पास है कुछ कुछ
0: इस प्रकार से। ओ भाई, और क्योंकि अभी हम बड़ा सुंदर सुंदर संदेश की ओर बढ़ने वाले हैं, अनुराधा जी जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं भारत से और कुछ ज्ञान के बातें लेकर के, पर कुछ हमारे इतिहास और जो हम इस समय बात कर रहे हैं कि विवाह संस्कार कैसे करना चाहिए, दुल्हा के नाच होना चाहिए, इन बातों पे हम लोग ध्यान दें। और अब देखा जाए कि कभी कभी हमारे जो जैसे कि आपने कहा भी अब जैसे कि पहले शायद विवाह और सस्ते में हो जाता था और अब कुछ उसका भी दादा का मोल का समय हो गया है, पर क्या हम अपना जो परंपरा पे इन्वेस्टेयर करते हैं या हम दूसरे के दिखाने वाला चीज़ों पे इन्वेस्टेयर करने लगते हैं ताकि खूब हाँ महंगा हो जाए, खूब ऐसा दिखाए कि हाँ हमने एक शादी में गए, इस पे क्या ख्याल आपका?
1: बात ये है कि उसका अंतरात्मा में क्या नाचत है ना, वो जो मांगे दिखावा करे भैया तो और शुक्रो ढहर भैया अपने कॉफी में चाय में तो और मीठा हुई दुनिया के दिखावे खातिर ना, लेकिन ये विवाह संस्कार जो है दैट इज सम हेल स्पिरिचुअल, इट्स जैसे आप अब हम लोग कहते हैं ना कि जनेऊ संस्कार में आप गए थे, तो जनेऊ संस्कार में जो हम लोग के धागा मिलत है वो बस्ता तैखल कद्री देला ना, उस पर भी देख सके कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, और फिर उस पे ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है,
0: देव
1: ऋण है ना, तो वहां पर हम लोग के कुछ न कुछ कि देखो बेटा कि 16 संस्कार में तो जनेऊ संस्कार भइल है, अब तो के चाहे ज्ञान हासिल करे के दारना खाय आस गृहस्थ ऑफ ये केस फॉर संन्यास, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, आन खलीक नहीं थे इवेंट है, तो इसमें हमारे देखे में दिखावा खतरनाक चाहिए करे के तो के जो चाहिए करे को ही कर ना, वांत दित एशिया और भविष्य और दित इस नीतन अफंतु फॉर वीकेंड
0: नहीं। और कहने के तात्पर्य यह है भाई, अब आप और हम और अब ऐसे सभी जो ये और धर्म क्षेत्र पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कहीं रामलीला हुआ करवाल जाए है, तो कहीं पर संस्कारों में सेवा में लगल हुए हैं, कहीं पर देखो शांता जी इधर भजन करवाते हैं उधर भजन करवाते हैं, रेडियो में जितने यहाँ पर और हमारे कॉलिग है सब कहीं कहीं, रोसिता जी जो कहीं तो नेल खरवा रहा है और जॉनी भाई जो इधरेन इस एक्टिव बेसक में अपन हिंदुस्तानी अपन हिंदुत्व के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए, या हम बस ऐसा भी कर सकते हैं कि घर पे बैठ के और टेलीविजन ले ले जो बटन दबाए तो मैं 300 कनाल से ज़्यादा होते या और जदवे होते होंगे और बस उसे देख करके अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं और कुछ अपना अपने शरीर से अपने के अपने संस्कार के लिए अपने सभ्यता के लिए अपने संस्कृति के लिए कुछ ना करें। तो इन बातों के लिए हम लोगों बैठे हुए रेडियो से और आपको ये संदेश कोशिश किया जाता है कि हम लोग कुछ ना कुछ आपके कानों तलक पहुंचा सके, और कानों तलक जब पहुंचेंगे तो ज़रूर उस पर आप थोड़ा से कुछ कैसे कहेंगे शांता जी उसे कि कुछ जरूर कुछ तो कुछ करेंगे। मेरे ख्याल से शांता जी सोच में पड़ गया भाई।
1: भाई जी देखो हमारे निगाह में जो लड़का पैदा हुए है से हैव मेयर मोख लखेदा हम लोग के दिमाग में दुई दुई वो हिंदू स्कूल है शाखा है हिंदी लेस है, तो देखिए कितना लड़कन अब हिंदी लेस जा है हिंदू बासिस अंदरवेज फॉलो कर है और इसके कारण का है कि हम लोग जो अपन धरोहर लैली है वत ओंस धल्ले रुख खरात इस वत ओंस फंडामेंट इस ना दी वेलवा अन द फॉलोइंग जनरेशन दूर हेवन, और इस पे का है कि जो हम लोग के रुख खरात जब चल गए ना तो हम लोग बिगाड़ के लौटा हो जाए खोई।
0: हाँ दोस्तों बस बिल्कुल जैसे भाई कह रहे, देखा जाए भाई कि अब देखो जो हम लोग के यहाँ होलांत में नई खतीन द्रियन तख्त से जो रखा गया बनाया गया हिंदी परिषद नई दलांत उसमें से मेयर दान 30,000 खतुस्क्रिफ्त उत्खस्क्रिफ, यानी कि हम लोग के जो अभी नहीं लिए हुए होंगे तो वो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि पछड़ गया क्योंकि कभी देर नहीं हुआ है, पर अपने बच्चों को हिंदी ये संदेश हम लोग का भाषा कम से कम न रहे। हम ये बात पे विश्वास नहीं करते कि कोई कभी काल के करते हैं कि भाई वो लईफ है नई दलांत एन व दीन नई दलांत स्तप्रात ऐतरात मुझे अपना भाषा, पर अपना जो हिंदी है हिंदुस्तानी है उसे नहीं भूलना चाहिए भी। और जैसे कि आपने वर्णन किया कि हमारे हिंदू स्कूल जो है तो हिंदू स्कूल अपना मेहनत जोर तोर से करते हैं कि हमारे बच्चों जो कम से कम कुछ हिंदू के लेकर के और आगे बढ़ते हैं, ऐसा है कि नहीं?
1: सही बात है भाई। देखो एक दूसरा बात तो देखिए हियर एंड देन हाँ ना सेन और हिंदुस्तानी के योखा स्कूल ना है ये सब बकड़न लोग चलावे है, काहे के बकड़ा लोग हम लोग के हिंदू धर्म के हिंदुस्तानी के योखा स्कूल चलावे है वंस सीन भैया डेथ हेफ द मेयर वार द फॉरन स्लेवन ना ता जो बकड़वा जो के इको बुन अख्त खरोंद ना है वो गैल है खोच हाच के लाइल है यहाँ क्लिनिक खोलेल है यू खास होल खोले है सब चीज खोले है और बकड़ा लोग सब जा है सवेरे सवेरे सूर्य प्रणाम करे है मेडिटासी करे है क्यूर्सिस देवे है लक्ष्मी अस्तकम करे है यहाँ पर दिनाख पे कितना इंस्टांसी से जो खातिस ला सभी देवे है ना वारोम ओम ये सेल्फ तक क्यों ना अंतविकल नीत आलेन आलेन ऑफ मटेरियल
0: मर मेंटल एंड फिजिक ओक वांट। अब देखा जाए यहाँ पर दत्रा जी दवाई लिख दे भाई राधे जी, तो जब दवाई जब कमती करने लगता है कमती करने पड़ता है दत्रा को तो अपोतेक वाला भी गुस्सा आने लगता है कि भाई अरे ये कैसे हो गया अभी हम लोग संदेश रखने वाले हैं। और शांता जी भी एक और गीत चला देते हैं। शांता जी आपके क्या ख्याल है? तो भाई राधे जी एक और गीत चला देते क्योंकि अभी अनुराधा जी जो हम लोग के साथ कनेक्ट होने वाले हैं आप सुनते रहना।

0: सुंदर सा गीत एक हमारे सूरीनामी कलाकार भाई राधे जी के कलेक्शन से निकाला गया। दोस्तों हम भाई राधे जी और भी संदेश रखने वाले हैं। राधे भाई और क्या सुनाने वाले हो आप?
1: भाई जी ये जो बैठक गाना हमार है सरनाम के अंदर धरले हम लोग के खातिर बहुत बड़ा दवाई है ना। जब काम से हम लोग घर आएला तब एक दो तीन गाना इसे सुन ले तब दिल में बहुत आनंद उठत है। और फिर भी आजकल तो देखत है अपने यूट्यूब पे यहाँ यहाँ वहाँ जहाँ सब जगह चाहे क्वाकू हो चाहे मिलन हो चाहे जहाँ बैठक गाना हम लोग के तो एकदम पनी अशोक जैसे बोले है दराई हुए है और लाइव परफॉर्मेंस हुए है अनेक अनेक कलाकार उत्पन्न हुए हैं। और हमारे बैठक गाना जो सिरनाम में होता था पहले और यहाँ तनी मनी परिवर्तन हो रहा है बाकी कोई बात ना है मनोरंजन है और सब कोई चीज वाले चले है और बहुत आनंद है में है।
0: पर भाई इस पे मैं शायद विषय थोड़ा से मैं बदलना चाहता हूँ क्योंकि कुछ सिरनाम के गर्मी के ओर हम जाने वाले हैं। तो अब देखा जाए ये सुंदर सुंदर गीतों के साथ आप हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं सूरीनाम के बारे में उसके सूरीनाम में आप गाय गोरु पोसते थे?
1: हमारे पिताजी के पास तो गाय गोरु खसी बकरी सब रहा मुर्गी हम लोग के सब के रहा ना। हम लोग तो सूरीनाम में शहर में ना रहते ही हम लोग पछवानी का में रहते ही तो जमीन रहा दाना हच दा छोट मुख लखेद और घर में तो सवेरे सवेरे जो गाय के दूध दो हाथ हाथ हम लोग खौलाए के पी के तब हम लोग जाते स्कूल और भाजी भात दूध सहित कभी कभी दही कभी कभी साढ़ी भात हम लोग खाए के तब जाते स्कूल।
0: पर भाई अब मन में कुछ और उठे हैं। मुर्गी आपने कहा कितने थे पिता के घर पे बकरी भी थे और पर अब गत दिनों में एक अपना मित्र से बात कर रहे थे
1: जी
0: तो कुछ बातें हम भूल गए। कितने प्रकार के मुर्गी होते थे? अनामू मुर्गी होते थे पिरनेकी मुर्गी होते थे
1: अरे रसोरू
0: हाँ और अरे घर वाला ज्यादा
1: जी जी
0: तो उन्होंने ये बात किया कि ये अनामू मुर्गी शायद मैं गलत कहते होंगे पर वो कैसा होते थे?
1: देखो उसके हम बहुत उकर बारे में ना बताए पावे कारण के हम 9 बरिस के रह ली तब सरनाम छोड़ के हम लोग नहीं इतनी फेम से इवन तक में निधनान कह ली है। लेकिन हम जाने ला कि करिया वाला रहा मुर्गी ब्रॉयन वाला रहा उज्जर वाला मुर्गी रहा ना बड़का छोटा सा रकम के रहा अंडा देवे वाला मुर्गी लखोरन रहा और हमारा जी तो मुर्गी पोसा था वो लखोरन तो अंडा ले जाता है शहर में बेचे के तो ऐसे ऐसे सब के अपन काम रहा और गांव में बिकाता है जो उनको छोड़ के।
0: अब शांता जी इस पे जरूर कुछ संदेश रखने वाले हैं क्योंकि हाँ और डोक्सी डोक्सा भी हुआ करते थे ना?
1: जी सही बात है।
0: और किस प्रकार की शांता आपके घर पे होते थे इन जानवरों?
2: हाँ तो ऐसे हम लोग छोटा छोटा रहे तब यानी ये फ्रो और स्कूल हम लोग स्कूल भी खेले वही मुर्गी दरबा हम जाए के मुर्गी संगे
0: आप मुर्गी के पढ़ाते थे?
2: हाँ अरे छोटा रहिए तब जाने ढेर चीज देखिए तब मंगिए भी वैसने ना दून करे तब रास मुर्गी के दरबा हम लोग बैठ जाए तो रास मुर्गी के दरबा पार्त रहे और लखोरन जैसे राधे भाई बोले तो लखोरन के अपार्त रहा और लखोरन में इस साल ब्रॉयन रहे
0: ऐसा होता
2: है।
0: हाँ और
2: डोक्सी अम्मा बाप एगो पेटी बनाए रहा तब जाए के खेत में से डेवका के खोता तूर के लावे यानी डेवका
0: हाँ हाँ हाँ।
2: तो ओकर डेवका खोतवा लाए के वही डोक्सी के पानी में जे धर दे तो डोक्सी के फरियारी रहत रहा
0: वो देवका के खोता से खूब पेट भरते थे।
2: हाँ तो पनिया में धरिए तो देवको ने निकरे तो दुखसियन खूब खाए नाच नाच के।
0: ऐसा भाई राधे, इस बातों को पता था आपको?
1: नहीं, ये बात के हमके तो पता ना था, कारण के हम लोग कहती जोका ना रहा
2: ना, ना, ना, ना,
1: हम लोग कुछ कपूरी रहता तब सब मेतेन वाई हो जाता, तब देवका उका के पेड़ में ना मौका मिला था होए खातिर
2: ना ना। अरे 50 केतिया यानी लंबा खेत रहा था, हम बाप जे देखे तो जाए के स्पेशल उतके तूर के काट के लाई के डोक्सी के देवे, तो तय दिल कर हाथ डोक्सी वहाँ तो सब लड़का ना, हम लोग तो छोट रही, हम लोग जाए स्कूल उल तो हमारा माई बोले ना ये सब चीज लड़का ना जाए करे, लड़कन के जाए पढ़े के
0: ऐसा
2: तोर की ढेर चीज ढेर के मुँह डोक्सी उक्सी डोक्सी ना रहा वहाँ डोक्सी, जब खोन छोड़ दिए रैन में रहे भी तो डोक्सी ढेर मोरसू करे तो
0: मोरसू करे तो
2: एकदम से पचा पच रहे और जो पानी बरस जाता पलो।
0: एक चीज और मैंने सुना था कि कोनो फिंगा वाला फोर फिंगा की फेफी
2: फिंगा,
0: हाँ वैसा भी होते थे ना। पर राधे भाई शायद इस बात को भी आपको पता होगा कि कुछ कबूतर भी लोग अपने घर पे पोसते थे ना, जब हम लोग जब तनी जवान होने लगली तब मंगली कबूतर अपने घर पे पोसे, पर घर वाले माता पिता उसे कहते थे कि हाँ ये कबूतर जो जा कर के घर के कुछ ले कर के उड़ जाते हैं, घर में आमदनी नहीं होता या कुछ कुछ पुराने बातें जो शायद अब ख्याल नहीं आ रहा है, पर

0: है, ये सबके खफांगा खप में धर के ना अच्छा है कि अरे गावल है गाना कि सोनवा पिंजरा में बंद भैले हाय राम चीरे के गिरा उदास ना, यही पाए के गिरे है कि एक दूसर जीव के तो दुख ना पहुंचाओ। एंड एक देंग दत मुरेल अख्त खरोंदार फानेस फान कबूतर के तो कहे के वन ओके चाहेगा नतूर में रह के ओके चाहेगा उड़े के चाहे पत्ता खाए के फल वल खाए के तो करा दिन बंद कर ले रही है तब उगर कह के ठीक ना है
1: ओ साइट ई मेरे ख्याल से भी कुछ और रहा। अच्छा भाई राधे, क्योंकि कहते थे कि हाँ ये घर का आमदनी आदि लेकर उड़ जाएगा या कुछ, मर भूल गया हूँ। इसी प्रकार से कुछ जानवरों को घर में नहीं पालते थे लोग, और कुछ जानवरों जो जानबूझ के शिकारी लोगों ने अपने घर में पालते थे जैसे पिंगो पकीरा आदि, तो वो भी कभी काल के ऐसा ऐसा हादसा भी हो गया है कहीं कहीं परिवार में कि वारसा अख्तराफ स्पैत फनहादा।
0: हम जानी है कि लोग बेनालान से बंदर लायल है अपने घर में, वो कोई में पोसत था, हर में खाना पानी देवा था, और वो बंदर जब कांस पावे तो निकल के भाग जाए या तो काट ले खनार के ना मैं ताल खफोल खफंदीन। तो एक जाने के हम जानी उस सबके घर है बहुत बड़का रहना रहा, तब हर में बंदर के खाई देवा था, तो बंदर एक दाई एगो लड़का क्या मुरिन काट दे लोकर बहना एक कोचे बहना निकल के रहा एंड दत मुस्ते रख है तो और मैं तालस दरो पंदरान और आज दिन तक ओकर मुरी तनी टेढ़ा है जो सातवास नीत सौंदर खफार।
1: हाँ, कोई कोई इस पे अब देखा जाए कि हम लोग का हरदम संदेश हमारे पुरखों ने रखते गए कि ये जानवर ये कुछ होते पालने वाला जानवर ना, और कुछ होते हैं जो जैसे कि आप कह रहे थे कि चिड़िया आदि को और खुले आकाश में रहना है, और कुछ जंगली जानवर होते हैं, तो सबके अपना अपना स्थान होते हैं और कभी काल के और हादसा इसी प्रकार से हो ही जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है।
0: सही बात है।
1: क्यों ना हम एक और गीत की ओर बढ़ते हैं जो आपके चॉइस है, और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए।
0: धन्यवाद।

0: जी जरा कह दो संवरिया से कि आया करे और ना जाया करे। संवरिया राधे राधे, आप कहाँ हो संवरिया?
1: यहाँ हूँ।
0: हाँ संवरिया कह सकते हैं अपने अपना वेदर हेल्फ को, और संवरिया भी कह सकते हैं अपना इष्ट देव को, ना?
1: सही बात है।
0: हाँ तो
2: हाय राधे, हम सब यहाँ कार्यक्रम जो पहला भाग का समाप्ति हुआ।
3: भाई राधे, यहाँ कार्यक्रम जो हम सब पहला भाग के समाप्ति की ओर आकर पहुँचे हैं, आपको बहुत से धन्यवाद दिया जाता है और यही आशा रखता हूँ कि इसी प्रकार से आप हम लोग के कार्यक्रम में सहयोग देते रहना। हम देख रहे हैं भारत से राजेंद्र सिंह जी इस समय हम लोग के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, तो हम उसे अंदर लाते हैं और आपको बहुत से धन्यवाद दिया जाता है कि आप हम लोग के सहयोग
1: के बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम नमस्कार।
3: नमस्कार।

0: उमरिया घटती जाए रे। और जैसे कि सुनने वालों, अभी आप सुनने वाले हैं कि राजेंद्र सिंह जी, हमारे मास्टर जी, जो भारत से हम सबके साथ जुड़ गए हैं, और आज क्या संदेश रखने वाले हैं। तो मास्टर जी, आपको हार्दिक से स्वागत करते हुए, आप ही का कार्यक्रम हम सब बना रहे हैं यहाँ पर, और आज खास करके जो 60 साल के होने वाले हैं, उस अंतर्गत में हम सबको कुछ संदेश देने वाला है। सर्वप्रथम आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है मास्टर जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, फोन हिंदुस्तानी रेडियो को, श्रोताओं को, सबको मेरा नमस्कार। और जो ज्योति का प्रकाश है प्रोग्राम का जो नाम हमारा है, उसका जो प्रकाश ज्ञान जो मिलता है उसके लिए लोग सुनने के लिए उत्सुक बैठे रहते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, अभी जो आपने सुना है गाना उमरिया घटती जाए रे, तो जो उमरिया है वो घटती जाए कितना साल बाद, 60 साल के जब ऊपर हो जाते व्यक्ति तो ढलान पे आ जाता है एकदम। जैसे बचपन से 18 साल 20 साल गया तो चढ़ाव पे आया, फिर बीच की जो स्थिति रहती है 25 से 60 के बीच की, वो समान रहती है, बिल्कुल एक तरफ रहती है। 60 के बाद जैसे बचपन में चढ़ता है, बीच में रुकता है और बुढ़ापे में घटता है, तो ढलान पे आ जाता है। इसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम ये है, जो नागरिक हैं 55 से ऊपर की, वो अवश्य इसमें ध्यान दें, और उनके लिए जो फायदा है, फायदेमंद है, वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। और सबने इसी उमरिया पे जाना है, हम लोगों ने भी जाना है, लेकिन जो अभी हो चुके इस उम्र पे उनके लिए विशेष है। तो आप जानते हैं कि मन चाहे कितना ही जोशीला हो, पर 60 की उम्र पार होने पर यदि आप अपने आप को फुर्तीला और ताकतवर समझते हो तो ये गलत है। वास्तव में ढलती उम्र के साथ शरीर उतना ताकतवर और फुर्तीला नहीं रह जाता। आपका शरीर ढलान पर होता है, जिससे हड्डियां और जोड़ कमजोर हो जाते हैं। पर कभी कभी मन भ्रम बनाए रखता है कि ये काम तो मैं चुटकी में कर लूंगा, पर बहुत जल्दी सच्चाई सामने आ जाती है, मगर ये एक नुकसान के साथ। सीनियर सिटीजन होने पर जिन बातों का ध्यान रखा जाता है, ऐसी कुछ टिप्स मैं दे रहा हूं इस कार्यक्रम के द्वारा। धोखा तभी होता है जब मन सोचता है कि कर लूंगा और शरीर करने से चूक जाता है, परंतु एक एक्सीडेंट और शारीरिक क्षति, ये क्षति फ्रैक्चर से लेकर हड्डी इंजुरी तक हो सकती है, यानी कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए जिन्हें भी हमेशा हड़बड़ी में काम करने की आदत हो, बेहतर होगा कि वे अपनी आदतें बदल डालें, भ्रम न पालें, सावधानी बरतें, क्योंकि अब आप पहले की तरह फुर्तीले नहीं हैं। छोटी सी चूक कभी बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। सुबह नींद खुलते ही तुरंत बिस्तर छोड़ खड़े न हों, क्योंकि आंखें तो खुल जाती है मगर शरीर और नसों का रक्त प्रवाह पूर्ण चैतन्य अवस्था में नहीं हो पाता। पहले बिस्तर पर कुछ मिनट बैठे रहें और पूरी तरह चैतन्य हो लें। कोशिश करें कि बैठे बैठे ही स्लीपर चप्पलें पैर में डालें, और खड़े न होने पर भी मेज या किसी सहारे को पकड़कर ही खड़े हों। अक्सर यही समय होता है डगमगा कर गिर जाने का। गिरने की सबसे ज्यादा घटनाएं वॉशरूम या टॉयलेट में होती है। आप चाहे अकेले हो या पति पत्नी साथ हो, संयुक्त परिवार हो, लेकिन संयुक्त मतलब ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन बाथरूम में अकेले ही होते हैं। यदि आप घर में अकेले रहते हैं तो और अधिक सावधानी बरतें, क्योंकि गिरने पर यदि उठ न सके तो दरवाजा तोड़कर ही आप यह सहायता पहुंच सकेगी। वह भी तब जब आप पड़ोसी तक समय से सूचना पहुंचाने में सफल हो सकेंगे। याद रखिए, बाथरूम में भी मोबाइल साथ हो ताकि वक्त जरूरत काम आ सके। देसी शौचालय की बजाय हमेशा यूरोपियन, जो यूरोप में शौचालय होता कमोड वाला, उसको ही इस्तेमाल करना चाहिए 60 साल की उम्र वाले व्यक्ति को लिए, क्योंकि जब वो नीचे बैठता तो उठने में दिक्कत होती है। यदि न हो तो समय रहते बदलवा लें, इसकी तो जरूरत पड़नी ही है, अभी नहीं तो कुछ समय बाद। संभव हो तो कमोड़ के पास एक हैंडल लगवा लें, कमजोरी की स्थिति में इसे पकड़कर उठने के लिए जरूरी हो जाता है। हमेशा आवश्यक ऊंचे स्टूल पर बैठकर ही नहाएं। बाथरूम के फर्श पर रबड़ की मैट जरूर बिछा कर रखें ताकि आप फिसलन से बच सकें। गीले हाथों से टाइल्स लगी दीवार का सहारा कभी न लें, हाथ फिसलते ही आप डिसबैलेंस होकर गिर सकते हैं। बाथरूम के ठीक बाहर मूर्ति मैट भी रखें, सूती मैट, सूती मैंने कॉटन का मैट जो गीले तलवों से पानी सोख ले। कुछ सेकंड उस पर खड़े रहे, सिर फर्श पर बैठ पैर रखे, वो भी सावधानी से। अंडरगारमेंट हो या कपड़े अपने चेंज रूम या बेडरूम में ही पहने। अंडरवियर पजामा हो या पैंट खड़े खड़े कभी नहीं पहने। हमेशा दीवार का सहारा लेकर या बैठकर ही उनके पैचों में पैर डालें, फिर खड़े होकर पहने, वरना दुर्घटना घट सकती है। कभी कभी स्मार्टनेस की बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है। अपनी दैनिक जरूरतों की चीजों को नियत जगह पर ही रखने की आदत डाल लें, जिससे उन्हें आसानी से उठाया या तलाशा जा सके। भूलने की आदत हो तो अवश्य चीजों की लिस्ट मेज या दीवार पर लगा ले। घर से निकलते समय एक निगाह उस डाल ले, आसानी रहेगी। जो दवाएं रोजाना लेनी है उसको प्लास्टिक के प्लेनर में रखें, जिससे जुड़ी हुई डिब्बियां में हफ्ते भर की दवाई दिन बार के साथ रखी जाती है। अक्सर भ्रम हो जाता है कि दवाइयां ले ली है या भूल गए। प्लानर में से दवा रखें, उसमें भी दवा रखने न चूक हो जाए। इसमें दवाई खाने में जब वो एक बार के हिसाब से और डे के हिसाब से रहती है ना, तो उसमें याद रह देख लिया फिर गए, हाँ ये तो खा ली। मिनट 60 साल के ऊपर व्यक्ति हो जाता तो उसको भूल जाता है कि मैंने ली कि नहीं ली, क्योंकि वो रोज लेते हैं और अचानक भूल हो जाती है। ध्यान रहे, सीढ़ियों से चढ़ते उतरते समय सक्षम होने पर भी हमेशा रेलिंग का सहारा ले, खासकर ऑटोमेटिक सीढ़ियों पर। ध्यान रहे, आप अपना शरीर आपके मन का ओबिडेटेड सर्वेंट नहीं रहा, जैसे पहले आपका शरीर था वैसा नहीं रहा, इसलिए उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बढ़ती आयु में कोई भी ऐसा कार्य जो आप सदैव करते रहे हैं उसको बंद नहीं करना चाहिए। कम से कम अपने से संबंधित अपने कार्य स्वयं ही करें। नित्य प्रातःकाल घर से बाहर निकलने, पार्क में जाने की आदत न छोड़ें। छोटी मोटी एक्सरसाइज भी करते रहें, नहीं तो आप योग और प्राणायाम व्यायाम से दूर होते जाएंगे और शरीर के अंगों की सक्रियता और लचीलापन कम हो जाएगा। हर मौसम में कुछ योग प्राणायाम अवश्य करते रहे। अपना पानी, भोजन, दवाई इत्यादि स्वयं लें, जिससे शरीर में सक्रियता बनी रहे। बहुत आवश्यक होने पर ही दूसरों की सहायता लेनी चाहिए। घर में छोटे बच्चे हो तो उनके साथ अधिक समय बिताएं, लेकिन उनको अधिक टोका टाकी न करें। ध्यान रखें कि आप अब आपको सबके साथ एडजस्ट करना है, न कि सबको आपसे। इस एडजस्ट होने के लिए चाहे बड़ा परिवार हो, छोटा परिवार हो, या कि पति पत्नी हो, मित्र हो, पड़ोसी या समाज हो, एक मूल मंत्र सदैव उपयोग करें। नून अर्थात नमक भोजन के प्रति स्वाद पर नियंत्रण रखें। मौन कम से कम एवं आवश्यकता पर ही बोलें। कौन, मसलन कौन आया, कौन गया, कौन कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, अपनी दखलदाजी कम कर दें। नॉन मोन कौन के मूल मंत्र को जीवन में उतारते ही वृद्धावस्था प्रभु का वरदान बन जाएगी, जिसको बहुत कम लोग ही उपयोग कर पाते। ये जो संदेश जैसे ही बहुत सारे लोगों को आस पड़ोस में जिन्होंने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो सुन रहे हैं, वो अपने अगल बगल वाले लोगों को भी बताएं, जिन्हें सुबह या रात में सोते समय पेशाब करना जाना पड़ता है, उनके लिए विशेष सूचना है। हर एक व्यक्ति को इसी 3.5 मिनट में सावधानी बरतनी चाहिए। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यही 3.5 मिनट आकाशमार्ग होने वाली मौतों की संख्या कम कर सकता है। जब जब ऐसी घटना हुई है, परिणाम स्वरूप तंदुरुस्त व्यक्ति को, जो व्यक्ति तंदुरुस्त भी होते हैं और वो थोड़ा भी गिर गए तो उनको बड़ा दिक्कत हो जाती है, कभी कुछ फ्रैक्चर हो गया था और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो लोग 60 से ऊपर हो गए उनको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमारे मामा जी हैं, अभी पीछे 85 साल के हो गए, लेकिन वो ध्यान रखते हैं, तो अभी वो 20 साल और रहेंगे। तो इस प्रकार से लोग, संजय जी जो संदेश था, इसके माध्यम से जो लोग 60 से ऊपर हो गए हैं, इस संदेश के माध्यम से उनको और अधिक सतर्कता देखने को मिलेगी और इस चीज को बरतेंगे तो उनके लिए सरल हो जाएगा। तो यही हम फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जो हमारा प्रोग्राम है ज्योति का प्रकाश, इसके माध्यम से लोग इस प्रोग्राम को सुनते हैं। और मैं देखता हूँ कि सरनाम में और हॉलैंड देश में बहुत सारे लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को सुनने वाले हैं और इस चीज का सुनने के बाद लाभ भी उठाते हैं। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो में तार करते हैं और बीच बीच में पूछते हैं, जब भी किसी को लगे कि हमें किस बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से तार करके पूछ सकते हैं। हम प्रोग्राम के द्वारा उनको पूर्ण रूप से ये सब चीजें भी और ज्यादा बता सकते हैं। तो क्यों ना संजय जी एक नगमा की ओर बढ़े और फिर कार्यक्रम आगे जारी रहेगा।
0: जरूर मास्टर जी, नगमा की ओर बढ़ने वाला हूँ मैं और वो गीत अभी तो चले वाले है, पर जो संदेश आपने रखे हैं आज, ये खास करके जो 60 साल के उम्र के ओर बढ़ने वाले है ना,
1: हाँ,
0: और कितना महत्वपूर्ण बात है, ऐसा है कि नहीं शांता जी?
2: बिल्कुल संजय जी, और धन्यवाद किया जाता है राजेंद्र जी को। और उसमें जो आपने कहा वो ट्वाइलेट सेटिंग, तो राजेंद्र जी का मतलब ये है जो आप प्लाते ट्वाइलेट गब्रुक अंदर खबोन असुस्तार लातत नीतु ता खबोन द एरोपे से ट्वाइलेट गब्रुक दैट इज फेल हर एन दार बाई ओक नोक अन स्टोन।
0: हाँ, खास करके जो अभी मास्टर जी ने कहा है कि 60 साल के आयु के से पहले भी हो सकता है, जो एक कैसे बोलते हैं वंत स्टोन लगा सकते हैं आप अपने लिए, ताकि आप गिरने में और गिरने से बच सके। क्योंकि मास्टर जी ये इसमें संदेश का इसमें महत्व तो क्या है, क्योंकि हमारा 50 साल के ऊपर से हमारा हड्डी जुड़ता नहीं ना आदि।
1: हाँ, असल में क्या है कि जैसे जैसे हम लोगों का शरीर उम्र ज्यादा हो जाती है तो हड्डी जुड़ने में दिक्कत हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी में। तो जब हम लोगों की बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डी में ज्यादा दिक्कत आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पानी में थोड़ा चूना डाल के उसको पीना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी न रहे और कैल्शियम वाली चीज ज्यादा खाए।
3: चूना बोले तो
1: चूना एक व्हाइट कलर का चूना जो होता है, जो लोग भारत में आपने देखा होगा तम्बाकू में रगड़ के खाते।
3: हाँ जी हाँ जी
1: हाँ, तो उसको पानी में थोड़ा मिला के एक गेहूं के दाने के बराबर मिला के खाना चाहिए पानी में, तो उससे क्या होते है हमारे हड्डियां में हड्डियां हैं उसमें तंदुरुस्ती रहती है, हर समय कैल्शियम की कमी नहीं रहती।
3: ऐसा
1: जी,
3: तो अति सुंदर संदेश आपने रखे, बहुत सा धन्यवाद दिया जाता है कि मास्टर जी आप हम लोग के साथ भारत से जुड़ जाते हैं कि उमरिया घटती जाए रे। ये मॉडर्न इंडिया से निकाला गया ये सुंदर सा गीत, और मैं देख रहा हूँ शांता जी पिटाड़ा में कुछ खोज रहा है मास्टर जी, पता नहीं क्या खोज रहा है, पर उनका पिटारा उनके साथ है।
1: शांता जी का पिटारा तो हर समय गानों से भरा ही रहता है, उसमें तो कुछ ना कुछ निकलना ही है।
3: हाँ जी, तो देखते हैं क्या सुनाने वाला है शांता जी हम लोग के अपना, और जिस प्रकार से आपने गाना का मांग की है तो गीत चला देते हैं मास्टर जी।
1: जी जरूर जरूर जरूर।

0: सुनेवालों, बड़ा सुंदर संदेश जो राजेंद्र हमारे मास्टर जी ने और रखे, पर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं हमारा कार्यक्रम में, और हर सप्ताह की तरह अनुराधा जी, और अनुराधा जी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए अनुराधा जी को कहूंगा कि अनुराधा जी, आप अपना और संदेश को हम सबको सुनाइए।
1: प्रकाश में सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सब मंगलपूर्वक होंगे और सबका जीवन बड़े ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा, और आप सब स्वस्थ रहें और खुश रहें, यही मेरी कामना है। तो संजय जी, आज मैंने सोचा क्यों ना मैं सभी सुनने वालों को थोड़ी कुछ, मैं हमेशा कहानियाँ सुनाती हूँ, तो आज कुछ मैं थोड़ी पते की बात सबको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि आम हमारी जो आम जन जीवन होता है, रोज का हमारे जो जीवन में, हम रोज की जिंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बोलते हैं, पर कभी कभी वो हम सही तरीके से नहीं करते हैं और हमें पता नहीं होता है कि क्या ये सही है गलत है। पर ऐसा होता है कि हमारे ना चाहते हुए भी कभी कभी हमारा जो व्यवहार होता है दूसरे इंसान को, उसको मन में, उसके मन को चोट लग सकती है, उसको थोड़ा सा बुरा लग सकता है। तो थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी होती हैं, और कैसे हम रोज का जीवन हम अपना अच्छा बनाएं, अपने अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने कुलीग्स की, किसी का हम कभी हम दिल ना दुखाएं, और अपना जीवन कैसे हम अच्छा बेहतर बना सकते हैं रोज का जीवन। तो मैं ऐसा आप सभी को थोड़ी सी कुछ बातें बताना चाहूँगी, तो जो आप बड़े ध्यान से सुने, और ये आपको हो सकता है कुछ आपके रोज के जीवन में कुछ बदलाव लाए तो बहुत ही बढ़िया। पहला तो देखिए, बहुत बार देखा जाता है कि हम कभी सोचते हैं कि चलिए बहुत दिन से हमने किसी इंसान से बात नहीं करी, चाहे हमारे दोस्त हो, परिवार वाले हों, और हमारा मन आया कि चलो इनसे फ़ोन मिलाया जाए, तो हम एकदम से ना हम वक्त देखते हैं ना समय देखते हैं कि दिन का क्या है, और हम फटाफट लगा किसी को फ़ोन मिला देते हैं, मोबाइल मिला दिया। तो ये याद रखें कि लगातार दो बार से अधिक किसी को अगर आप कॉल ना करें, वे यदि आपकी कॉल नहीं उठाते हैं, तो मान लें कि उस वक्त वो जो इंसान है उनके पास कुछ और महत्वपूर्ण कार्य में वो व्यस्त हैं, तो आपकी कॉल नहीं उठा रहे। तो ऐसे में आप बार बार उनको कॉल ना करें। बेस्ट होता है, सबसे अच्छा है कि आप कोई अपना या तो मैसेज लिखकर वहाँ पर आपको उन इंसान को भेज दें, या आप वॉइस मेल में कोई मैसेज भेज दें, तो उससे यह है कि दूसरा इंसान को डिस्टर्बेंस भी नहीं होएगा और वो बुरा भी नहीं लगेगा। ये तो ही फ़ोन की बात। ऐसे ही बहुत बार होता है कि हम पैसे लोगों से, हमें हर को होता है भाई, कभी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ गई और हमें कुछ उधार चाहिए, हमारे पास पैसे की कमी आ गई है, या हमें कुछ खर्चे हमारे ज़्यादा हैं, हमें पैसे ज़रूरत है, तो हम किसी से पैसे उधार ले लेते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप ज़रूरत पड़ने पर आप अपने अपनों से पैसे उधार ले सकते हैं, परंतु याद रखिए कि जब भी आप पैसा किसी से उधार लें, वो उधार लिया धन हमेशा आप जल्द से जल्द, जब हो सके आपके पास पैसा आ गया है, तो वो उनको वापस लौटा दे, और दूसरे व्यक्ति के याद दिलाने का या मांगने का इंतज़ार ना करें। अब ये ना सोचें कि अभी तक तो उसने मेरे से पैसा वापस नहीं मांगा है, तो मेरे को क्या जल्दी है वापस करने की, ये ना आप इंतज़ार करें। जहाँ पैसा आपके पास आ गया है आप जल्द से जल्द उधारी का पैसा हमेशा जल्दी से वापस लौटा देना चाहिए। यह आपकी ईमानदारी और अच्छे चरित्र को दर्शाता है। तो ये याद रखिएगा हमेशा, बहुत इससे आपके जो संबंध भी हमेशा अच्छे बने रहेंगे। एक और बात है, देखिए बहुत बार होता है कि हम किसी के साथ कभी हम प्लान बनाते हैं कि चलिए आज हम किसी के साथ सुबह का ब्रंच करेंगे या लंच या डिनर के लिए हम जाते हैं बाहर। तो बहुत बार होता है कि भाई दूसरा इंसान कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें बाहर खिलाता हूँ, तो अच्छा तो लगता है कि भाई देखिए आज हमें दूसरा इंसान हमें ट्रीट कर रहा है, हमें बाहर ले जा रहा है। तो याद रखें, ये एक तरीके से जब दूसरा इंसान आपको कभी खाने के लिए बाहर ले जाए तो हमेशा याद रखें कि जो आप मेन्यू में खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें ये ना सोचें कि भाई आज तो मेरे को पैसा इसका नहीं देना पड़ेगा तो मैं बहुत महंगी चीज़ ऑर्डर करूं। ये याद रखें, जब आपको कोई दूसरा खिला रहा हो तो आप कभी भी इतनी महंगी पकवान या खाने की चीज़ें ऑर्डर ना करें। यदि संभव हो तो जो आपको खिला रहा है उन्हीं से आप कहें कि आप ही अपनी पसंद के का ऑर्डर कर दें। तो याद रखें कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जस्ट कि दूसरा खिला रहा है तो भाई कितने भी उस इंसान के पैसे खर्च करो। तो यह याद रखने वाली बात है कि देखिए कभी भी दूसरा जो आपको अच्छे दिल से खिला रहा है ना, तो आप उसकी भी इज्जत रखिए और या तो आप कहें कि नहीं चलिए जो खर्चा आया है हम आपस में बांट लेंगे, और या ऐसा वही कह रहा है कि नहीं मैं अपने तरफ से खिलाऊंगा, तो ऐसा करें कि देखें कि ऐसा महंगी वस्तु ना ज़्यादा ऑर्डर करें कि दूसरे को एकदम से बहुत उनका बिल बहुत ज़्यादा आ जाए। तो ये थोड़ी सी जब बात होती है ना तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है। देखिए एक ये बहुत देखने में आता है, हम किसी को मिलते हैं बहुत दिनों बाद मिले और किसी के बेटा बेटी या कोई भी है आप उनसे मिले और आपने झट से पूछ लिया ओ तो आज तुम्हारी क्या उम्र है, या किसी से कि ओ अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, ओ या आप कह कि ओ तुम तो अभी इतने साल के हो गए अभी तक तुम्हें कोई तुमने अभी तक काम नहीं करते हो, नौकरी नहीं मिली ढंग की, या आप कभी ऐसे सवाल करें ओ तो आपके क्या आपके आपके कोई आप किसी से पहली बार मिले या कोई आप नहीं जानते हो और मिले और फिर कहें क्या आपके बच्चे नहीं हैं। तो ऐसे अजीबो गरीब जो हम ऐसे सवाल करते हैं ना, तो ये कभी ये बहुत ही खराब लगता है और बहुत ही मतलब ये ऐसे सवाल करने से ना किसी को ये बहुत मन को किसी के ठेस पहुंच सकती है और ये बहुत बुरा ये आपको मतलब दूसरे को मन में लग सकता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि हम ऐसे अजीबोगरीब किसी से डायरेक्ट ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए कि ओ भाई क्या आपने अभी तक ये घर नहीं खरीदा, या तुम्हारी ये बताओ तुम कितना कमाते हो, तुम्हारे कितने पैसे कमाते हो हैं, और तुमने अभी तक गाड़ी नहीं खरीदी। तो ऐसे जो बहुत व्यक्तिगत तरीके से के जो ये सवाल होते हैं ना, हमें ऐसे देखिए जब पहले किसी से नए मिलते हैं उनसे भी नहीं पूछना चाहिए, और अपनों से कितना भी हमारे अपने हो तो हमें बड़े सोच समझ कर ऐसे प्रश्न रखने चाहिए जिससे कि दूसरे के मन को ठेस ना लगे। और ऐसे सवाल करने से बहुत बार दूरियां आ जाती हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो याद रखें कि हम जब किसी से पूछें तो अगर वो खुद बताते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं बताते हैं तो चुप रहिए और ऐसे कभी डायरेक्टली या सामने मुंह में किसी से ऐसे सवाल ना करें जिससे कि उनको एकदम से सुनने में ये बुरा लगे। तो ये सब बातें थोड़ा सा दिमाग में रखनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने व्यवहार में और कैसे हम क्या बोलें कि दूसरे इंसान के को ऐसे मन में ठेस ना पहुंचे और बुरा ना लगे। तो संजय जी, आज मैं ऐसी कुछ आगे और भी बातें बताऊंगी जिससे थोड़ा सा हमारे सुनने वाले थोड़ा ध्यान रखें। तो पर क्यों ना पहले एक गीत हो जाए और फिर आगे हम बढ़ेंगे।
0: जरूर अनुराधा जी, आज संदेश में संदेश, क्योंकि आज का कुछ ध्यान देने वाले बातें जो हम सब रखने की कोशिश कर रहे हैं आज, और देखा जाए कौन सा गीत शांता जी अपने पिटारा से खोज करके रखे हुए हैं।

0: सुने वालों, ये सुंदर सा गीत अब चलाया गया आज का संदेश में, जो अनुराधा जी संदेश रखने वाले हैं। भी और भी संदेश ना अनुराधा जी, तो आप अपना संदेश को आगे बढ़ाइए।
1: चलिए आगे बढ़ा जाए और पता करते हैं और क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो अक्सर देखा गया है कि हम घर में, तो चलिए घर में दरवाज़ा खोला बाहर निकले, पर कभी हम बाहर कोई बिल्डिंग में जा रहे हैं या कभी हम ऑफिस में ही हों या कहीं भी और दरवाज़ा जो होता है ना, हम अंदर घुसे और आगे पीछे नहीं देखते कि हमारे कोई है और बस दरवाज़ा छोड़ दिया। बहुत बार होता है कि हमारे पीछे भी कोई व्यक्ति है और ऐसे हमारे लापरवाह तरीके से अगर हमने दरवाज़ा ऐसे छोड़ दिया तो उस इंसान को चोट लग सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अपने पीछे आने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा दरवाज़ा खोलें। जब आपको दिखे कोई आपके पीछे है तो खोलकर हमेशा दरवाज़ा, या आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह लड़का है या लड़की है या कोई सीनियर है या जूनियर है आपसे, आप सार्वजनिक रूप से किसी के भी साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो इंसान को बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए ये आपने किसी के लिए दरवाज़ा खोला। ये छोटी सी बात है पर बड़े मायने रखती है कि आप किसी के लिए अगर दरवाज़ा खोलें, खोलकर रखें और दूसरे इंसान को भी अंदर जाने दें। दूसरी बात ये है कि यदि आप किसी दोस्त या अपने किसी कुलीग के साथ कभी कहीं आपको बाहर जाना होता है और आप टैक्सी एक साथ टैक्सी लेते हैं और टैक्सी लेते हैं तो वह अभी भुगतान करता है तो याद रखें उसने अगर उस बार टैक्सी के पैसे दे दिए और आपसे कहा नहीं नहीं मैं टैक्सी के पैसे मैं दूंगा, तो याद रखें अगली बार जब आप जाएं तो आप जो टैक्सी का अगली बार जाएं तो आप उस पैसे का भुगतान करने का प्रयास करें या पैसा आधा आधा बांट लें कि टैक्सी का जो भी खर्चा आया हम आपस में बांट लेंगे। तो ये आपका बड़प्पन दिखाता है कि हमेशा याद रखें, ऐसे कभी किसी के साथ हो तो कहें जी हम आपस में हम पैसे बांट लेंगे, या नहीं लेते हैं उस समय तो आप अगली बार ध्यान दें कि आप उसका पैसा भुगतान करें। देखिए विभिन्न प्रकार के विचारों का सम्मान करना चाहिए हमेशा है। तो ये देखिए बहुत बार होता है हम आपस में बात कर रहे होते हैं किसी से और ये जरूरी नहीं कि जो सामने वाला है उसके विचार और आपके विचार हमेशा एक जैसे हों। देखिए हर इंसान को वो उसको पूरी वो जो उस वो सोच है वो दूसरी सोच भी रख सकता है, आपकी सोच बिल्कुल अलग हो सकती है, भले ही वो आपके परिवार का हो, आपके बच्चे हो या आपके कोई दोस्त हैं, सहकर्मी हैं जो आपके साथ काम करते हैं, तो सबके विचार अलग होते हैं। तो इसलिए याद रखें कि कभी भी विचारों की हमेशा अच्छा आदान प्रदान करें पर बिना बात पर बहस एक हद तक ठीक रहती है कि आप अपने विचार दें, उनके भी विचार सुनने की आपको क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ही बस आपके ही विचार हैं जो वही सही हैं और दूसरा इंसान गलत है। तो ये याद रखें हमेशा एक तरीके से अपने विचारों का एक दूसरे के विचार सुने और दूसरे के भी सुनने की क्षमता रखें, चाहे वो आपके विचार से बिल्कुल ही मेल ना खाता हो पर हमेशा उनका सुने। और देखिए हर इंसान को अपने विचार रखने का वो व्यक्तिगत वो तरीके का वो सोच सकते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि यदि वो कह आपके लिए जो छह दिख रहा है वो सामने से आने वाले लोगों को शायद नौ दिखाई देगा। तो वही बात हुई ना, तो आपको जो दिख रहा है दूसरे इंसान को दूसरा दिख रहा, तो सबका अपना अपना विचार होता है। तो सही यही होता है कि हर कोई स्पेस दें, ये नहीं कि अपना ही विचार किसी पर थोपे। ये भी देखिए, कभी कभी लोगों को हमें सोचना चाहिए, दो लोग जब बात कर रहे होते हैं ना, हम लोग को बहुत बार आदत होती है कि जहाँ तीन चार लोग मिलते हैं बस सब अपना अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, बस सब बोल पड़ते हैं, एक साथ बोल पड़ते हैं। तो क्या होता है, इस वजह से सभी बोलना चाहते हैं और कोई रुकना नहीं चाहता। क्या होता है कि ना कोई आपको समझ में आ रहा है दूसरा क्या बोल रहा है, ना आपकी बात किसी को समझ में आ रही है, ना दूसरे की आपको आ रही है, और सब एक साथ बोले जा रहे हैं। तो याद रखिए, जब कभी दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों तो आप इंतज़ार करिए, और जब उनका बात ख़त्म हो जाए तब अपनी बात आगे रखिए, और समय आने पर अपना विचार प्रकट करिए। और जब काफ़ी साथ लोग हैं तो सब एक एक करके थोड़ा सा धैर्य रखें और एक एक करके सबकी बात, सबको मौका दें अपनी बात बोलने का, ना कि सब एक साथ बोलें, तो ये अच्छी बात नहीं लगती है। जब आप तो अच्छा यही होता है कि आप एक दूसरे का सब्र से इंतज़ार करें और सबकी बातें, हर इंसान को वक्त दें अपना विचार प्रकट करने का। यदि देखिए, एक और भी ये बात है, ये बहुत बात होती है कि हम जब दोस्तों के साथ होते हैं ना, तो हमें लगता है ये तो हमारा बड़ा अच्छा पुराना दोस्त है, बहुत देखिए मौज मस्ती भी चलती है एक दूसरे के साथ, और कभी कभी चाहे घर वाले भी हो, भाई बहन हो, और हम मजाक में कुछ, देखिए एक हद तक मजाक अच्छा लगता है, पर कभी कभी हम बिना सोचे समझे मजाक ज़्यादा ही कर देते हैं, और किसी को ज़्यादा ही जैसे मजाक में चढ़ाने लगते हैं, और इसका हमें तो बहुत आनंद आ रहा है कि देखो हम कितना मजाकिया हैं, पर आप ये भूल जाते हैं कि जो आपके लिए बहुत मजाकिया आपको लग रहा है, वो दूसरा इंसान हो सकता है, वो उसको एक हद होती है, तो उतना तो मजाक ठीक है, उससे ज़्यादा जब कभी कभी हद हम पार कर जाते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये मजाक आगे वाले को पसंद आ भी रहा है या नहीं, या हम ज़्यादा हद हमने तो पार नहीं कर दी, क्योंकि ये कभी कभी किसी को इस बात का बुरा भी लग सकता है। तो कभी आप किसी को ऐसा कर रहे हैं तो अपने आप को रोक लें, और एक हद तक मजाक करें, उसके आगे अपने आप को रोक लें कि भाई हो सकता है आगे वाले को ये बात पसंद नहीं आ रही हो, और वो उसके मन को ठेस लग जाए, और ये उसमें आपके आपस में मजाक के बदले वो पूरा माहौल ही बदल जाए। तो ये बात याद रखने वाली बात होती है कि हमें भी अपना सोच समझ कर हम एक इंसान के साथ मजाक करें, एक हद में रह कर करनी चाहिए, ना कि हम हद उसको पार कर दें। और हाँ, कोई भी आपको कभी भी कोई मदद करता है तो हमेशा याद रखें, एक छोटा सा शब्द है पर वो बहुत मायने रखता है, वो है कि हम उसको धन्यवाद कहें। हम भूल जाते हैं, हम बच्चे भी हैं घर में, हम किसी को कहते हैं अच्छा ये कर दो वो कर दो, घर वालों को हम सोचते हैं ये तो हमारे घर वाले, इनको क्या हमें बोलना है। पर याद रखें, एक छोटा सा कोई आप काम भी कराते हैं उसका आप छोटा सा एक शब्द ही है जो आपको बोलना है, धन्यवाद, थैंक यू, वो आप बोल दें तो दूसरा इंसान को बहुत अच्छा लगता है, और ये कोई बड़ा कोई कहीं इतनी महंगी चीज़ नहीं है, बहुत एक छोटा सा सरल सा शब्द है, पर दूसरे को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि आप अपना जो उसने करा है आप अपना आभार प्रकट करेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो धन्यवाद तो करिए, पर मैं इस आगे बढ़ूं क्यों ना संजय जी एक और सुंदर सा गीत हो जाए।
0: जरूर,
1: फिर मैं आगे बढ़ूं।
0: बिल्कुल, और शांता जी जो भी अपने पिटारा से कुछ रखने वाले हैं कि हमारे सुरिनामी वेस्ट इंडीज त्रिनिदाद टोबैगो के ओर से जो गाना लिखा गया जो पहले में और अब उसे बनाया गया है, कुछ काम किया गया है इंडिया में ना शांता जी? और देखा जाए कि उस पे जो संदेश आप दे रहे हैं उस पे जरूर ध्यान देते हुए ये सुंदर सा गीत हम रखने की कोशिश कर रहे हैं।

0: ये सुंदर सा गीत जो शांता जी, इस पर कुछ बताइए आप कि ये किसका गाया पहले, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये वेस्ट इंडीज सूरीनाम के गीत को
1: त्रिनिदाद मेरे ख्याल से सुंदर पोपो जी के ये गीत है,
0: सुंदर पोपो जी का गीत है और
1: सुंदर पोपो के गीत है। और हम लोग के ये ना सोचना चाहिए कि बैठक गाना है उसका, हम बैठक गाना तो सद अरे हमारा पूर्वजों जो है वो सब भारत से लेकर आई है, और ये था एक कम्युनिकेशन करने के लिए एलकांदर से, जो भी हमारा आफ्रो सूरीनामर जो है
0: हाँ।
1: वो भी गीत की तरह गीत से अपने आप से अपने लोग से कम्युनिकेट करत रहा, क्योंकि बात करना उस समय पे मना था, गोरे लोग के आगे बात करना एक दूसरे से मना था, तो संगीत के रूप से ये सब कम्युनिकेट करत रहा अपने भाषा में, जैसे हम यहाँ पे हैं और तू उ किनारे है, तो बात करना नहीं सब, अगर संगीत में बात करोगे संगीत गाओगे तो संगीत में वो संदेशा वो आ जाता था। तो हमारे पूर्वजों ऐसे ही सीख के और जो भारत से भी अपना जो इंस्ट्रूमेंट भी लाए थे उनके सहारे आज तक ये जिंदा है, और सिर्फ हम लोग का सिर्फ ये अमेरिका में नहीं है बल्कि हमारे गायक जो है बैठक गाना सांगर्स जो है त्रिनिदाद टोबैगो अमेरिका, और अब जैसे भारतीय लोग आते भारतीय सांगर्स जो है वो आकर हमारे जो सभ्यता है जो बैठक गाना उनसे भी जो सांगर है ना सूरीनाम के सांगर जो है लोकल उनको भी उसमें गाते हैं गवाते भी कि इस तरह से गाओ, और उसी तरह से देखो ना आज किस धुन पे भाई चल गए बैठक गाना की तरह
0: बिल्कुल। पर शांता जी इन बातों को सुनकर मुझे

0: ये भी कुछ ख्याल आता है कि हमारे जब बचपन थे ना तो हम लोग घर में परिवार में पहले कहाँ फ्रुट फ्रो होते थे, बस यानी कि जैसे यहाँ पर सौरख है, बच्चे होते थे तो माँ कभी हॉस्पिटल जाता था तो कहीं घरे हो जाता था, तो
1: पहले था फ्रुट फ्रो
0: थे, पर नहीं, कहने के मतलब जो आज आज कल क्या कहा जाता है जो घर पे आते हैं,
1: क्राम
0: सौरख आदि,
1: मैं वही वही हैगा हम वही हम हरदम से यही कहला कि हम जब वो सब करते थे तो ये अन्य अन्य अन्य अन्य सभ्यता वाला जो है कहते कि नहीं वो ठीक नहीं बच्चे के लिए, बच्चा पैदा हो जाए तो उसका हम लोग मसाज करते ना,
0: हाँ जी,
1: हाँ कसरत कराते हैं, हाँ। मसाज करते ओली लगाकर सब कुछ कर, तो गोरे लोग कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं बॉडी के लिए, बच्चे के लिए ठीक नहीं, अब उसके लिए कोर्सेस जाओ करो,
0: मालिश करें,
1: माताओं लोग के बुलाते हैं कोर्सेस सीखने के लिए, वही सब जो सभ्यता हमारे पहले के है वही सब ले लेकर देख देख कर विचार करके अब हमें ही के फिर से सिखाते हैं।
0: अब देखा जाए
1: हमारे माँ बाप जो कहते हैं अपने बिटिया से जो माँ बनते हैं ना कहते हैं मालिश करो, तो माँ नई नई माता जो है ना माँ जो बनते हैं वो सब नहीं चाहते
0: इन बातों को, नहीं जानते,
1: जानते हैं पर नहीं नहीं चाहते कि उस बच्चे को मालिश कराओ
0: ऐसा,
1: हाँ जब मालिश करोगे शुरू से मालिश करो तो कसरत होगा तो उसका बॉडी जो है वो जो बॉडी बनता है
0: तो, पर ये मैं संदेश कुछ और कहना चाहता था शांता जी, पर
1: घूम के आते हैं सभी तो वहीं पे घूम के आते हैं, हमारे बैठक गाना भी ना,
0: हाँ।
1: बैठक गाना देख आज कितना परिवर्तन कर गए,
0: हाँ देखो अब हम लोग का अभी हाल ही में बड़का फिल्म में एगो हम लोग का जो सूरीनाम का गायक का
1: पड़ोसी ने अपना मोर का संभालो फिल्म तूफान में अमिताभ बच्चन जो गाए
0: वो भी ना, ऐसे भी अभी हाल ही में मैंने एक बड़ा फिल्म निकला था तो कॉमेडी फिल्म है,
1: हाँ,
0: तो ये चटनी वाला गाना,
1: अच्छा,
0: फुलौरी बिना चटनी,
1: हाँ, तो देखो।
0: वो भी उसमें चलाया गया, तो देखा जाए कि हम लोग के जो सूरीनाम में स्क्राइफर से और बहुत दिन लग गया भारत के पहुंचत पहुंचत, पर अब तो एक एक को वो खोज खोज करके और उसे रिमेक करते हैं,
1: हाँ जैसे हम सब भी रिमिक्स करते हैं वैसे वो सब भी रिमिक्स करते हैं, अपने धुन पे बना लेते हैं अपना एक कर लेते हैं।
0: और मैं ये कहना चाहता था शांता जी कि जो अभी कहे आपने ना कि पहले संगीत में कम्युनिकेट करते थे तो ये बिल्कुल सही, पर झगड़ते थे भी तो संगीत में सुना देते थे, ऐसा भी मैंने सुना है,
1: हाँ, सभी,
0: कि झगड़ते थे भी संगीत में और खूब अपना महाराज या महाराजिन को सुना देते थे,
1: हाँ, वो तो है, हाँ।
0: तो सुनने वालों अभी कार्यक्रम अभी रेडियो बाकी है, क्यों ना हम न्यूज और कमर्शियल की ओर बढ़ते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, देखा जाए कि अनुराधा जी भी अभी हम लोग के साथ जुड़े हुए, अनुराधा जी अभी हम सब आपके साथ जुड़ जाएंगे।
2: Dit is Vahon Hindustani Radio.
3: एडवोकेट कंटोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है, जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
4: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
5: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
7: De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door een aantal betogers en tijdelijk stilgelegd. Dat meldt een ANP-verslaggever. Demonstranten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat ze waren verwijderd, ging de plechtigheid door. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden.
6: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: सुनने वालों, ये ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम जो आपके लिए हम सफर रखते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत से और अनुराधा चंद्र जी, जो अपना संदेश रख चुके हैं कुछ, और कुछ संदेश अभी बाकी है ना अनुराधा जी, तो जरूर अपना संदेश को हम सब के लिए और रखिए, क्योंकि अभी तो कुछ संदेश बाकी है।
1: चलिए आगे बढ़ा जाए और जानते हैं कि ऐसी क्या क्या बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अक्सर हम किसी की कोई चीज पसंद आती है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं और अच्छा लगता है कि आप किसी को जो अच्छा है तो उसकी प्रशंसा करें, पर याद रखें कि जरूरी हो तभी निजी तौर पर आलोचना करें। ऐसा नहीं कि आप देखिए, बहुत बार होता ना, हम प्रशंसा तो कर देते हैं, हम कहेंगे ओहो ये तो कैसा, मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं कुछ उसके लिए, आप दिल से तो उसके लिए अच्छा चाहते हैं, पर कभी कभी आप ऐसा बोल देते हैं और वो आलोचना जैसा लगता है, क्रिटिसिज्म जैसा, तो ये सोचना चाहिए आप किसके सामने ऐसा बोल रहे हैं, और कभी कभी अपने आप को चाहते हुए भी ना रोक लेना चाहिए। ऐसा अच्छा नहीं लगता कि कभी कभी मिलते हैं किसी से तो अच्छा ही है कि थोड़े दो शब्द अच्छी बातें ही बोले उनके हैं। और देखिए ऐसा होता है ना, कभी कभी आप किसी को मिले, अब वो इंसान को आप आपका कितना ही अच्छा दोस्त हो या जानने वाला हो, और आप मजाक में कह देते हैं कि भाई उसके वजन को, किसी का वजन ज़्यादा है। देखिए कम वजन है तब तो अच्छा है लगता है इंसान को, पर आप किसी को अचानक कह दें भाई तुम तो बहुत मोटे लग रहे हो, तुमने तो बहुत वजन ज़्यादा बढ़ गया है, तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये बातें किसी को मन में लग जाती हैं, और ये बातें ऐसे नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो इंसान कोशिश कर रहा हो अपना वज़न घटाने का, या हो सकता है आप किसी को कहते ओ तुम तो बहुत ही कितने क्या हो गया, दुबले से लग रहे हो, हड्डी का ढांचा लग रहे हो, क्या हो गया, पतले से हो गए हो, तो आप नहीं जानते, हो सकता है उनको कोई तकलीफ हो, कुछ हो, तो ये सोच लेना चाहिए। और बस आप ऐसा बोलें कि देखिए, आप ऐसा बोल दें कि ओ भाई तुम तो बहुत ही आज शानदार दिख रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है ना, दूसरा इंसान को मन में ये सुनकर अच्छा लगता है। तो हर समय जरूरी नहीं कि आप सोचें हम तो सत्यवान होकर हम हर चीज़ सच बोलेंगे। देखिए सच भी कभी कभी तोल मोल कर बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए खुलकर, तो क्योंकि कभी किसी को ठेस लग सकती है दिल में, तो ये सब बातें ख्याल रखनी चाहिए कि क्या क्या बात करें। अच्छा ये तो हो गई वजन वाली बात, किसी को क्या ऐसा क्या बोले नहीं बोले, पर देखिए बहुत बार होता है ना, हम हमने फोटो ली किसी से कैमरे में, मोबाइल में, और झट से हम उस इंसान का, चाहे वो हमारा कितना ही प्रिय मित्र क्यों ना, हम एकदम से उसका मोबाइल खींच कर कहते हैं भाई दिखाओ तुम्हारे मोबाइल में कैसे ये फ़ोटो कैसी आई है, बताओ ये जो फ़ोटो ली कैसी आई है, और आप वो तो फ़ोटो देखते हैं और उसका फ़ोन अपने हाथ में पकड़ कर दाएं और बाएं एकदम से आप स्वाइप करने लगते हैं। तो देखिए याद रखें ये बहुत ही गलत आदत है कि कभी भी हर इंसान का जो मोबाइल होता है उसका अपना निजी मोबाइल है, उसका उसमें निजी कुछ भी और तस्वीरें हो सकती हैं अपना है, तो ये अच्छा नहीं है। वो इंसान आपको खुद दिखाए तो ठीक है, पर आपको ये नहीं कि अपना दूसरे का मोबाइल पकड़ के लेफ्ट राइट आप दाएं बाएं करके स्वाइप करें और ऐसा करें, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब दिखता है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए आइंदा से, याद रखें। ये हम भूल जाते हैं पर ऐसा करना नहीं चाहिए, ये याद रखें। तो और भी ऐसे कोई बहुत बातें हैं, देखिए क्या होता है, आप कभी किसी से मिलते हैं और आपको लगता है ओ मैं तो बहुत मेरा जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को बहुत समझते हैं कि भाई देखो ये तो छोटा सा है, छोटी मोटी नौकरी करता है, मैं तो काफ़ी सीनियर हूँ, ये तो मेरा बहुत जूनियर है। तो याद रखें कि अपने से भी जो जूनियर है, नीचे काम करने वाले हैं, कोई भी ऐसे लोगों से आप अगर मिलते हैं तो उनके साथ हमेशा सम्मान के साथ व्यवहार करें, हैं, ये नहीं कि अपना अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं। इंसान का आप कितने भी बड़े हों पर बड़प्पन आपका तभी है जब आप जो आपसे भी छोटे जो हैं उनका आप आदर सम्मान करें, और उसी में आपका बड़प्पन झलकता है, और आप जब दूसरे का आदर करते हैं है, और उनका सम्मान करते हैं। देखिए बहुत बार होता है ना, हम लोग ये भूल जाते हैं, कभी हम किसी के साथ बाहर जाते हैं, और ये आजकल बहुत ही आम है कि हम मोबाइल लेकर 24 घंटे बैठे रहते हैं। अब मोबाइल है तो बैठेंगे ही, चाहे ट्रेन हो इधर है, चलिए जब तक कि आप अपना खुद से बैठे हैं मोबाइल लेकर तब तो ठीक है। पर बहुत बार होता है हम कहीं बाहर खाना खाने गए हों या किसी दोस्त के साथ बाहर बैठे हों और आप आपस में वो आपसे बात कर रहा है और आप अपना बस मोबाइल लेकर बैठे हैं और अपने मोबाइल में ही आप उससे सीधे मुँह बात नहीं कर रहे हैं और बस अपना जो समय है बस मोबाइल में कुछ कोई आपका ये आ गया कॉल आ गई या आपका मैसेज आ गया। ये याद रखें कभी भी आप किसी के बाहर जाते हैं तो अपना मोबाइल साइलेंट कर दें अपने और मैसेज उस समय ना देखें। जो फ़ोन आ रहा है वो बाद में आप अटेंड कर लें। बहुत तो ये बहुत ख़राब लगता है कि आप जब उस समय आए हैं ना उस व्यक्ति के साथ अपना समय व्यतीत करें, ना कि मोबाइल में लगे बैठे। ये बहुत एक तरह का बुरा व्यवहार समझा जाता है कि जब ऐसा इंसान करता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जिस इंसान से मिलने आए हैं उसके साथ आप टाइम अपना वक्त व्यतीत करें। तो बहुत बार होता है कि आप देखते हैं कि भाई कोई दो लोग बात कर रहे हैं या कोई देख रहा है कि वो किसी इंसान से दूसरा इंसान पूछ रहा है भाई सलाह कुछ कुछ बातें कर रहा है और आप सुने जा रहे हैं और आपको लगता है कि ओह भाई ये क्या उल्टी पुल्टी बात कर रहा है, ये तो है मैं अपनी सलाह देना चाहता हूँ। याद रखें कि जब तक आपसे कोई सलाह ना मांगी जाए आप बेहतर है कि आप चुप रहें, बिन मांगे सलाह ना दें, क्योंकि जब कोई आपसे मांगे तभी आप अपनी सलाह दें, ना मांगने पर चुप ही बैठना अपने अकलमंदी का अकलमंद इंसान का वही होता है जो मांगने पर ही सलाह दे, ना मांगे तो चुप बैठे। तो ये देखिए जब किसी से लंबे समय के बाद आप मिल रहे होते हैं ना, जब तक वे इसके बारे में बात ना करें तब तक उनसे उनकी कभी भी, जैसे मैंने पहले भी बोला, उनकी उम्र और वेतन यानी कि सैलरी कभी ना पूछें। ये बहुत व्यक्तिगत एक होता है और औरतों के साथ तो बिल्कुल भी, ये बहुत महिलाओं के साथ कभी भी उनकी उम्र का नहीं पूछना चाहिए। मजाक में आप कितना भी पता लगाना चाहें पर ये कभी मुंह के सामने ऐसा नहीं हो, अपने तरफ से कोई बताए तो ठीक है पर कभी आप ऐसे भूल ना करें कि मुंह में आप एकदम से कहें कि भाई बताओ, और अपना काम से काम रखें। देखिए जब किसी से आप बात कर रहे होते ना तो भले ही आप धूप में घूम रहे हैं और आपने धूप का चश्मा लगाया हुआ है तो सही है, क्योंकि क्यों ना लगाएं, धूप है तो आपने चश्मा लगाया है, परंतु याद रखें, जब आप कभी किसी से जब बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत तरीके से आप किसी से आप बात करते हैं, तो ध्यान रखें कि हमेशा अपना काला चश्मा निकाल लें जब भी आप किसी से आमने सामने बात कर रहे हैं। ये एक सम्मान की निशानी होती है। नेत्र संपर्क यानी कि आँखों से आँख में डालकर हमेशा बात करनी चाहिए, और नेत्र संपर्क आपके भाषण में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है। तो आप चश्मा पहनकर करते तो हैं, पर हमेशा याद रखें जब किसी से बहुत व्यक्तिगत तरीके से बात करें तो ये एक तो चलते फिरते हो गया चश्मा पहना है, कोई बात नहीं, आपने हेलो हाय कर दिया, पर अगर आप किसी से बिल्कुल आमने सामने पास से बात करें तो हमेशा चश्मा, अपना काला चश्मा ऊपर करें और बिना चश्मे के आमने सामने बात करें। ये एक एक एक तहजीब है, एक अच्छा तरीका है जो हमें अपनाना चाहिए है। तो क्यों ना संजय जी थोड़ा सा एक और सुंदर सा प्यारा सा अच्छा सा गीत सुना जाए, और फिर मैं आगे और बहुत सारी बातें बतानी है लोगों को, तो फिर आगे चढ़ेंगे। चलिए गीत सुनते हैं।
0: अनुराधा जी बिल्कुल, मैं एक सुंदर सा गीत को चुन करके रख लिया है, पर यहाँ शांता जी भी बैठे हुए हैं तो ये प्रश्न मैं और रख देता हूँ, क्योंकि बड़ा कुछ ज्ञान के और कुछ ध्यान के जानने वाले बात के अंतर्गत आपने और रखे हुए हैं। तो शांता जी, ये अभी जैसे मैंने सुना कि महिलाओं यानी कि फ्रॉवों को उम्र उनके नहीं पूछना चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
2: आप मेरी से सवाल पूछ रहे हो?
0: अब स्टूडियो में तो आप ही बैठे हुए हैं।
2: हाँ वो तो सही है, मैं तो बैठी हूँ आपके साथ यहाँ स्टूडियो में, क्यों नहीं पूछना चाहिए?
0: क्योंकि अभी तो हमने सुना ये बात,
2: तो अनुराधा से पूछना पड़ेगा।
0: अनुराधा जी अभी हाँ। आपके इसके बारे में कुछ और देना चाहिए और भी शायद संदेश रखना चाहिए, क्योंकि ये een hele bijzondere ding is die je als het ware je moet ze allemaal kennen.
2: Zeker.
0: Maar toch, het lijkt alsof wel no, soms hem aanjaan, karila ki hem aanjaan hè, un baaton pe. Jabki in sab baaton ko hamme janna chahiye. Hamme bachpan se sikhaya jata hai.
2: Ek bahut acha baat kahi hai Anuradha ji ne. कि अगर आप कोई से बात करते हो ना व्यक्तिगत मैं इमाता अनंत प्रात बैंत एन यू हैव अ सोनोब्रेल ओप हैट इज हेल नेचर्स ओम दैट फनी ओह आफ्टर सेट सो दैट यू होन दी ओह कॉन्टैक्ट है बस हेल रिस्पेक्टफुल।
0: हमने देखा कि कभी एक व्यक्ति भी है जो जो कैसे बोले दांत प्रोटेज लगाते हैं ना, तो वो प्रोटोइस अपने मुख में नहीं रखे हुए थे तो अपना हाथ आगे करके बात करता है हरदम, तो ऐसा भी कुछ देखो अब सिखाया गया है जिसे हम ओक नेचर्स है।
2: हाँ बात ऐसे भी है, हम जो मुख में जो हमारा दांत है ना, तो बात करने में वो दांत जो है वो स्पेक्सल जो है रोकता है, और जो दांत नहीं है तो बात करने के तरीका जो है वो अलग से हो जाता है।
0: हाँ तो आप वही बात कह रहे हैं कि जब भांग पी लो
2: हाँ।
0: तो भांग पीने से पीने के बाद, क्योंकि अभी अनुराधा जी के संदेश में ये था कि कोई छह देख रहा है अपने नजर से और दूसरा नजर से कोई नौ देख रहा है
2: हाँ,
0: उसमें अपना अपना अपना अंतर हो जाता ना।
2: हाँ बात यह है कि आप कहाँ थारा है, किस तरह किस दिशा से देखते हो,
0: किस दिशा से देखते हैं हाँ। तो एक गीत को हम चुन करके रखे हुए हैं अनुराधा जी, जरूर अब मुझे ये पता नहीं कि आपको अच्छा लगेगा कि ये जोजा सूस फिल्म से निकाला गया कि दुनिया बड़ी खराब है, उस पे उस ओर बढ़ते।

0: मुझे बता दे। और ये सुंदर सा गीत जिसमें अशोक कुमार ने काम किया है, नेहा, पुराना फिल्म है, मेरे ख्याल से उससे भी आगे की फिल्म है। पर अनुराधा जी, अभी आपका संदेश कुछ बाकी रहा तो विनय है आपसे, आप अपना संदेश को हम सब के लिए आगे ले जाइए।
1: चलिए आगे बढ़ा जाए और जानते हैं कि ऐसी क्या क्या बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अक्सर हम किसी की कोई चीज़ पसंद आती है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं और अच्छा लगता है कि आप किसी को जो अच्छा है तो उसकी प्रशंसा करें। पर याद रखें कि जरूरी हो तभी निजी तौर पर आलोचना करें। ऐसा नहीं कि आप देखिए, बहुत बार होता ना, हम प्रशंसा तो कर देते हैं, हम कहेंगे ओहो ये तो कैसा, मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो मैं कुछ उसके लिए, आप दिल से तो उसके लिए अच्छा चाहते हैं, पर कभी कभी आप ऐसा बोल देते हैं और वो आलोचना जैसा लगता है, क्रिटिसिज्म जैसा। तो ये चलिए संजय जी, आगे मैं भरती हूँ अपनी थोड़ी, जो मैं सुनने वालों को अपनी बातें बताना चाह रही थी कि क्या हमें रोज की मर्रा ज़िंदगी में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम देखिए क्या होता है ना, हम लोग जीवन तो हम बड़ा सरल है, पर कभी कभी हम रोज़ के जीवन में बिना सोचे समझे बहुत सारी ऐसे हम चीज़ें कर देते हैं और बिना सोचे समझे किसी का दिल दुखा देते हैं। तो हमें बड़ा समझ कर हम क्या बोलते हैं, क्या हम व्यवहार करते हैं, ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी कुछ और भी थोड़ी सी बातें हैं जो मैं हर इंसान के पास, हम लोग कमाते हैं, सबके पास पैसा है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम है, और ये अच्छी बात है कि बहुत लोग कभी मेहनत करके बहुत पैसा कमाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो जो साथ के हैं वो इतने हमारे जैसे इतना शायद उन्होंने धन नहीं कमाया है और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हम बात करते समय अपने पैसों के बारे में अपनी हम शो ऑफ नहीं करें। किसी से बात करते समय हम अपनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर अपने बारे में ना बताएं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हमारे पास इतना धन है और हम तो रोज़ यहाँ हम विदेश घूमने जाते हैं और हमारे पास ऐसी गाड़ी है, हम इतना खर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है ना, बहुत बार हम भूल जाते हैं कि जो हमारे हम जिससे बात कर रहे हैं वो हो सकता है उनकी स्थिति पैसे में वो इतना उनके पास वो ना कमाते हों और आर्थिक फाइनेंशली वो इतने वेल ऑफ नहीं हैं। तो ये जो हम ऐसे बात करते हैं ना बढ़ा चढ़ा के, हो सकता है आपके पास है, पर अच्छा इंसान का बड़प्पन उसी में होता है कि आप पैसों की बातें अपने आप जानते हुए अपना थोड़ा सा किसी के सामने ना करें, वो सुनने में बुरा लगता है, और आप दूसरे के बारे में पूछें हमेशा कि वो कैसा कर रहा है जीवन में हैं, और किसी को मदद हो तो आप उसकी मदद करिए, पर ये नहीं कि अपने बारे में ही आप बोलते रहें कि मैं ये करता हूँ पैसा कमाता हूँ और दूसरे को नीचा दिखाने के। आपका हो सकता है कि आप ये नहीं, आपके मन में ये विचार नहीं है, पर ऐसा करने पर बोलने पर दूसरे को यह महसूस हो सकता है कि देखो ये तो बहुत अपना पैसा पैसा करे जा रहा है और मेरे को, मैं इतना नहीं कमाता हूँ तो मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये मन में, दूसरे इंसान के मन में ये बात आ सकती है। तो ये बहुत हमें हमेशा ध्यान रखकर ये बातें बात करनी चाहिए और किसी के सामने अपने धन की बात नहीं कभी बात करनी चाहिए। देखिए आजकल का क्या ज़माना है ना, मोबाइल हमेशा हमारे 24 घंटे मोबाइल रहता है। और जितना अच्छी बात है कि देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का हम जीवन चल रहा है, पर हमें उसको इतना भी मोबाइल को अपने ऊपर हावी नहीं कर लेना चाहिए कि हम उसके बिना रह ना सकें, क्योंकि हमारा ऐसा होने लगा है कि हम मोबाइल हर जगह अपने साथ ले जाते हैं, 24 घंटे मोबाइल चाहिए। तो हमें ऐसा है कि एक थोड़ा सा हमें को मोबाइल को उतना ही उपयोग करें जितना ज़रूरी है, और थोड़ा सा हमें ब्रेक लेना चाहिए कि एक ऐसा हमें एक समय बांध लेना चाहिए कि जिस समय कि हम मोबाइल को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उससे क्या है, वो आपका निर्धारित, जैसे आप खाना खा रहे हैं अपने परिवार के साथ, तो वो एक समय निर्धारित करें कि हम उस समय मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे। वो हमारा पूरा पारिवारिक समय है, हम जो परिवार के साथ हैं वो बिल्कुल हम उसमें मोबाइल सब अपना अपना रख देंगे बंद करके, हम वो नहीं देखेंगे। जब आप परिवार के साथ बैठे हुए हैं तो ऐसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपना मोबाइल अलग रख दें, तो ऐसा निर्धारित है। या आप जब आपस में जब अपना आप टाइम बिता रहे हैं तो मोबाइल को ऐसा समय बांधें कि मोबाइल जब ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करें, हर समय मोबाइल का लत ना लगाएं, ना आदत डालें। नहीं तो क्या होता है कि बहुत बार तो ऐसा होता है कि आप सुबह पूरा दिन भर मोबाइल में इतने लगे कि आपने तो अपने बच्चों की ना अपने बीवी घर वालों की तो शक्ल भी नहीं देखी, ना आपको पता है कि उनने क्या कपड़े पहने हैं, क्या उन्होंने घर में, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमेशा एक निर्धारित समय बांधें जितना आप मोबाइल उसको इस्तेमाल करेंगे। याद रखें कि यदि आप अपने कोई सहकर्मी, जैसे होता है ना कि आप जो आपके साथ काम करता है वो कभी ऐसा मिला जिसे कि जैसे आप कभी अस्पताल पहुंच गए, आप कहीं डॉक्टर के पास गए हैं और आप तो गए अपने काम से अपने आप को दिखाने, वहाँ आपको कोई अपना कोई जानने वाला मिल गया या कोई कुलीग मिल गया और आप वो भी डॉक्टर के आए हैं, तो याद रखें उस इंसान से ये ना पूछें वह वहाँ किस लिए आया है, क्यों मिलने आया है, किस डॉक्टर से मिलने आया है, उसको क्या तकलीफ़ है। देखिए ऐसे समय में ना हर को आप थोड़ा सा पर्सनल स्पेस दें, प्राइवेसी दें। ये अच्छा नहीं लगता कि आप उस इंसान से उससे पूछें कि वो क्यों आया है, हो सकता है वो आपसे आपको नहीं बताना चाहे कि वो किस डॉक्टर से मिलना है, उसको क्या तकलीफ़ है। तो ये बातें जो होती हैं ऐसा ना बोलें, और अगर मिले तो आप बस आप ये कह सकते हैं मुझे आशा है कि आप ठीक हैं, और बस ना वो आपसे पूछेगा, और अगर वो आपसे पूछता है तो आप भी अपना बताने की ज़रूरत ना रखें और ना किसी से पूछें। अपनी व्यक्तिगत जो बीमारी होती है ना, बताने के लिए उन्हें ऐसा स्थिति में ना डालें कि उनको बड़ा अजीब लगे कि आपको बता वो आप उनके पीछे पड़ जाएं कि बताओ, क्योंकि सबको आप इतना उनकी इज्जत करें कि ना आप उनसे पूछें और उनको ऐसी स्थिति में ना डालें जिससे उनको बुरा लगे कि ये बताना पड़े। देखिए हर को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है और वो लोग अच्छा नहीं लगता कि आप सबके बताना चाहें। तो याद रखें कि ये कभी ये बहुत व्यक्तिगत सवाल ऐसे नहीं करने चाहिए। तो देखिए आज तो बहुत बातें हो गई, एक आखिरी चीज़, कोशिश हमेशा ये करें कि प्रतिदिन, देखिए हमारे जीवन में बहुत कुछ हम लोग उतार चढ़ाव रहता है रोज का, तो हंसी मजाक चलता है, दुख भी चलता है, देखिए हर पल आते हैं, पर और माहौल भी ऐसा है कि कभी कभी बहुत सुनने में बहुत चीज़ें ख़राब आती हैं सुनने में, तो मन थोड़ा सा थोड़ा दुखी हो जाता है, तो हमेशा याद रखें कि कोशिश करें प्रतिदिन रोज कोई ना कोई ऐसा एक काम जरूर करें कि दिल खुश हो जाए। अच्छी कि जब सुबह उठे तो हमेशा कोई चीज़, देखिए नेगेटिव नकारात्मक चीज़ें तो बहुत सुनने में आती हैं, पर कोई ऐसे सकारात्मक कोई अच्छी पॉजिटिव चीज़ पढ़ें या किसी के साथ शेयर करें, जिससे कि आपने जो कुछ सीखा है उससे दूसरों को भी सीखने में मदद मिले और अपने भावी पीढ़ी को कोई जो है तो आप किसी को शिक्षा दे सकें। तो हमेशा याद रखें कोई रोज़ एक बात कुछ अच्छी सबसे बात करके कुछ शेयर करें तो थोड़ा दिल होता है ना वो खुश हो जाता है कि देखिए दुनिया में जहाँ दुख है तो अच्छा भी है। तो इस भाव से लेकर रोज अपना जीवन जिए कि खुशियाँ बांटें और अच्छी जो बातें हैं वो सबके साथ खुश रहें, मिलजुल कर रहें। और देखिए एक अच्छे चरित्र निर्माण के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप खुद भी खुश रहें और आसपास भी सब में खुशियां बांटें। तो आज मैंने बहुत सारी बातें आप सबको कही, आशा करती हूँ कि कुछ ना कुछ आप अपने जीवन में कोई ना बात ये इनमें से कोई ना कोई बात अपने जीवन में जरूर ढालेंगे और ख्याल रखेंगे कि आइंदा से कि ऐसी बात ना कहें कभी किसी को जिससे दूसरे। और आशा करती हूँ आप सभी खुद सब खुश रहेंगे, स्वस्थ रहें और हंसते रहें, खुशी बांटें, खुद भी खुश रहें खुशी बांटें। इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने ये सब बातें मेरी सुनी। और संजय जी चलिए एक और अच्छा सा एक गाना हो जाए और आप भी सबका दिल खुश कर दें। चलिए गाना सुनते हैं।
0: जरूर अनुराग भाई, एक सुंदर सा गीत हमने चुन करके रखे हुए हैं और ख़ास करके वो गीत जो हमारे अपना अनाउंसर साथी के मुखाम से आप सुनेंगे, तो ज़रूर पहले उस गीत को और बढ़ेंगे फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।

0: ये सुंदर सा आवाज आपने सुने हमारे कोलेग खास साथी शांता खेमाई जी की आवाज में। ये शांता जी, इसमें मैं सुन रहा था दो तीन गाना का मिलावट है ना?
1: जी संजय जी, इसको कहते हैं मैथिली।
0: मैथिली कहते हैं इसे।
1: हाँ, तीन चार गीत जो उसमें रेफरेन के साथ कुपले जोड़ दिया जाता है तो उसको मैथिली कहते हैं। मैथिली एक हैगा और एक है मैशअप है, एक है कॉफर।
0: ऐसा
1: ये सब तरीका हैगा जो गाना ऐसे गाते हैं।
0: और इस पे जब देखा जाए कि या अब गायक लोगों आप लोग गायक हो तो इस पे
1: है।
0: मुझे तो इसके कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी ये इतना सुंदर लगता है कि किस प्रकार से आप ये और कितने गाना को मिला करके एक में और जोड़ देते हैं।
1: और ये भी एक अच्छा बात है ना कि अब जैसे कराओके भी निकल गया है, कितने सालों से कराओके है, तो हमारा बुजुर्ग भी जो है वो उसको भी कैसे कहते हैं, मनोरंजन करने के लिए भी जो अपने यंग यार में सब जो गीत गाते थे सुनते थे, तो कराओके भी एक मोहलक है दे दिया है कि वो सब है जो अपना दिल के बात जो है गीत के रूप में भी वो बता देते हैं।
0: गीत के रूप में बता देते हैं।
1: हाँ, अच्छा लगता भी सुनने के लिए, और जो ना गाते हैं तो सुन सुनकर भी आंसू भर आते हैं उन सब की आंखों में।

बहुत बहुत धन्यवाद फौन हिंदुस्तानी रेडियो वाले जो श्रोता हैं, अपना समय निकालकर, अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको जो ज्ञान मिलता है अपने आप में उतारते, अपने लाइफ में उसको उतारते हैं, एडजस्ट करते हैं और उनको भी फ़ायदा होता है और दूसरों को भी होता है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हो, जय जय।

और अंत में मैं ये बोलना चाहूंगी कि रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों ही भर जाते हैं। इंसान जन्म के बाद 2 वर्ष के बाद ही बोलना सीखता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में उसका पूरा जीवन लग जाता है। इन्हीं विचारों के साथ सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार।

0: जी मेरे प्यारे सुनने वालों, हमारे अनाउंसर साथी के साथ मैं भी आपसे आज के लिए इजाज़त ले रही हूँ। आपने साथ दी है उसके लिए धन्यवाद किया जाता है, और स्वीकार कीजिए बहुत प्यार के साथ शांता जी के प्यार भरी नमस्कार।
1: सनम चाहे जाए जिया, तेरी कसम लागे छूटे ना।
2: सुनने वालों, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ सहयोग दिए शांता खेमई जी, जो हमारे साथ स्टूडियो में थे, भाई राधे ग्लेन जी, जो हमारा सहयोग दिए, और भारत से राजेंद्र सिंह जी, और हमारा संदेश लेकर और अनुराधा चंद्र जी, जो अपने ओर से संदेश को रखे। आशा यही है कि कुछ न कुछ संदेश आप तक जरूर पहुंचे होंगे और जरूर अच्छा लगते होंगे। मैं हूँ आपका सेवक संजय, और आपसे विदा ले रहे हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: श्रीचंडीतुंडा महाकाया सूर्यकोठी संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। रुब्ररु मिलने का मौका नहीं पा रहा हूँ, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमन करता हूँ। सुनवालो, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, हम कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर आपके साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं भारत देहरादून से हमारे मास्टर जी, जिनके जरिए ये कार्यक्रम बनाया गया शुरुआत में और आज तलक भी चलाया जाता है कितने सालों से। तो दोस्तों सुनने वालों, मास्टर जी आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है और वेलकम किया जाता कि आप समय निकाल करके देहरादून से और हम लोग के साथ कनेक्ट हो गए हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, फोन हिंदुस्तानी रेडियो के प्रोग्राम में हम लोग बहुत समय से कार्यक्रम कर रहे हैं और जो हमको सुनते हैं फोन हिंदुस्तानी रेडियो के श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। जैसे कि आज से सावन यानी कल से जो 29 तारीख थी गुरु पूर्णिमा, वो रात को बुद्ध वो गुरु पूर्णिमा का जो फुल मून होता है और उसके अगले दिन सोमवार वो अगले दिन से सावन शुरुआत मानी जाती है, मतलब उसी दिन से मानी जाती है लेकिन अगले दिन तो उसमें जुड़ जाता है। तो हम लोग आज सावन के बारे में बात करेंगे, श्रावण मंथ,
0: श्रावण मास। तो मास्टर जी ये वो समय है जहां पर लोग कावड़ लेकर के और चलना शुरू कर देंगे ना?
1: जी जी जी जी जी,
0: ऐसा
1: तो आज से शुरू हो गया है,
0: आज से निकल गया।
1: हाँ
0: तो मास्टर जी क्यों ना वही गीत के और पहले चलाते हैं जो हम लोग हर सप्ताह कार्यक्रम में रखते हैं।
1: हाँ क्यों ना वही गीत एक बार चला दिया जाए और फिर हम कार्यक्रम जारी रखेंगे, तब तक लोग थोड़ा सा गीत का आनंद भी लेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तेरा राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे।
2: ओ रमता सकल जहां

0: काहे को डरे। दोस्तों सुनने वालों, यहाँ जो कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश चल रहा है, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे मास्टर जी भारत से। तो श्रावण का महीना पावन करे शोर, ये गीत तो सभी जानते हैं, फिर भी अभी हम सब ये श्रावण महीना का कार्यक्रम जो होने वाले है, इस अंतर्गत में और भी संदेश सुनने वाले हो, तो मास्टर जी क्या सुनाने वाले हो आप देहरादून से हम लोग को? यहाँ जो लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है दनहाक शहर से, दुनिया के हर एक देशों में इंटरनेट द्वारा सुना जा सकते हैं, क्या संदेश रखने वाले हो आप?
1: जो साउंड हिंदुस्तानी रेडियो के श्रोता हैं, वो जब हमारा ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम सुनते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, इसमें कुछ नया सीखने को मिलता है। इसी प्रकार आज का जो कार्यक्रम है वो भी यही है कि सावन की विशेषता क्या है। सावन की विशेषता में यही है, श्रावण मंथ जो होता है हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास से प्रारंभ होने वाला वर्ष का पांचवा महीना है। यानी आज पांचवा महीना है उसका होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ऐसे ही इसका भी होता है चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन। तो हिंदू पंचांग के अनुसार है पांचवा महीना है
0: ऐसा।
1: हाँ जी, भारत में इसमें वर्षा ऋतु होती है, इसमें भारत में दो महीना खूब बरसात चलती है और प्रायः बहुत अधिक गर्मी होती है। आप तो जानते हैं कि भारत में गर्मी कितना होता है।
0: जी जी जी,
1: तो बरसात होती है तो गर्मी भी होती है।
0: बिल्कुल,
1: तो बरसात नहीं होगी तो गर्मी कैसे होगी?
0: सही बात।
1: और बरसात गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो भारत में भरपूर मात्रा में ले लो, तो उसी का आनंद है बरसात का और गर्मी का दोनों का। इस महीने में सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है ये महीना। सावन महीने के दौरान सोमवार का दिन शुभ होता है और ऐसा माना जाता है यदि भक्त समर्पण के साथ भगवान शिव की पूजा करे तो भगवान शिव उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। श्रावण महीना शिव जी को विशेष प्रिय है। भोलेनाथ ने स्वयं कहा है

0: पूर्णमासो सर्वमतः श्रावणक्षा पूर्णमास्यं तदूपी श्रावणस्मृतम् यस्य श्रावणमात्तीर्णं सिद्धिदा श्राणो स्मृतः। यानी मासों के श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है, महीनों में जो श्रावण है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा जाता है। इस मास में श्रावण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण भी इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रावण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। इस महीना में आप लोग अगर कोई कम समय में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो उसको श्रावण के महीने में करना चाहिए और बहुत कम समय में सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो इसमें पर्व त्योहार और व्रत भी होते हैं। श्रावण कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा है, पार्थव शिव पूजा प्रारंभ होती है। श्रावण कृष्ण पक्ष में पंचमी यानी पांचवा दिन मौना पंचमी है और एकादशी ग्यारहवां दिन में कामदा एकादशी व्रत होता है और त्रयोदशी प्रदोष व्रत है। अमावस्या में हरियाली अमावस्या हरेला पर्व भी मनाया जाएगा और इसमें पूजा विधि है किस प्रकार करना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि भोलेनाथ की पूजा और व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। जिन लोगों का विवाह हुआ है वो अगर पति पत्नी दोनों मिलके पूजा करें भगवान शिव की तो उनका जीवन एकदम सुखमय हो जाएगा। और वही अविवाहित लड़कियां को मन चाहे वर की प्राप्ति होती है और अगर लड़की है कोई अविवाहित उसको इस महीने व्रत करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, उसको अपना मन माना यानी मन चाहे उसको वर मिल जाएगा।
1: मास्टर जी तो ये कहने के तात्पर्य ये है कि अविवाहित माने तो
0: अविवाहित का माने जिनका शादी नहीं हुआ।
1: ऐसा
0: हाँ, एक होता विवाहित एक होता अविवाहित।
1: ओके जी।
0: तो जो अविवाहित है लड़कियां लड़कियों के लिए खास करके वो भोलेनाथ का अगर पूजा करती है तो उनके लिए मन चाह या ऐसे कह रहे हैं भगवान शंकर के उनको मन चाह वर मिल जाता है यानी पति मिल जाता है मन चाह।
1: ऐसा
0: शिव पार्वती प्रतिमा की फूल दक्षिणा पूजा के बर्तन दही पंचरस इत्र गंध रूली बिल्व पत्र का मतलब आप समझते हैं।
1: बिल्व पत्र वो यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं पान के पत्ता तुलसी का पत्ता, पर बेलव पत्र का बारे में थोड़ा से बता दो मास्टर जी।
0: हाँ, बेल का पत्ता एक होता है, तीन उसमें एक पत्ते में तीन पत्ते लगे होते हैं
1: जी
0: और तीनों पत्ता भगवान शिव को चढ़ते हैं पत्ते और उसका फल भी बड़ा अच्छा होता है। उसका फल साल भर बाद पकता है पेड़ पे, अभी लग गया तो अभी वो जून में अगले जून में पकेगा। तो भगवान शंकर को बेल का पत्र बहुत प्रसन्न है।
1: ऐसा
0: जी। तो ये सब चीजें बिल्व पत्र हो गया, धतूरा हो गया, भांग हो गया, बेर हो गए, पंच फल पांच प्रकार के फल पंचमेवा पांच प्रकार के मेवा मदार पुष्पम कच्चा दूध कपूर दही दूध रुई मलाया गिरी चंदन शुद्ध देसी घी मौली जनेऊ पंच मिठाई पांच प्रकार की मिठाई शहद गंगा जल शिवा माँ पार्वती का श्रृंगार सामग्री से पूजन करना चाहिए। और इसमें कावड़ जो है, इस आज से कावड़ भी शुरू हो गया है। तो कावड़ का मतलब है जो गंगा जल दूर दूर से लोग आते हैं और ये गंगा जल भर के पैदल जाते हैं और फिर 15 दिन बाद उसको चढ़ाएंगे वहां कहां मंदिर में शिवलिंग पे। तो ऐसी मान्यता है कि जो ये काम करता है 2 बार कर लेगा तो उसकी मनो इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो ये महीना जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, जो सावन का महीना है। इस प्रकार के बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। क्यों ना हम एक नगमा की तरह पढ़े जो कि सावन का महीना का ही है।
1: तो चला देते हैं मास्टर जी एक गीत।
0: हाँ जरूर।

0: गीता बारी के आवाज में हम सब सुने दोस्तों, श्रवण मास के अंतर्गत जो संदेश हमारे मास्टर जी देहरादून से हम सब के साथ जुड़े हुए हैं और हम सब के और भी संदेश सुनाने वाले हैं। मास्टर जी, और क्या संदेश श्रावण मास के अंतर्गत आप रखने वाले हैं?
1: श्रावण मास के अंतर्गत जो है, जो इसमें एकादशी आती है, एकादशी आप जाने, एकादशी क्या चीज रहे?
0: मास्टर जी, एकादशी एक और दस ऐसा है ना
1: जी,
0: तो पर आप उस पर थोड़ा से उस पर दृष्टि डाल दीजिए, क्योंकि हमारे सुनने वालों के लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा।
1: हाँ, जो एकादशी आती है इस महीने में, भगवान कृष्ण ने एकादशी को भी व्रत किया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, एकादशी का जो व्रत विधान बताया है वह इस प्रकार से है, एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर, यानी स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा विधि पूर्वक करना चाहिए, निर्जल व्रत रखकर पुराण का श्रवण अथवा पाठ करना चाहिए, रात्रि में निर्जल व्रत रखे और भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें, रात्रि में प्रतिपहर विष्णु और शिव की पूजा करें, प्रत्येक पहर में भगवान को अलग अलग भेंट प्रस्तुत करें, जैसे प्रथम पहर में नारियल, द्वितीय पहर में बेल, तृतीय पहर में सीताफल और चौथे पहर में नारंगी और सुपारी निवेदित करें। तो जो भगवान शंकर का ये जो मंत्र है, इसको शिव मंत्र बोलते ज्यादा करके लोग, तो उसमें अगर ये व्रत किया जाए तो बहुत उपयोगी माना जाता है। द्वादश के दिन यानी अगले दिन 12वें दिन में भगवान की पूजा करें, फिर ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा सहित विदा करें, इसके पश्चात स्वयं भोजन करें।
0: ऐसा?
1: हाँ, ब्राह्मण को हर समय दक्षिणा देना चाहिए। कभी भी कोई अगर ब्राह्मण को भोजन भी करवाना है तो वो भोजन की भी दक्षिणा देनी चाहिए ब्राह्मण को, कि आप आए हैं हमारे यहाँ भोजन करने के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भोजन करके जल देके दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। ब्राह्मण को हर समय खुश रखना चाहिए। ब्राह्मणे मुखमासी, यानी ब्राह्मण जो है ब्रह्मा का मुख है, भगवान का जो है मुंह ब्राह्मण है,
0: ब्रह्मनो मुखमासी।
1: हाँ,
0: अच्छा।
1: तो ब्राह्मण को हर समय प्रसन्न रखना चाहिए, ब्रह्मराजो मुखमासी बोलते हैं ना
0: जी।
1: तो यही है, अब इसका उद्देश्य क्या है? इस प्रकार एकादशी का व्रत करने से मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, व्यक्ति जीवन में सुख होकर श्री हरि के लोक में स्थान प्राप्त करता है। जो मनुष्य है अगर इसमें उपासना करे, सावन के महीने में एकादशी का व्रत करे, तो वो सुख पाता है, और वो कहाँ जाता है? भगवान विष्णु के सीधा डायरेक्ट वैकुंठ लोक जाता है।
0: ऐसा
1: जी। अब संजय जी, आपका कोई प्रश्न है सावन के महीने में तो आप पूछ सकते हैं।
0: बस ये है कि जो संदेश, अब ये मैं कहना चाहूँगा कि शांता जी भी उपस्थित हो गए स्टूडियो में और भाई जॉनी जी भी उपस्थित हो गए स्टूडियो में, ये श्रावण मास के अंतर्गत में जो आप संदेश रखे, पर मास्टर जी देखिए कितने लोग हैं जो श्रावण मास में होलांत में भी ये और व्रत करते हैं, तो सबसे सूक्ष्म स्वरूप से किस प्रकार से लोग पूरा मास और जा करके और कार्य कर सकते हैं?
1: तो इसकी सरल विधि यही है कि सावन के महीने में जो सोमवार आता है, चार सोमवार आएंगे इसमें। हाँ, तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें व्रत करना चाहिए,
0: व्रत
1: विधि विधान व्रत करना चाहिए, और उसमें पूजा पाठ करना चाहिए। ब्रह्म जब शाम को अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत खोलते हैं तो ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, भोजन पहले ब्राह्मण को कराना चाहिए, फिर स्वयं करना चाहिए। व्रत का मतलब ये है कि उस दिन अन्न नहीं खाना है, जल और फल ले सकते हैं। अगर निर्जला हो तो बहुत अच्छा, अगर कुछ लोग क्या करते हैं कि जल फल भी नहीं लेते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन जो नहीं रह सकते ज्यादा भूखा, किसी को दवा खाना है, किसी को कुछ करना है, तो वो पानी ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, और ये अपना लिक्विड जूस ले सकते हैं। इस प्रकार से व्रत अन्न अन्न न खाए, बस ये मेन उद्देश्य है कि इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए।
0: अच्छा मास्टर जी,
1: रोटी चावल नमक ये सब ना खाए,
0: चावल नमक ना खाए। हम एक मास्टर जी क्यों ना हम एक गीत के और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये श्रावण मास अंतर्गत तो संदेश और आगे बढ़ाया जाए।
1: जरूर जरूर।

0: जो श्रावण का अंतर्गत में और हम चलाए आपके लिए रखे सुनने वालों भूपेंद्र सिंह जी के आवास में और मास्टर जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। तो मास्टर जी, अब ये श्रावण मास में ये बताइए मास्टर जी कि ये मास में क्या हम अपने पितरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए?
1: श्रावण के महीने में खास करके पितरों के उद्धार के लिए ही बहुत अच्छा माना जाता है। जो जो पितर होते हैं उनके लिए स्पेशली यही महीना है।
0: और पितरों माने तो मास्टर जी ये भी थोड़ा से समझा देना, क्योंकि शायद कुछ लोग हैं जो शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे कि पितरों बोले तो क्या, तो पितरों है जो जो अब इस दुनिया में नहीं है ना मास्टर जी?
1: हाँ, पितरों का मतलब है कि जो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वज मतलब दादा हो गया, नाना हो गया, दादी हो गई, वो इस दुनिया में इस समय नहीं है, लेकिन वो हमारे पूर्वज थे, तो इसलिए उनको विशेष स्थान दिया गया है। और अगर पितर प्रसन्न हो गए तो सारा काम बहुत अच्छा हो जाता है।
0: कहते हैं कि पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, इस पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए ना?
1: बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण जो है, इस महीने में अगर आपने सावन के महीने में पितरों के लिए कर लिया, क्योंकि पितरों के लिए सरल काम नहीं, बहुत बहुत सारी मेहनत लगती और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, तब पितरों का पूजा होता है। 21 ब्राह्मण बैठते हैं, 11 ब्राह्मण बैठते हैं,
0: ऐसा
1: फिर पितरों का उद्धार होता है। और उसके लिए पितरों के लिए कहाँ पे करते हैं, या तो तर्पण देते हैं, तर्पण या तो फिर तर्पण घर पे ही दे सकते हैं। और दूसरा जो है पितरों के लिए हम लोग क्या करते हैं कि तीर्थ स्थान पे जाते हैं,
0: तीर्थ स्थान पे जाते हैं,
1: वहां पिंड भरते हैं पितरों के लिए, और वो पिंड भरते हैं और सीधा डायरेक्ट वो पितर हमारे प्रसन्न हो जाते हैं उन पिंड भरने से।
0: ऐसा
1: तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि जब पितर प्रसन्न हो गए, पिंडदान हो गया, और फिर वो पितरों तक पहुंच जाता है, यानी जहां भी वो है वो वहां प्रसन्न हो जाते हैं। जब वो पितर खुश होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती है। तो पितृ ऋण जो है जरूर उतारना चाहिए, ये विशेष करके यही महीना में उसका पूजा पाठ होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जिन लोगों को हॉलैंड देश में वो कराना है तो आप पंडित लोगों से, आप लोगों से संपर्क करके अपने पितरों के उद्धार के लिए ये जरूर करना चाहिए। और ये महीना बहुत ही विशेष है, जैसे विधि विधान से करना है तो उनको तो वो बड़ा लंबा आना पड़ेगा भारत, तो तीन जगह उसके लिए, पहली जगह है उसके लिए विष्णुपाद, यानी गया जी में
0: एकदम बिहार के साइड ना मास्टर जी?
1: जी, बिहार में वहां होती है पैरों की पूजा, उसको बोलते हैं विष्णुपाद। भगवान राम ने भी, राजा दशरथ जो उनके पिता थे, उनका पिंड भरे थे वहां उस जगह पे।
0: ऐसा
1: हाँ। और फिर दूसरा होता है छाती का, वो होता है काशी में, और तीसरा होता है वो होता है सिर का, वो होता है बद्रीनाथ में। तो जिस प्रकार जो लोग शुरुआत करनी चाहिए वहां से, फिर यहां, फिर बद्रीनाथ लास्ट, उसको बोलते हैं ब्रह्म कपाली। तो फिर पूर्ण रूप से पितरों का कार्य हो जाता है जब ब्रह्म कपाली में कर लेते। इसके बाद पितरों का तर्पण नहीं देना कभी नहीं, क्योंकि वो एकदम मोक्ष हो गया।
0: ऐसा लोग अपने पितरों के लिए कर सकते हैं, यानी कि
1: जी ऐसा कर सकते हैं। और जो लोग ये नहीं कर सकते हैं वो लोग क्या करना है कि उनको अपने घर पे ब्राह्मण को बुला के तर्पण करना है, दूध, तिल, जौ और घी पंच में पंच जो मैंने अभी विधि विधान बताया उसके अनुसार वो सब अपने घर में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो काफी लंबा हो जाता ना, तो जो लोग इतना नहीं कर सकते वो वहीं से कर सकते हैं अपने घर से पितरों के लिए।
0: सूक्ष्म रूप
1: में बहुत विशेष है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस प्रकार से करें, और क्यों ना हमें सुंदरता जो सावन का महीना है, पलम नाची मोर, मोर भी इस महीने में नाचते हैं।
0: बिल्कुल, तो हम वो गीत चला देते हैं मास्टर जी।
1: हाँ, जब मोरों को भी पसंद है तो क्यों नहीं चलाया जाए।
0: बिल्कुल जरूर।

0: रे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।

जियरारे झूमे जैसे जैसे कौन नाच रहा है। और मास्टर जी ने जो अभी संदेश को रखे कि श्रावण मास, ये मास जो है कि लोग अपने घर पे, और जो कहा जाता है कि एक बन है लमांत श्रावण फेखतारिस, इन बातों पे ध्यान देते हैं। और इस मास में जो कि ख़ास करके मास्टर जी ने अभी संदेश को रखे कि सोमवार व्रत किस प्रकार से करना चाहिए और अपने पितरों के लिए क्या कर सकते हो आप, सभी पे मास्टर जी ने खूब ढेर सारे संदेश को रखे हैं। हम कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं।

कार्यक्रम जो बनाया जा रहा है श्रावण मास के अंतर्गत, और दोस्तों सुनने वालों, आज संदेश को रखा गया इस अंतर्गत में हम एक और लखबीर सिंह के आवाज़ में एक कावर अंतर्गत सुंदर सा गीत को सुनेंगे।

फाउंटेन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

क्या खूब फरमाए हैं बॉलीवुड लेटेस्ट सॉन्ग्स के साथ। मैं हूँ आपका सेवक संजय और कुछ ऐसा नया नया गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप सुन रहे हैं फाहून हिंदुस्तानी रेडियो, इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक प्रांत में सुना जा सकता है।

दोस्तों, कहा जाता है कि सुख चाहते हो तो रात में जगाना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। बात के लिए मैं संजय आपके साथ जुड़ गए हैं। कुछ बॉलीवुड न्यू सॉन्ग्स के साथ

फिल्म साहिबा से निकाला गया। ये फिल्म जो 2025 का सॉन्ग्स में बिलोंग होता है और बॉलीवुड में जो हर साल में लगभग 2000 फिल्मों बनाया जाता है, जब देखा जाए कि 2017 में कहा जाता है कि इंडिया से सिनेमा 1986 स्पेलफिल्म्स जो बनाए थे, वारफन हेत ग्रोटस्ट आंतल 364 इन हेत हिंदी वास

स्त्री टू से निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो बॉलीवुड 2025 के सॉन्ग लिस्ट में बिलोंग होते हैं।

क्यों ना इसे दोहरा दिया जाए। तो क्या खूब कहा गया है कि संबंध कभी जीत कर नहीं निभाए जा सकते, संबंधों के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जीतना होता है और स्वयं हारना होता है।

24 में अपना कॉन्सर्ट एम्स्टर्डम डोम में भी दिया। और दोस्तों, किसी ने कहा है कि आप अपना दिन इतना सुंदर बनाइए, इतना खुश रहो कि दुनिया वाले भी परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है।

0: 2025 में रिलीज हुए ये फिल्म सुनने वालों, हमारे देश में भी कुछ पुरानी फिल्मों जो चलाया जाता है गर्मी महीना में और बायोस्कोप में, तो कुछ फिल्मों के नाम अभी मैं आपके साथ जरूर जिक्र करेंगे बायोस्कोप में। और जैसे पुरानी फिल्मों का नाम मैं जिक्र करता हूं तो शोले, सिलसिला, इस प्रकार की फिल्मों, खास करके इस साल सूरीनाम में भी ऐसा कुछ किया जाए। तो अगर आपके मन में भी ऐसा फिल्म फेस्टिवल देखने का इच्छा है अगर आपके पास इंटरनेट है तो जरूर गूगल महाराज पे और सर्च कीजिए कि इस साल कौन कौन सा फिल्म आपके लिए रखा जाएगा। क्योंकि हमारे देश में ऐसा और प्रोग्राम को बनाया जाता है और इसी तरह से सूरीनाम में भी अगर आप वेकेशन से गए होंगे तो गर्मी महीना में हर साल की तरह इस साल भी कुछ कार्यक्रम को रखा जाएगा।
1: यीशु के बगैर ये शंभू

0: राज के बारे में आप हमसे ज्यादा सोचती हैं।
1: क्योंकि सखी इस महल में नहीं अपने श्री के मन में रहती है।
2: अरिजीत सिंह जी के आवाज में ये सुंदर सा गीत सुनने को प्राप्त हुआ। एक फिल्म जो रिलीज हुआ 2025 में, विकी कौशिक जी ने अपना कला से अभिनय किया।

सुनने वालों, ये भी एक गीत निकाला गया 2025 फिल्मों में से। समय के ओर जब देखा जाए कि किस ओर बॉलीवुड भी जा रहे हैं, और कहा जाता है कि 2024 में काफी बड़े बड़े फिल्मों निकले।

Houseful 5 se një kalagaja jesu në shagit. Komedi film. Gjismi Akshay Kumar, Abhishek Bachchan, Ritesh Deshmukh, Fernandes, ढेर सारे फिल्म एक्टर्स इस फिल्म में अपना अभिनय दिए हैं। दोस्तों, शायद आपने कभी ये प्रश्न नहीं किए होंगे, पर यहाँ जब देखा जाए कि बॉलीवुड एक ऐसा बड़का फिल्म इंडस्ट्री है, जिसमें कहा गया है कि लगभग एक फिल्म में 4 गीतों के साथ मिनिमम रखा जाता है, और हम जब गिनती में देखें कि 500-600 फिल्म तो साल में बनी जाते हैं, और उसे जब हम 4 से जोड़े तो लगभग 2400 गीतों का तैयारी हो जाता है साल भर में। और उसे हम जब आगे जोड़े लगभग 15 साल से तो 36,000 सॉन्ग्स हो जाते हैं।

Mayıs 2025 में से निकाला गया ये सुंदर सा गीत द फर्स्ट सॉन्ग रिकॉर्डेड इन इंडिया बाय गौहर जैन इन 1902 गीत जो रिकॉर्ड किया गया 1902 में एंड द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म अलम आरा 1931

शायद इस बात को भी आप जानते होंगे। उस समय के बाद जो हमारे समय आते थे, इन द यार 60, द यार 70, द यार 80 एन 90, जिस समय कैसेट टेप्स के समय कहा जाता है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तो बस 2000 से शुरू हुआ। सैदी के बाद

आप खुश हो, अच्छे बात है। आपकी वजह से कोई खुश हो, ये सबसे अच्छी बात है।

दोस्तों, सॉरी बोलने में कंजूसी मत करना। कोई कभी ऐसा होता है। ऐसा होता है कि अपना हार मानने को नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि 70 साल से भी ज्यादा होने पे एक दूसरे से और बिखर जाते हैं। बस यही कि सॉरी कहना नहीं आता है। तो दोस्तों सुनने वालों, इसमें कंजूसी ना करे। यहां तक था मैं आपका सेवक संजय। कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स 2025 के लेकर, शायद हमारे समय का नहीं हो, पर हम इसी समय में जी रहे हैं। Wish you a very good day.

क्या हमने किसी का पेट भरा पाए। क्या हम अपने बुजुर्गों के लिए कुछ कर पाए।

दिया है, जा दिए है अपने वतन तेरे लिए। सुन वालों, मैं हूँ संजय और आपके साथ जुड़ गए हैं कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ। और ये प्रश्न रख दिया गया है कि क्या मैंने अपने जीवन जिए है अपने वतन के लिए, क्या किए है, क्या अपने औरों के लिए हमने कुछ किए है कभी। उस अंतर्गत में कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ और यहाँ तक भी कि कुछ संस्थाएं हैं जो अपने वतन के लिए कितना भीड़ भाड़ से काम करते हैं, उन सभी के लिए भी एक सुंदर सा गीत चलाने को कोशिश करूँगा।

जैसे कि हमें इस बात को भी पता है कि पाप शरीर नहीं करता है, विचारे हमारे करते हैं और गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोते हैं, तो देखा जाए कि हम अपने समाज, अपने संस्कृति और अपने सभ्यता के लिए क्या किए हैं।

सुनने वालों, जब देखा जाए कि सूरीनाम में कितना, जो हम सूरीनाम में हमारा जन्म हुआ, हम अपने सूरीनाम वतन के लिए और यहाँ रहते हैं हॉलैंड में, हम क्या किए हैं अपने वतन के लिए। संस्था जो बनाया गया सूरीनाम में इस समय पे खूब जोर तोर से काम करते हैं, FALS, एक संस्था जो अपने समाज के लिए जोर तोर से काम करते हैं, उसका मोटो यही है कि अंस्टर्क साम लेफिंग दोर खुद लीडरशिप, अंस्टर्क साम लेफिंग दोर खुद लीडरशिप, ये भी बहुत ज़रूरत है। और FALS के लिए जो इतना जोर तोर से काम करते हैं, उस अंतर्गत हम एक सुंदर सा गीत प्लेयर पे चुन करके रखे हैं।

फाउंटेन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

दोस्तों प्यार की प्यार भरी सॉन्ग आज हम आप लोग को और सुनाएंगे, कुछ शायरी भी आप लोग को हम आज सुनाएंगे और लवली लवली सॉन्ग फन यारन 90 tot het met en vanaf 80, 90, 95 के प्रोग्राम आज हम आप लोग को सुनाएंगे। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और मोहब्बत भरी प्यार भरी और दिल के धड़कन की और यानी कि बातें शायरी सुनाना है हमारा काम। और बात ये है दोस्तों कि इश्क मोहब्बत दीवानी ये बस लफ्ज़ थे, जब तुम मिले तब इन लफ्जों को मैंने मिले। तो प्यार भरी शायरी आज हम आप लोग को सुनाएंगे। हम जाते हैं हम तुमको निगाहों में, हम तुमको निगाहों में गर्व। और इस गीत को इस फिल्म में काम किया है और यानी कि सलमान खान काम किया है दोस्तों। आओ मिलकर सुना जाए। और ये क्या है हमारा प्रोग्राम का नाम है मोहब्बत भरी प्यार भरी पैगाम।

को निगाहों में। और क्या क्या होता सुनो, आप लोगों तो खुद सुना है हमारे दोस्तों। और कहते हैं कि तेरे ख्याल से खुद को छुपा के देखा है हमारी, हमारी बात सुनो दोस्तों, कि तेरे ख्याल से खुद को छुपा कर देखा है, दिल को नजर को रुला कर देखा है। तू नहीं तो कुछ भी नहीं तेरी कसम, तू नहीं तो कुछ भी नहीं है तेरी कसम, मैंने खुद कुछ पल तुझे भुला कर देखा है। और कहते हैं इश्क में तेरा यकीन बन जाऊं, इश्क में तेरा यकीन बन जाऊं, दर्द में तेरा सुकून, इश्क में तेरा यकीन बन जाऊं, दर्द में तेरा सुकून। तुम रखो कदम जहां खुदा में, तुम रखो कदम जहां खुदा करे, मैं वहीं जमीन बन जाऊं। तो हम जाते हैं दोस्तों, और एक प्यार भरी गीत तुम्हारी नजरों में हमने देखा है। कल की आवाज ने हिंदी ट्विन का ये फिल्म है, और रोहित बच्चिया और प्रतिभा सिन्हा का ये गीत है। आओ मिलकर सुना जाए।

0: झलक रही है।
1: तुम्हारी नजरों में हमने देखा और प्यार में तो एक से एक चीज झलकती है दोस्तों। कभी दांत झलक देते हैं तो कभी आंख में से आंसू गिर जाते हैं। प्यार में बहुत चीज झलक देते हैं कि कहते हैं हम आपकी हर चीज से प्यार कर लेंगे, हम आपकी हर चीज से प्यार कर लेंगे, आपकी हर बार पर ऐतबार कर लेंगे, बस एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो, बस एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो, हम जिंदगी भर आपका इंतजार कर लेंगे। दोस्तों प्यार में ये सब तो होता ही रहता है ना, कि कहते हैं नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, मुझे इतना न पिला इश्क के जाम की मैं इश्क के जहर का आधी हो जाऊं। तो हम जाते हैं, वो लड़की बहुत याद आती है, फिल्म का नाम है कयामत, अलका जी और कुमार शानू सोनू निगम, जिसमें काम किया है अजन देवगन।

और ये लड़की बहुत याद आता है, और ना सिर्फ लड़की याद आता है दोस्तों, लड़की को लड़का भी बहुत याद आता है, और लड़की को जब लड़का याद आता है तो क्या कहते हैं, लड़का कहते हैं कि तेरे प्यार पाने के लिए मैंने कितना इंतजार किया, तेरे प्यार पाने के लिए मैंने कितना इंतजार किया, और उस इंतजार में न जाने कितनों से प्यार किया। दैट वाज जोक में से प्यार करने वालों के लिए, लेकिन असली बात ये है, हमने सीने से लगाकर हमारी सारी कसक दूर कर दो, हमें सीने से लगाकर हमारी सारी कसक दूर कर दो, हम सिर्फ तुम्हारे हो जाए, हमें इतना मजबूर कर दो। तो ये प्यार भरी पैगाम, प्यार भरी मोहब्बत भरी गीत हम आपके लिए चलाते हैं, और नेखंत इंद्रिय से इवेंट की ओर हम जाते हैं। फिल्म के नाम है ब्लैकमेल किशोर जी, और क्या कहते हैं कि हमारे दिल के पास आप हो, पल पल दिल के पास।

पल पल दिल के पास और तुम रहती हो, और दिल के पास तो रहना चाहिए हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे मोहब्बत भरी। और लोगों कि कहते हैं बहुत खूबसूरत हो तुम फूल की तरह, बहुत खूबसूरत हो तुम फूल की तरह, खुद को दुनिया की नजर से बचाया करो, खुद को दुनिया के नजर से बचाया करो। सिर्फ आंखों में ख्याल ही काफी नहीं है, ख्याल में नींबू मिर्ची भी लगाया करो। और प्यार लोग जो प्यार करते हैं उसके लिए भी हम यहाँ पर कुछ लेके आया है। और कहते हैं आई सनम आई सनम, काश मैं भी पानी की एक घूंट होता। आई सनम, काश मैं भी पानी का एक घूंट होता, तेरी लबों से लगता, तेरी रग रग में समा जाता, और तेरी चुनरिया उड़ जाते तो हमें कैसा लगता, आप खुद ही सुनिए।

और तेरी चुनरिया क्या हुआ भैया, उड़ गया है कि मैंने मोहब्बत को तो नहीं देखा है दोस्तों, मैंने मोहब्बत को तो नहीं देखा, पर लगता है ये तेरी जैसी होगी। मैंने चीखी है बहुत मिठाइयां, पर मुझे क्या पता था कि तेरी होंठों के लिपस्टिक उनसे भी मीठी होगी। तो जे कोई लिपस्टिक लगाए भैया ओके तो पता होगा कि चिजवा कैसे है। और कहते हैं किस्मत या मेरा इम्तिहान ले रही है, किस्मत ये मेरा इम्तिहान ले रही है, तड़प कर ये मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया है दोस्तों, पर क्यों बेवफा को वो इल्जाम दे रही है। और जब कोई बेवफा होता है दोस्तों तो ये गीत आपको सुनना चाहिए। तो यहां पर हम चलते हैं निहति निघ्न निघन तक का ये गीत।

0: और चाहा है तुझको और चाहेंगे हरदम। उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल फिल्म के नाम है मन नेहन दिन होंदत नेहन नेहन तक कहा दोस्तों। और कहते हैं किस्मत जा मेरा इम्तिहान ले रही है, तड़प कर ये मुझे दर्द से रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा को वही इल्जाम दे रही है। हमारे दोस्तों और प्यार भरी गीतों का, और यहाँ पर हम चलाते हैं कि प्यार का अमहता एहसास दिलाने लगे हो तुम, अब तो मुझसे मुझे को चुराने लगे हो तुम, तेरी चाहतों का गया है जरूर इस कदर, हर पल हर जगह नजर आने लगा हो सिर्फ और तुम, कि अजनबी मुझे इतना बता प्यार तो होना ही था।
1: सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता, इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई, अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

अजनबी मुझसे मुझको इतना बता, और अजमी अजनबी आपको क्या बताएंगे। अजनबी जो है वो आंख में देख को प्यार हो जाता। दोस्तों आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगी, और इस फिल्म का नाम है दिस लव सॉन्ग, और ये है फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था, और अजय देवगन काजल ने इसमें काम किया है, उदित नारायण का गाया हुआ ये गीत है। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों के कहते हैं, तेरे खामोश होठों पर मोहब्बत गुनगुनाती है, तुम्हारी खामोश होठों पर मोहब्बत गुनगुनाती है, तो मेरी है और मैं तेरा हूं, बस यही आवाज आती है। उस लड़की पे दिल आ गया है दोस्तों, कुमार शानू और नाइटिंगेल लता मंगेशकर, दिया मिर्जी, अनुराधा पौडवाल।

उस लड़की पे दिल आ गया है दोस्तों, और कुमार शानू ने तिलगी लता जी और इस गीत को सुनाया है दोस्तों। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है और अगला गीत से पहले दोस्तों हम जाते हैं रे कलाम की ओर। हमारे प्यारे दोस्तों, मोहब्बत भरी रात है और मोहब्बत भरी रात में प्यार भरी गीत बहुत अच्छा लगता है। तो हम जाते हैं देखा तुझे तो हो गया दीवाना, देखा तुझे तो हो गया दीवाना, आओ मिलकर सुना जाए देखा तुझे तो हो गया दीवाना।

देखा तुझे तो हो गया दीवाना। और दोस्तों हम अपना प्रोग्राम को

क्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। रूबरू मिलने से मौका नहीं पा रहा है, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपको हार्दिक से नमन करता हूँ। विक्रम ज्योति का प्रकाश है और हम सब कुछ न कुछ हर बार एक विषय लेकर आपके साथ जुड़ जाते हैं। हमारे कार्यक्रम में सहयोग देने वाला है अनुराधा जी और बबली आसरा जी। पहले बबली आसरा जी अपना एंट्री लेते हैं।

विश्वास तो दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं, जोड़ो तो पहले जैसा अक्स नहीं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

0: हमारे साथ हमारे कुलेखा साथी अनुराधा चंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। तो अनुराधा जी, आपके लिए आप क्या संदेश आज लेकर आए हैं?
1: ज्योति के प्रकाश में सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। संजय जी, आज मैं सबके सामने कुछ ऐसी बात बताना चाहूंगी जो हम सब में होती है। देखिए, हम अक्सर सुंदरता के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे मन में हम हमेशा सोचते हैं कि सुंदरता एक शारीरिक दिखावट के संदर्भ में बात करते हैं, लेकिन उस सुंदरता के बारे में क्या जो भीतर हमारे अंदर छुपी है। एक सुंदर आत्मा वाला व्यक्ति एक खास तरह का एक चुंबक प्रदर्शित करता है, जैसे कि एक मैग्नेटिक टाइप की पर्सनालिटी होती है उसकी, है, और जिसे अनदेखा करना काफी मुश्किल होता है। तो आप जानते हैं कि जिसकी आत्मा सुंदर होती है, ऐसे इंसानों में ज्यादातर 10 किस्म के गुण वो प्रदर्शित करेगा। क्यों ना जाने उन ऐसे कौन से गुण हैं जो उन इंसानों में होते हैं। हम उन 10 विशेष गुणों के बारे में जानेंगे जो आमतौर पर एक खूबसूरत आत्मा वाले व्यक्ति में हमेशा पाए जाते हैं। अगर आप जानने के लिए उत्सुक हैं तो चलिए आगे बढ़ा जाए। तो पहला जो होता है वो है सहानुभूति, यानी कि सिंपथी। एक खूबसूरत आत्मा अक्सर एक दयालु हृदय का पर्याय मानी जाती है कि वो उसमें हमेशा वो एक बहुत ही इंसान वो दयालु इंसान होता है। यह किसी की परिस्थिति के प्रति सहानुभूति रखने के बारे में नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सहानुभूति यानी कि सिंपथी का मतलब है खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह पर रखना, उनका दर्द महसूस करना और उनके नजरिए को समझना। एक खूबसूरत आत्मा वाले व्यक्ति में सहानुभूति का एक अनोखा गुण होता है। वह न केवल दूसरों की भावनाओं को स्वीकार करता है बल्कि उसे महसूस भी करता है। उसे वह इंसान बहुत ही दयालु होता है और बहुत ही समझदारी से वो सब कार्य करता है। यह गुण विकसित करना आसान नहीं होता है, लेकिन यह इंसान की आंतरिक सुंदरता का एक ये संकेत होता है कि जो इंसान दयालु होते हैं वो ऐसे होते हैं। ये सोचिए, ये ऐसा गुण है जो वास्तव में उसे अलग बनाता है। अच्छा, हमें याद रखना चाहिए कि सबसे सुंदर आत्माएं वे हैं जिन्होंने संघर्ष और क्षति को जाना है और गहराइयों के बारे में निकलने का रास्ता खोया है। वे दूसरों के साथ बहुत ही सहानुभूति रख सकते हैं क्योंकि वे उस रास्ते पर चल चुके हैं। दूसरा है ईमानदारी, जो है ऑनेस्टी। देखिए, ईमानदारी एक खूबसूरत आत्मा की एक और पहचान है। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं किसी को जानती थी, एक इंसान जिसका नाम मार्क था। वह उन लोगों में से नहीं था जो बातों का मीठा मीठा बताते हैं या आप जो आप सुनना चाहते हैं वही बताते हैं। इसके बजाय वह हमेशा ईमानदार और हमेशा सही तरीके से, बिल्कुल साफ तरीके से हर चीज बताता था। जब यह मुश्किल होता था तब भी वह हमेशा हमेशा ईमानदारी से ही सब बातें करता था। मुझे याद है कि एक बार जो मैं एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी और कुछ जल्दबाजी के में फैसले करने लेने के बारे में सोच रही थी, जो ये दोस्त थे, ये एक कुलीग थे मार्क, उन्होंने मुझे ये बताने में संकोच नहीं किया कि उन्हें लगता है कि मैं गलती कर रही हूँ। उन्होंने सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए मुझसे सहमति नहीं जताई और वो मेरी बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने सच बोला क्योंकि उन्हें लगा मैं ही मेरी भलाई है और तभी उन्होंने मेरे को सच्चाई और जो थी बात बताई। उस समय जो जब ऐसे इंसान जब ऐसे दौर से गुजरता है तो उसको ये बात ना सुनने में कठिन लगती है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि जब इंसान ईमानदारी से आपको जब कुछ आपको बताता है तो वो आपके आपके ही फायदे के लिए इंसान वो आपको बताता है, तो ये एक खूबसूरत आत्मा का का बताता है कि वो कितनी एक इंसान जब जो ईमानदार है वो हमेशा हमेशा वो आपको सच बताएंगे। और सच कहते हैं कड़वा भी होता है, पर वो ही आपको सही आईना दिखाता है। देखिए हमने दो चीज कर ली, दयालु इंसान और ईमानदार इंसान, सॉरी दयालु नहीं, सहानुभूति जब इंसान दिखाता है, ये सहानुभूति और ईमानदारी ये एक आत्मा को बहुत एक सुंदर बनाते हैं, इंसान को अच्छा अच्छा इंसान बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले संजय जी क्यों ना एक गीत हो जाए, फिर आगे बढ़ा जाए।

अनुराधा जी, बिल्कुल सही संदेश आप रख रहे हो। और कहा जाता है भी कि ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो बोझ क्रोध का हो, चाहे बदले का हो या अभिमान का। जरूर हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद में अनुराधा जी अपना कार्यक्रम में और भी संदेश रखने वाले हैं।

करते हम शुरू आज का काम प्रभु। तरक्की कहते हैं कि तरक्की इतना हुई है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे इंसान को देख और सुन सकते हैं। तरक्की इतनी हुई है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे इंसान को देख और सुन सकते हैं। पर कहा जाता है पतन इतना हुआ कि पास बैठे इंसान को तकलीफ और दर्द दिखाई नहीं देता है। तो सुनने वालों, इसीलिए कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश भी बनाया जाता है, जिससे अनुराधा जी और भी संदेश हम सबको सुनाने वाले हैं। तो अनुराधा जी, आप अपना संदेश को आगे रखिए। सुनने वालों, इस बात को पता है कि इंसान के जो 10 गुणों होते हैं उस अंतर्गत में, और अनुराधा जी जो संदेश को रख रहे हैं।

0: तो चलिए जाने कि आगे कौन से ऐसे गुण हैं जो इंसान को अच्छा बनाते हैं। तीसरा है कृतज्ञता यानी कि ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता एक ऐसा गुण है जो खूबसूरत आत्मा वाले लोगों में गहराई से समाया हुआ होता है। ये लोग समझते हैं कि जीवन सिर्फ बड़ी जीत के बारे में नहीं है, ये छोटी छोटी रोजमर्रा की खुशियों की सराहना करने में के बारे में भी होता है। वो हर चीज को एक देखते हैं, उसमें ग्रैटिट्यूड उनको दिखता है। ये रिसर्च और एक शोध यानी कि रिसर्च से पता चला है कि कृतज्ञता और सेहत के बीच एक मजबूत संबंध है। ये पाया गया कि जिन लोगों ने लिखा कि वे किस बात के लिए आभारी होते हैं जीवन में, वे उन लोगों की तुलना में अधिक आशावादी और स्वस्थ महसूस करते हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया। वो हर चीज को लेकर भगवान के प्रति, इस संसार के प्रति, हर चीज में वो एक उनको कृतज्ञता, वो एक ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। एक खूबसूरत आत्मा वाला व्यक्ति कृतज्ञता की शक्ति को पहचानता है। वह चीजों को हल्के से नहीं लेता और अपनी प्रशंसा हर समय व्यक्त करने का प्रयास करता है। वो हर छोटी छोटी चीजों को, वो सबको सराहन, उनको पता है कि उसकी वो तारीफ करता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ये भावना उससे निकलती है जिससे उसकी आत्मा और भी अधिक चमकती है। ये तो एक हो गया। फिर चौथा है धैर्य यानी कि पेशेंस। धैर्य, जिन इंसान में धैर्य होता है, वह मनुष्य बहुत ही सुंदर आत्मा का प्रमाण है। एक धैर्यवान व्यक्ति जो होता है, जिसमें बहुत सारी पेशेंस है, वह समझता है कि अच्छी चीजों को पाने में समय लगता है। वह जीवन में जल्दबाजी नहीं करता, हर कीमत पर आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करता। इसके बजाय हर वह यात्रा की सराहना करता है और समझता है कि रास्ते में हर कदम का अपना महत्व होता है। तो ऐसे जो इंसान होते हैं, सही अवसर के आने का इंतजार करते हैं और किसी को विकसित होने के लिए अपेक्षित समय हमेशा देना होता है। तो इसलिए वह उनको हमेशा वो धैर्य से हर चीज धैर्य से करते हैं और जल्दबाजी नहीं करते। यह जो इंसान की जो धैर्य जो होता है रखने वाले व्यक्ति की आत्मा वास्तव में बहुत ही सुंदर होती है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला है उदारता यानी कि जेनरोसिटी। उदारता का मतलब सिर्फ उपहार या पैसे देना नहीं होता है। यह जीने का एक तरीका है, एक मानसिकता है जो दूसरों को खुद से पहले रखती है। तो ये इंसान, जिस इंसान का दिल बहुत उदार होता है, वो हमेशा दूसरों के भले के लिए सोचता है, वो हमेशा दूसरों की भलाई आगे करना चाहता है। एक सुंदर आत्मा वाला व्यक्ति इस गुण का प्रतीक है। वह अपने समय, अपने संसाधनों और अपनी दयालुता के साथ वो बहुत उदार हैं। वह समझते हैं कि देने का मूल्य अक्सर प्राप्त करने से अधिक होता है और उनमें कोई लालची नहीं होते। वो हमेशा दूसरों के लिए भला करना चाहते हैं, हमेशा उनका दिल बहुत ही बड़ा होता है। कहते हैं ना, बहुत बड़े दिल के होते हैं ऐसे व्यक्ति जो उनमें बहुत अधिक तरीके से उदारता भरी होती है। इस तरह की उदारता पहचानना या प्रशंसा वाले के बारे में नहीं है कि उदारता पहचान या प्रशंसा वाले पाने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह दूसरों के लिए सच्चे प्यार और देखभाल की भावना से आती है। ये एक निस्वार्थ कार्य है जो उसकी आत्मा की सुंदरता को आगे उसको उजागर करती है। चाहे वह अपनी सोचिए, चाहे वह अपनी चॉकलेट का आखिरी टुकड़ा सोचिए कि कोई चॉकलेट खा रहा हो, आखिरी टुकड़ा है और उसका बहुत मन कर रहा है खाने का, पर वो किसी को देखता है और जिसको उसको लगा कि भाई उसको चॉकलेट खाने का है तो वो शायद आखिरी टुकड़ा अपना उसी को दे देगा। ये छोटी छोटी जो बातें होती ना, यही उस इंसान को उसका चरित्र सामने लाती है, वो जो प्रेम करुणा और मानवता की गहरी भावना से भरा होता है। तो ऐसा इंसान बहुत ही वो उदारता का प्रतीक होता है। आगे बढ़ने से पहले संजय जी क्यों ना एक गीत हो जाए।
1: जरूर अनुराधा जी, जरूर अभी गीत की ओर बढ़ेंगे, पर सुनने वालों कहने के तात्पर्य यह है कि हम लोग का जो 10 लक्षणों होते हैं ना इंसान के, उस अंतर्गत में अनुराधा जी कितना सरलता से और कितना अच्छे अच्छे 4BLD के साथ हम सबको संदेश दे रहे हैं, तो आप सुनते रहना। चलो ताजी की आवाज़ में एक सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

0: ऐसी लागी लगन मीरा हो गए मगन। अनूप जलोता जी की आवाज में क्या शब्दों प्रयोग किया, समझने वाले बात हो जाते हैं दोस्तों। क्योंकि एक बार मैंने गुलजार जी के और एक संदेश पढ़े थे, नफरत कमाना भी आसान नहीं है, नफरत कमाना भी आसान नहीं है इस दुनिया में, लोगों की आंखों में फटकने के लिए भी कुछ खूबियां होनी चाहिए। नफरत कमाना भी आसान नहीं इस दुनिया में, लोगों की आंखों में खटकने के लिए कुछ भी खूबियां नहीं चाहिए। दस लक्षणों जो अनुराधा जी हम सबको सुना रहे हैं, कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश। अनुराधा जी अपना संदेश को आगे बढ़ाइए।
1: संजय जी, हम जो सुनने वालों से बात कर रहे थे और बता रहे थे उनको कि कौन से ऐसे गुण होते हैं जो एक आत्मा को अच्छा एक सुंदर बनाते हैं। आगे बढ़ा जाए तो अगला है क्षमा। क्षमा, क्षमा यानी कि फॉरगिवनेस। क्षमा करना एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब जब आपको चोट गहरी लगी हो, लेकिन एक सुंदर आत्मा वाला व्यक्ति क्षमा की शक्ति और उससे मिलने वाले मुक्ति को पहचानता है। वह समझता है कि नाराजगी, जहाँ अगर नाराजगी या द्वेष, यानी कि जो वो नाराज है रखने, द्वेष रखने में से सिर्फ आपको दर्द और तकलीफ ही भरती है, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा करने से आप को हमेशा आपको दुखी महसूस करेंगे, दुख महसूस करेंगे। इसके बजाय वह माफ करना चुनता है। वह ना सिर्फ दूसरों की खातिर बल्कि अपनी मन की शांति के लिए ही वो ऐसा करता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें क्षमा कूट कूट कर भरी हो, तो वो बहुत एक सुंदर एक इंसान होता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह भूल जाता है कि या खुद को फिर से चोट पहुंचाने देता है। इसका मतलब है कि वह दर्द को स्वीकार करता है। ऐसा इंसान दर्द को स्वीकार करता है, उससे सीखता है और फिर उसे जाने देता है, वो लेट गो कर देता है कि और इंसान को माफ कर देता है। तो जो क्षमा है यानी कि किसी को माफ कर देना, ये हर के बस की बात नहीं है, पर ये एक अच्छी आत्मा का, एक अच्छे इंसान के बारे में उसका गुण होता है जो सबके बस की बात नहीं होती है। इसका मतलब यह नहीं, ये सोचिए कि जो ऐसा इंसान होता है, ये स्पष्ट संकेत है कि वह संघर्ष पर शांति और कड़वाहट पर प्रेम को महत्व देता है। वो ऐसे इंसान लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, और ऐसा कभी दूसरे ने आपका दिल भी दुखा दिया है तो वो उस जानते हैं कि ऐसे इंसान को माफ कर देना चाहिए। अगला है लचीलापन। लचीलापन, लचीलापन यानी कि रेजिलियंस। रेजिलियंस ये एक ऐसा गुण है। जीवन कभी कभी, देखिए हर के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, पर जीवन में कभी कभी उतार चढ़ाव से भरा रोलर कोस्टर जैसा लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है आपके जीवन में, तो आप उसको बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके इंसान के लिए। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में ही व्यक्ति की आत्मा की ताकत वास्तव में सामने आती है जब इंसान को दुनिया का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे कभी कभी ये जीवन में ऐसे कष्ट आते हैं। मुझे भी कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा है। ऐसे पल जब सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा हो था, ऐसे पल बहुत आते हैं जीवन में कि भाई आपको कुछ उसका सल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको नहीं पता कि क्या करें। लेकिन उन समयों में मैं भाग्यशाली रही हूँ, मैं लकी थी कि मेरे साथ कोई ऐसा व्यक्ति था जो लचीलेपन का प्रतीक था, क्योंकि उन्होंने मुश्किलों का सामना साहस और आशावाद के साथ किया, तभी कभी भी कठिनाइयों को अपने हौसलों को कम नहीं होने दिया। ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा बुलंद होते हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि यह मायने नहीं रखता कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप गिरने के बाद भी कितनी बार वापस उठते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर एक चीज़ है कि रेजिलियंस जिसको कहते हैं कि आप लगे रहिए, हार ना मानिए, लचीलापन इसी को कहते हैं रेजिलियंस, एक खूबसूरत आत्मा की निशानी है। यह एक व्यक्ति के जीवन की तूफानों से शालीनता और दृढ़ता के साथ निपटने की क्षमता को एक दर्शाता है, उसको सामने लाता है और कभी उम्मीद नहीं खोता। तो ये बहुत ही एक सुंदर गुण है। देखिए इसके बाद आता है विनम्रता यानी कि पोलाइटनेस। ऐसी दुनिया में जहां दिखावा और आत्म प्रशंसा को अक्सर प्रोत्साहन किया जाता है, विनम्रता यानी कि पोलाइटनेस एक ताजगी देने वाला गुण है। एक खूबसूरत आत्मा वाला व्यक्ति अपनी कीमत जानता है, लेकिन उसे इसका दिखावा करने की जरूरत महसूस नहीं होती। वह अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करता है, लेकिन यह भी पहचानता है कि उसकी सफलता में दूसरों की क्या भूमिका रही है। तो ऐसा इंसान हमेशा बड़ा डाउन टू अर्थ रहता है, उसमें अहंकार या पहचान की चाहत से नहीं होती, वो उसमें अहंकार नहीं होता और पहचान की चाहत से प्रेरित नहीं है। इसके बजाय वह चुपचाप अपना काम करता है और अपने कामों से शब्दों की तुलना में ज्यादा जोर से बोलता है। तो यह विनम्रता कमजोरी या आत्मसंदेह का संकेत नहीं है, इसके विपरीत यह उसकी ताकत और आत्मविश्वास का दिखाता है। यह दर्शाता है कि वह खुद से सुरक्षित है और उससे मूल्यवान महसूस करने के लिए बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं है। विनम्रता है सच्ची में ही एक सच्ची सुंदर आत्मा की एक पहचान है। तो संजय जी चलिए आगे मैं और आगे बढ़ूं तो एक और गीत हो जाए।
0: जरूर जा करके हम एक गीत को चुन करके रख चुके हैं अनुराधा जी, क्यों ना हम वो गीत की ओर बढ़ते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।

दो गुण कौन हैं जो इंसान को एक और सुंदर आत्मा बनाता है? वो है दयालुता, यानी कि काइंडनेस। दयालुता एक ऐसा गुण है जो कभी अनदेखा नहीं होता है। एक सुंदर आत्मा वाला व्यक्ति अक्सर अपनी दयालुता के बड़े और छोटे कार्यों के लिए जाना जाता है। वह सिर्फ तभी दयालुता नहीं दिखाते जब यह सुविधाजनक हो या अपेक्षित हो। इसके वजह वह इसे अपने रोज के जीवन का हिस्सा बना लेते हैं और हर किसी के साथ वो सम्मान और करुणा से पेश आते हैं। चाहे वह किसी जरूरतमंद अजनबी की मदद करना हो या किसी मित्र को संतावना भरे शब्द कहने हो, ऐसे व्यक्ति हमेशा किसी या राह से गुजरते व्यक्ति के साथ मुस्कुराहट बांटना हो, उसकी दयालुता की कोई सीमा नहीं होती। ऐसे व्यक्ति बहुत हमेशा सबके लिए भला ही करना चाहते हैं। ये छोटे छोटे काम ही बड़ा बदलाव लाते हैं। ऐसा जो इंसान दयालु इंसान होता है, उनकी आत्मा की पवित्रता दुनिया को बेहतर जगह बनाने की उनकी सहज इच्छा को दर्शाते हैं। ऐसे खूबसूरत आत्मा वाले व्यक्ति का रूप ही अलग होता है और वो हमेशा लोगों की भलाई ही उनको सूझती है। आखिरी जो गुण एक इंसान को सुंदर बनाती है वो है प्रेम, प्यार, यानी कि लव। एक खूबसूरत आत्मा के दिल में हमेशा प्यार भरा रहेगा। वह आत्मा वाला व्यक्ति जिसमें प्यार भरा है वो गहराई से किसी और बिना किसी शर्त से प्यार करता है। वह सिर्फ उन लोगों से ही प्यार नहीं करता जिन्हें प्यार करना आसान है, बल्कि उनसे भी वो प्रेम और प्यार करता है जिन्हें प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे इंसान का जो प्यार शर्तों या अपेक्षाओं से बंधा नहीं होता, वह शुद्ध, निस्वार्थ और सच्ची देखभाल और स्नेह से आता है। प्रेम ही उसके अस्तित्व का सार है। यही वह चीज है जो उसे दयालु, धैर्यवान, समाजशील और सभी सुंदर गुणों से युक्त बनाती है जिनकी हमने चर्चा की है। तो एक खूबसूरत आत्मा वाला व्यक्ति समझता है कि प्रेम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है जो हम सभी को जोड़ता है और जीवन को वास्तव में जीने लायक बनाता है। और अपने प्रेम के माध्यम से ही वह दूसरों के जीवन को छूता है जिससे यह दुनिया और भी खूबसूरत बन जाती है। ये तो हम जो बात बता रहे थे, तो ये एक और आपने देखा कि प्रेम और ये जो होता है ना, जो हम कहते हैं भीतर की सुंदरता, यानी कि इनर ब्यूटी भी बहुत मायने रखती है। एक सुंदर आत्मा के गुण शारीरिक दिखावे और भौतिक संपत्ति से परे होते हैं। वे हमारी मानवता की गहराई में उतरते हैं जो प्रेम करने, क्षमा करने, सहानुभूति रखने और दयालु होने की हमारी क्षमता को दर्शाते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध इंसान जो इनका नाम था लियो टॉल्स्टॉय ने एक बार कहा था, हर कोई दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता। और ये बहुत ही एक सुंदर बात उन्होंने रखी थी। हर कोई हम चाहते दूसरा बदल जाए पर अपने आप को सबसे जो कोई अपनी बदलने की बात नहीं करता। तो एक खूबसूरत आत्मा वाला व्यक्ति इस बदलाव का प्रतीक होता है। वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी बेहतर बनने का प्रयास करता है। देखिए, तो जीवन में आगे बढ़ते हुए आइए याद रखें कि हमारे बारे में सबसे खूबसूरत चीजें अक्सर आंखों के लिए अदृश्य होती हैं, हम देख नहीं सकते लेकिन दिल से महसूस की जाती हैं। तो क्यों ना हम भी ऐसा

0: ऐसी ऐसा इंसान बने, ऐसे खूबसूरत आत्मा वाला इंसान बने, और ये सभी गुण जो मैंने बताए क्यों ना हम अपने जीवन में इन्हें उतारें और अपना जीवन भी बेहतर बनाए और अपना जीवन के माध्यम से दूसरों के लिए भी हम जीवन में खुशियां लाएं, अच्छा बनाएं। संजय जी, चलिए आगे बढ़ा जाए, और मैं आशा करती हूँ मेरे मेरी ये सभी जो बातें हैं सबको सुनने वालों को पसंद आई होंगी।
1: जरूर, हम यही आशा रखते हैं अनुराधा जी कि हमारा संदेश जो आप अब जिस प्रकार से रखे, कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, जिनका लक्ष्य यही है कि हमारे जीवन का ज्योति जो चल रहा है उसमें और प्रकाश आए।

0: इस पर बबली जी क्या संदेश रखने वाले हैं?
1: इस पर मेरा ये संदेश है, आजकल कपड़े फट जाए तो कोई उसे सिलाई नहीं लगाता, बस नए खरीद लेता है। यही हाल है अब संबंधों का हो गया है, उन्हें सुधारते नहीं, बस नए रिश्ते बना लेते हैं।

दोस्तो इस बात पे ध्यान देना, हमारे जीवन के 10 लक्षणों, और ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए, क्योंकि कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो हमारे खोजी से ना खोज खोज करके ये संदेश हमारे लिए रखते हैं, हम आपके तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।

0: दोस्तों, हम जो आज का विषय है उस पे थोड़ा से और दृष्टि डाला जाता है, और बबली जी भी कुछ तैयारी करके आए हैं। तो बबली जी, आप क्या सुनाने वाले हैं?
1: मैं सुनाने वाले हूँ दवा रहित जीवन।

0: दवा रहित जीवन, इसका मतलब क्या है बबली जी?
1: कि अगर हम जीवन को स्वस्थ तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो दवाई की जरूरत नहीं है, अगर हम जो बातें बताने वाले हैं उन पे हम ध्यान देंगे तो।
0: यानी कि लोग बगैर दवा के, जैसे कि कहा जाता है ये सुबह निकल करके चलने से विटामिन डी को प्राप्त होते हैं, सूर्य को किरण जो निकलते हैं तो उसमें कितना शक्ति होता है, इस प्रकार के ऐसा संदेश जो रखने वाले हैं आप।
1: हाँ जी।
0: तो सुनने वालों, आप बस इस पे ध्यान देना, हम सब जो संदेश आपके लिए लेकर आए हैं जरूर सुनते रहना। बबली जी, आप अपना संदेश को सुनाइए।
1: हाँ जी। जल्दी सोना और जल्दी उठना दवा है, ओम या राम राम का जाप दवा है, योग प्राणायाम और व्यायाम दवा है, सुबह शाम टहलना भी दवा है, उपवास सभी बीमारियों की दवा है।

सुनने वालों, आपको पता है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना दावा है। अगर हम रात को जल्दी सोएंगे तो हम सुबह जल्दी उठेंगे और हमें थकावट महसूस नहीं होगी और हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा।

ओम या राम राम का जाप दवा है। अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, ओम बोलें, राम राम बोलें, तो वो भी दवाई का काम करता है, क्योंकि भगवान का नाम लेने से तो सारा दिन अच्छा बीतता है।

0: योग प्राणायाम और व्यायाम दवा है। आप सब जानते हैं कि योग करना, सूर्य नमस्कार करना, प्राणायाम करना, व्यायाम करना, ये सब दवाई का काम करते हैं।
1: बबली जी, सुना है कि अगर अपने जीवन में 2400 घंटा में से कुछ समय निकाल करके जो योग करते हैं, उसमें हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी शक्तिशाली बन जाते हैं ना?
0: हाँ जी, देखो 24 घंटे में से अगर हम एक घंटा अपने लिए स्वयं के लिए निकालें और 23 घंटे दूसरे कामों के लिए निकालें तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा।
1: और दवाइयों का आवश्यकता भी कम होगा ना?
0: हाँ, तो दवाई भी नहीं लेनी पड़ेगी।
1: पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जल्दी से डॉक्टर पहुंच जाते हैं और डॉक्टर खूब ढेर सारे दवाई लिखने लगते हैं और हमारे लिए एक दवाई का डिब्बा भी लिख देते हैं ना। तो सोमवार से रविवार तलक ये गोलियों खाना पड़ता है और हर सप्ताह इसी प्रकार से शरीर और कमज़ोर होने लगता है मेरे ख्याल से, ऐसा है कि नहीं?
0: कमज़ोर भी होने लगता है और कई दवाई इतनी विटामिन वाली होती है कि उससे थोड़ा भार भी बढ़ जाता है।
1: भार आदि भी बढ़ सकते हैं। और जैसे कि हम सब भी जानते हैं कि मेडिकल का प्रोग्राम ये नहीं है, इस पे हम सब उसका ज्ञान हम लोग को भी नहीं है, पर ये जो हमारी खोजी सेना खोज के हम सब के लिए रखते हैं कि आप अपने शरीर के अंतर्गत थोड़ा उसमें दवाई कम करने का आवश्यकता है, तो ज़रूर इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए।

0: सुबह शाम टहलना भी दवा है। अगर हम सुबह शाम टहलने के लिए जाएं, अगर आधा घंटा एक घंटा, तो उससे हमें ताज़ी हवा मिलती है और हम चलेंगे तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा।
1: इसी प्रकार से हॉलांदिक देश से भी यहाँ पर बनाया गया ढेर हर एक और स्थान पे सुंदर सुंदर पार्क, जिसमें लोग सुबह अपने शरीर के लिए निकल करके चल सकते हैं। और ये सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अपना जो विटामिन डी कहलाते हैं ना,
0: हाँ जी,
1: तो उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। पर अगर हम सोचे कि थोड़ा से और लेट लूँ तो ये तो होएगा नहीं, तो गोली खाना ही पड़ेगा।
0: नहीं, ज़रूरी नहीं सुबह जाएं, शाम को भी जा सकते हैं टहलने के लिए, जैसा जिसको समय मिले उसके अनुसार।
1: जैसा जिसके समय मिले उसी का अनुसार जरूर आप थोड़ा से, कहते हैं यहाँ पर वैज्ञानिक लोग इसके बारे में भी लिखे हैं कि सेस दौसन स्थापन पर्दाख, तो कम से कम लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर तक हम सबको एक दिन में चलना चाहिए ना। तो सुनो लो, इस पे भी थोड़ा से ध्यान देना चाहिए।
0: उपवास सभी बीमारियों की दवा है, कहते हैं अगर हम रोज खाते हैं, अगर एक दिन व्रत रखे, उपवास रखे, तो उससे भी दवाई कमती लेनी पड़ेगी।
1: उपवास, उपवास माने तो
0: व्रत करना।
1: व्रत करना यानी कि दिन भर कुछ नहीं खाना या कुछ कम खाना ना।
0: हाँ जी। सुनने वालों, अब हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं।

सुनने वालों, मैं आप सबको बता रही थी दवा रहित जीवन। सूर्य का प्रकाश भी दवा है, मटके का पानी भी दवा है, ताली बजाना भी दवा है, खूब चबाना भी दवा है, भोजन की तरह चबाकर पानी पीना भी दवा है।

0: सूर्य का प्रकाश भी दवा है। सुनने वालों, आप सब जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन होती है। जब हम धूप में बैठते हैं या सूर्य की रोशनी में जाते हैं तो हमें विटामिन मिलती है और हमें दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। मटके का पानी पीना भी दवा है। अगर हम मटके का पानी पीते हैं तो मिट्टी से बना होता है और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, और वो भी पानी हमारे लिए अच्छा होता है सुनने वालों, और दवा रहित होता है। ताली बजाना भी दवा है। अगर हम दोनों हाथों से ताली बजाते हैं सुनने वालों, तो उसमें हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति लगती है, और हम ताली बजाएंगे तो वो भी हमें दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। खूब चबाना भी दवा है। आप सब जानते हैं कि खाना चबा चबा कर खाना चाहिए, भोजन की तरह चबा कर पानी भी पीना चाहिए। और अगर हम पानी भी पीते हैं, थोड़ा धीरे धीरे और आराम से पीना चाहिए। खुश रहने का निर्णय भी दवा है। कभी कभी मौन भी दवा है। हंसी मजाक भी दवा है। संतोष भी दवा है। मन और शरीर की शांति भी दवा है। सुनने वालों, अगर हम खुश रहते हैं और उससे हमें दवाई की कमती ज़रूरत पड़ती है, और खुश रहना भी एक कला है सुनने वालों। कभी कभी मौन भी दवा है। अगर हम ज़्यादा ना बोलें, चुपचाप रहें, और वो भी एक दवाई का काम करती है सुनने वालों। हंसी मजाक दवा है। अगर हम हंसी मजाक करेंगे तो उससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, और हमें वो भी दवाई का काम करेगी सुनने वालों। संतोष भी दवा है।
1: सुनने वालों, हमें सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद में और भी संदेश हम सब आपके लिए रखने वाले हैं।

जीवन के दिन छोटे सही, पर हमें किस तरह से जीना है ये जीना भी हमारे संत मुनियों ने अच्छे अच्छे संदेशों को लिखे हुए हैं। एक फिल्म जो जा कर के जिसमें ऋषि कपूर और तीना मुनीम जी ने काम किए, नेहतिंद्रीन तख्तख में बनाया गया फिल्म, किशोर कुमार जी के आवाज़ में हम सब अभी इस बार गीत को सुने। हमारे जो कोलेगा साथी बबली आसरा जी संदेश जो रख रहे हैं, तो बबली जी और कौन सा संदेश आप सुनाने वाले हैं?

0: सुनने वालों, गीत में जाने से पहले मैंने आप सबको बताया था संतोष भी दवा है। आप तो सब जानते हैं और मैंने भी सुना है कि संतोष धन सबसे बड़ा धन। अगर कुछ मिले तब भी संतोष, ना मिले तब भी संतोष, अगर हम जीवन में संतोष रखते हैं तो वो भी एक दवाई का काम करता है। सुनने वालों,
1: बबली जी, इस पे भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार पढ़े थे कि कोई रास्ता सीधा नहीं होते है ना।
0: हाँ,
1: कोई सड़क कहा जाता है, सड़क कोई सीधा नहीं होता, कहीं ना कहीं आपको क्रशपंत या टी क्रशिंग मिलते रहेंगे। और कहते हैं कि जो बंदा धीरज रखते हैं तो एक ना एक दिन वो मोड़ जरूर आता है जहाँ सुखद के घड़ी आपको प्राप्त होते हैं। तो और क्या संदेश आप रखने वाले हैं?
0: हाँ जी, और संदेश है, मन और शरीर की शांति दवा है, ईमानदारी व सकर्मता दवा है, निस्वार्थ प्रेम भावना भी दवा है, सबका भला करना भी दवा है, ऐसा कुछ करना जिससे किसी की दुआ मिले वह दवा है।

मन और शरीर की शांति दवा है। अगर हम अपने मन को कहते काबू में रखें और शरीर का ध्यान रखें तो हमें दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईमानदारी भी एक दवा है। अगर जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं वह उन्हें भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ईमानदार लोग कमती मिलते हैं। निस्वार्थ प्रेम भावना भी दवा है। अगर हम निस्वार्थ प्रेम कि हम ये सोचें कि हम ये काम करेंगे उसके बदले में हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, स्वार्थ के बगैर काम करें, वो भी एक दवा का काम करती है। सुनने वालों, सबका भला करना भी दवा है। अगर हम लोगों का भला करेंगे, अगर लोगों का नहीं किसी एक का भी भला करेंगे तो वो भी एक दवा का काम करती है। सुनने वालों, ऐसा

ऐसा कुछ करना जिससे किसी की दुआ मिले वह दवा है कि अगर जीवन में हम कुछ ऐसा काम कर जाएं और उससे हमें दुआ मिलती है तो वो भी एक दवाई का काम करती है। सुनने वालों, ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं ज़िंदगी उनके आगे सर झुकाती है। सुनने वालों, अब हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे।

सुनने वालों, मैं आप सबको बता रही थी दवा रहे जीवन, अब हम आगे चलते हैं। सुनने वालों, सबके साथ मिलजुल कर रहना दवा है, परिवार के साथ खाना पीना और घुलना मिलना भी दवा है। आपका हर सच्चा और अच्छा दोस्त भी बिना पैसे के पूरा मेडिकल स्टोर है। मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुश मिजाज रहें, यह भी दवा है। हर नए दिन का भरपूर आनंद लेना भी दवा है।

सबके साथ मिलजुल कर रहना दवा है। अगर हम सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे, अकेले नहीं रहेंगे, तो वो भी एक दवाई का काम करती है और हमें दवाई कमती लेनी पड़ेगी। सुनने वालों, परिवार के साथ खाना पीना और घुलना मिलना भी दवा है। अगर हम परिवार के साथ उठते बैठते हैं, खाना पीना खाते हैं और घुलते मिलते हैं, और वो भी एक दवाई का काम करती है। आपका हर सच्चा और अच्छा दोस्त भी बिना पैसे के पूरा मेडिकल स्टोर है। अगर आपका एक सच्चा दोस्त है और वो हमेशा आपकी मदद करता है, आपके साथ रहता है, तो वो भी एक दवाई का काम करता है। मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुश मिजाज रहें, यह भी दवा है। अगर हम किसी काम में व्यस्त रहते हैं और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं और गुस्सा नहीं करते, थोड़ा खुश मिजाज हंसी मजाक करते हैं, तो वो भी एक दवाई का काम करता है। हर नए दिन का भरपूर आनंद लेना भी दवा है। अगर हम हर दिन का एक पूरे आनंद के साथ आनंद लेते हैं, तो वो भी एक दवाई का काम करता है। सुनने वालों,

लता जी के आवाज़ में सुंदर सा गीत को हम सब सुने। सुनने वालों, बबली जी, आज का संदेश जो आपने रखे कि हमें अपने दवाइयों कम करने के लिए क्या से क्या कर सकते हैं हम, जो हमारे खोजी सेना जो अपना संदेश हम सब के लिए खोज करके रखे, तो आप उसके बारे में और क्या कह सकते हो।

गौतम बुद्ध जी से किसी ने एक बार पूछा कि जहर क्या है, और बुद्ध जी ने बहुत अच्छा उसका उत्तर दिया कि ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी मिल जाए तो वो जहर है, चाहे वह सत्ता है, धन है, भूख है, लोभ है, आलस्य है, महत्वाकांक्षा है, प्रेम है, अभिमान है या घृणा ही है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि अगर ये सब चीज़ें हद से ज़्यादा और ज़रूरत से ज़्यादा किसी को मिल जाएं, वो सब जहर बन जाती हैं, वो सब जहर के समान हो जाती हैं। इसीलिए जीवन में सब चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए,

0: ग्रेट सॉन्ग जो निकाला गया फिल्म रोटी कपड़ा मकान से, एक फिल्म जिसमें मनोज कुमार ने भी अपना कला से प्रदर्शन दिए ना बबली जी।
1: हाँ जी, मनोज कुमार एक बहुत अच्छे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और निर्देशक, निर्माता सब कुछ थे।
0: सुनो वालों, आज का विषय पे जब देखा जाए कि हम अपना कर्म का फल, अगर आप गलत नहीं हो तो कुछ गलत नहीं किया है तो खुद पर अफसोस मत करो, ना ही रोने और ना ही बदले की भावना रखना। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, समय का इंतजार करो, कहते कि अपने कर्मों पर विश्वास रखो, समय का इंतजार करो, बराबर सजा मिलेगी। और वो भी कहा गया है कि वो भी सूत समेत, इसे ही कर्म का फल कहते हैं। विषय जो आज का रखा गया जिसमें हमारे शरीर के लिए दवा किस प्रकार से कम हो सकता, अगर आप उस पे गौर करेंगे तो शायद इसमें से कुछ न कुछ जरूर आप के लिए सफलता का रास्ता दिखाएगा।

कहते हैं कि जैसे कि अपने कर्मों पर विश्वास रखो, ऐसा कर्म करो जहां पर फल मीठा निकले।

खिलते फूलों जैसे लबों पर हंसी हो, ना कोई गम हो ना कोई बेबसी हो। सलामत रहे ज़िंदगी का यह सफ़र, जहाँ आप रहो वहाँ बस खुशी ही खुशी हो।

में सभी सुनने वालों को मैं ये कहना चाहूंगी, स्वयं को ऐसा बनाओ जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। इन्हीं विचारों के साथ सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार।

0: एक गरीब दीवाना है तेरा। दोस्तों, जैसे आपके पता चल चुके हैं कि कार्यक्रम यहाँ अपने समाप्ति के सीमा पे आ पहुँचे हैं। और कहा जाता है कि जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। आज के कार्यक्रम में हमारे सहयोग दिए बबली आसरा जी,
1: जब से लड़ी है
0: अनुराधा चंदर जी,
1: तड़प रहा
0: और मैं हूं आपका सेवक संजय। यही आशा लेकर हम सब कार्यक्रम को बनाए हैं कि कुछ न कुछ संदेश आप तक जरूर पहुंचे होंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। नमस्कार।